0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
1: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
0: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
3: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
3: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
0: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
3: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
5: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्र नाथ शर्मा के साथ राकेश दोले।

0: कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 4,00,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोउ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिल

0: समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी नवी के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी, ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecast heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Keralam and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And now the news in detail. Defense Minister Rajnath Singh has described 2026 as a historic year for the Indian Navy, with plans for the induction or commissioning of 18 warships during the year. Addressing the second edition of the Indian Navy's biannual Commanders Conference 2020.

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

के साथ एक और नई सुबह है। तारीख की बात करें तो आज 30 सितंबर की तारीख हो गई है। दिन बहुत खूबसूरत है, आज बुधवार का दिन है। हाँ जी, वेंसडे की मॉर्निंग है और देखिए श्रोताओं, सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और हम भी आपके रेडियो सेट पर हाजिर हो चुके हैं। जिन लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यून इन किया है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, अब से लेकर 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे इसी प्रोग्राम में। दोस्तों, से पहले आज का एक खूबसूरत विचार जो आपकी सुबह को और भी खास बनाएगा। देखिए, जिंदगी में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको बहुत तेजी से नहीं चलना है, आपको दौड़ना नहीं है, आपको धीरे धीरे हर दिन बस प्रयास करने हैं, छोटे छोटे प्रयास करने हैं, अपने छोटे छोटे गोल्स को बना करके उन पर काम करना है। जब आप छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाएंगे। अगर आप बहुत तेजी से भागेंगे तो यकीन मानिए आप पहुँच तो जाएंगे लेकिन वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म स्टे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कहीं पर भी लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है सही और सटीक रास्ते को चुनिए, है ना। चलिए श्रोताओं, ऐसी अच्छी बातों के लिए आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छा विचार है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आनंद है आपके साथ। चलिए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। लौट कर आएंगे जरा सी देर में तो बात करेंगे आज के दिन के बारे में।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

ये रिश्ता आपका और मेरा प्यार का रिश्ता है। ये रिश्ता वो है जो बस एक आवाज होती है जो आपके घरों में पहुंचती है और आप उसे सुनते हैं और एक अपनापन महसूस हो जाता है। ये वो रिश्ता है जो कहीं ना कहीं अगर हम बाहर रोड पे ढूंढने निकलेंगे तो शायद बन नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा, लेकिन हमारा और आपका जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो दिल से दिल तक वाला है। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक है वंस अगेन, आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से आज की इस ताजगी सी भरी सुबह में। कुछ बेहतरीन गाने जो आपकी सुबह को थोड़ा ताजा तरीन और बेहतरीन बनाते हैं। श्रोताओं, सुबह सुबह आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ और आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को। हाँ जी दोस्तों, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच। बिग शाउट आउट आपके लिए भी, इतनी वंडरफुल वाइब आप लोग हमारे साथ शेयर कर देते हैं एवरी मॉर्निंग, मजा आ जाता है। देखिए बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त हमारे पास गुजरात से मैसेज पहुंचा है यहाँ पे और इन्होंने अपना नाम खसिया लिखा है। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? सुबह सुबह आपके गीत संगीत के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश हमारे पास पहुंचा है गायत्री नगर से, पूजा जी का, लिखती है आनंद जी सुप्रभात, अच्छे गानों के साथ जब सुबह की शुरुआत हो तो दिन अपने आप अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बात पे एक और मैसेज हमारे पास हरथला से पहुंचा है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? रोहित मेरे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, मैं बहुत ही अच्छा हूं, आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, एक संदेश हमारे पास पहुंच चुका है एक और, ये लिखती है, गुड मॉर्निंग सर, मैं अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ आज की मॉर्निंग और आपके साथ ढेर सारे गाने सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता है कि हम ज़्यादा मैसेज करें, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं ज़रूर आपको एक छोटा सा संदेश पहुँचा देती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोग ऐसे ही हमारे साथ अपनी प्यारी प्यारी बातें शेयर कर सकते हैं, एवरी मॉर्निंग आपके साथ होते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। एक और संदेश जाते जाते मैं फटाफट शामिल करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आज के दिन के बारे में, मतलब आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन का इतिहास क्यों खास है, उस पे हम बात करेंगे। आप बस ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये मैसेज आया है, हाय गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सुबह सुबह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। चलिए ये एक और ब्यूटीफुल नगमा आपके रेडियो सेट में निकल गया है, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं, बताते हैं आज 30 सितंबर को क्या कुछ खास मनाया जाता है। घड़ी मिला लो, 8:35 12 सेकंड हो रहे हैं। मौसम के हालचाल अभी शेयर करेंगे ना आपके साथ।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।

चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। ढेर सारे श्रोता हमारे साथ बार बार बैक टू बैक लगातार जुड़ते जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात की। आगे बढ़ते हुए बताते हैं आज का दिन क्यों खास है। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आपको बताते हैं, औरंगजेब ने हैदराबाद की गोलकुंडा की किले पर जो है कब्जा किया था आज ही के दिन 1687 में श्रोताओं। और आज ही के दिन आपको बताते चलें, उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमाएं खोली गई थी 1984 में आज ही के दिन 30 सितंबर को। इसके अलावा आपको बताते हैं, विश्वनाथ आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी सन 2003 में आज ही के दिन श्रोताओं। और आज के दिन प्रख्यात पार्श्व गायक मन्नाडे को वर्ष 2007 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था श्रोताओं आज ही के दिन। और बात करें आज ही के दिन जन्मे एक और खूबसूरत नाम की, तो उनका जन्म हुआ सन 1837 में। मैं बात कर रहा हूँ पंडित श्रद्धा राम शर्मा जी की, जो हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी रहे। आज ही के दिन जन्म हुआ था उनका। और आज ही के दिन एक और जन्म हुआ जिसने भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक के रूप में जो है काफ़ी लंबे समय तक काम किया। 1922 में जन्म हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में। ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में हर कोई जानता है श्रोताओं। दीपा मलिक, जो भारत की काफ़ी जानी मानी खिलाड़ी रही, आज के दिन जन्म हुआ सन 1970 में इनका। और श्रोताओं, आज के दिन एक और खूबसूरत बॉलीवुड की आवाज़ का जन्म हुआ था। बॉलीवुड के बहुत ही खूबसूरत कलाकार जिनकी आवाज़ में एक से बढ़कर एक खूबसूरत ट्रैक आपको सुनने को मिलेंगे नेक्स्ट आवर में। आपको पता लगेगा मैं कौन से सिंगर की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर में उनके बारे में पूछूंगा ना आपसे एक सवाल। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अनुवाद दिवस जो है आज मनाया जाता है, इसके अलावा इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और भी तमाम सारे दिवस जो आज मनाए जाते हैं, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी देर में जब लौट कर आएंगे। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जो हमारे साथ अन्य श्रोता साथी जुड़े हैं उनको भी मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी ब्यूटिफुल मैसेजेस जो है हम तक पहुँचा रहे हैं। अच्छी कोई बात नहीं, होने दो। अमित वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरथला से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग साहब। इसके अलावा पिंकी जी मेरे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। हनुमान मूर्ति से हमारे पास मैसेज पहुंचा है राजू जी का, और एक संदेश हमारे पास पहुंच रहा है रेलवे स्टेशन से, इन्होंने लिखा है जी मेरी एक चाय की स्टॉल है आनंद जी, कभी आएँ आप मॉर्निंग में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप अपना नाम ज़रूर लिखें साहब। बबली अंजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप, हेलो जी कैसे हैं आप प्यारी प्यारी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग जी आपको भी। एक बढ़िया गाना आ गया है। इसी बीच रिहाना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आनंद सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एक संदेश और पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? कश्मीर से मैसेज आया हमारे पास, ये रजा हुसैन साहब का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर। एक और मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है, सुबह की ताजगी और आनंद की आवाज़ दोनों सुनकर हो जाती है मॉर्निंग बिंदास, कैसे हालचाल है आनंद जी? थैंक यू सो मच, ये प्रणव जी का मैसेज आ रहा है। और एक मनप्रीत जी मुझे पहुंचाते हैं कि हालचाल बाजी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी दोस्तों। थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल मैसेज करने के लिए आज की सुबह। आप लोग भी दोस्तों अपने प्यारे मैसेज पहुंचा सकते हैं, थोड़ी देर में आएंगे तो आपके नाम के साथ शामिल करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। घड़ी मिलाएं 8:52 हो रहे हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज का बर्थडे है, तो मैं उनके कुछ गाने प्ले करूंगा। आप आइडेंटिफाई करोगे कौन से सिंगर की आवाज है। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर को। बहुत ही आइकॉनिक एंड वर्सटाइल सिंगर है इन बॉलीवुड, बहुत ही पॉपुलर आवाज है। एंड ऑफकोर्स इतने बड़े हो गए इनके गाने सुनते सुनते यार, हम बहुत ही खूबसूरत आवाज है। आप आइडेंटिफाई करो ये आवाज कौन से सिंगर की है। आपको बस ये मैसेज करके मेरे को बताना है। आप इमीडिएटली मुझे मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ अपना जवाब। जरा सुनो गाने। अगला गाना सुनाता हूँ इनका, बहुत प्यारी आवाज है।
3: हुआ है कुछ हो गया है।
2: एक और प्ले करता हूँ कुछ गाने।
3: पूछे मेरा नाम और पता रस्मों।
2: ये गाना ऑफ कोर्स आपको बता देगा।

0: आपको पता है कौन से सिंगर की आवाज है ये?
1: वो पहली बार,
0: ये बात
1: जब हम मिले।
0: व्हाट्सएप करके बताओ फिर।
1: जब से तेरे नैना मेरे नैनों से,
0: ये गाना ऐसा आएगा ना जो आप पहचान ही जाओगे कौन सी आवाज है।
1: उड़ती जान से जो करता हमारे देता वो तुमको।
0: चलो जी, मैसेज करके बताना अभी जो आपने गाने सुने हैं बैक टू बैक, कौन से सिंगर

0: चलो भाई आप मुझे मैसेज कर देना अपने नाम के साथ, ये सिंगर की आवाज जो सुन रहे हैं क्या है इनका नाम, बस यही करना है आपने, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपना राइट आंसर।
1: मस्ती में डोले जब से तेरे
0: नैना, काफी लोग पहचान चुके हैं। चलो थोड़ी देर में वापस आते हैं, फिर आपसे पूछेंगे क्या है इसका राइट आंसर। ये तो आप मुझे व्हाट्सएप कर ही दोगे। फिलहाल एक और अल्टीमेट गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह, इसके बाद वापस आते हैं लौट के, कुछ कड़क अपडेट आपको दूंगा।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: DJ Anand is back. हाँ जी, वेलकम बैक है वंस अगेन. आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है 89.6 जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक. श्रोताओं, एक बार फिर से वंस अगेन वेलकम बैक है. और देखिए, अभी मैंने आपको जो है पूछा था कि आज जो सिंगर है उनका नाम क्या है, और ढेर सारे लोगों ने मुझे मैसेज पहुंचा दिए. थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए. और एकदम भाई साहब, बहुत सारे लोगों जो मतलब इतने सारे दोस्तों ने मेरे एकदम सही जवाब लिख के पहुंचा दिए, और मतलब मजा आ गया भाई साहब. कई बातें इतने सारे लोगों ने सही जवाब, ओहो, मतलब कमाल कर दिया पाजी, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है जी. चलो भाई, 9:14 हो गए, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद. और देखिए, अभी जो है 7 बड़े नियम चेंज होने वाले हैं. 1 अक्टूबर से जो है बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं. एंड क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, थोड़े थोड़े मैं आपको आज बता दूंगा, बाकी तो कल फाइनल बता ही दूंगा. आप हैं आनंद के साथ. और देखो भाई साहब, बात ऐसी है, अगर छोटे बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कल आपको एक कड़क अपडेट बताई थी, है ना, उस पर अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे. एक और खास बात बता दूं, हेलमेट भूलने की गलती जो है, आप पीछे जो आपके बैठा है ना व्यक्ति, वो सवारी आपको जो है थोड़ी सी भारी पड़ सकती है मेरे भाई. अच्छा, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा. और कल मैंने आपको बताया था, अगर आपका भैया चलान हुआ है, अगर आपने अपने चलान नहीं भरा, तो आपका बिजली का बिल जो है बढ़ के आ सकता है इस बार. हाँ मित्रों, ये बात सच हो रही है. चलिए, फिलहाल अभी हम करते हैं एक काम की बात. और एक फ्रॉड वाली कॉल मार्केट में बहुत चल रही है, जिससे कह रहे हैं हम साइबर ठगी. लोगों ने जो है भाई साहब नए नए फंडे फॉलो करने शुरू कर दिए. इनको काम धाम कुछ है नहीं, इनको बस दूसरों के पैसों पे ऐश करनी है बॉस. एक बार अगर आपके पास भी कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें लिखा आता है बापू जी यानी महात्मा गांधी जी, और अगर आप ये कॉल उठा लेते हैं, तो भाई साहब गलती से भी पहली बात तो उठाना मत. अगर आप उठाते हो तो ये सबसे, मैं आपको बता दूं, फ्रॉड कॉल है. एकदम साइबर जो लोग ये ठग होते हैं ना, ये लोग इस तरह के नए नए फंडे फॉलो करते हैं कि भैया कब हम लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाए, कब जो है उनका एक्स बनाकर उनसे पैसे लूटे. तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि देखो यार, पहली बात तो कोई भी आपको अगर रॉन्ग ऐसे नंबर से कॉल आए जो आपको लग रहा है कि ये नंबर थोड़ा सा अलग है बॉस, है ना, तो वो कॉल आपने लेनी नहीं है. और अगर आप आपने उठा भी लिया गलती से, तो आपको ना मैं बता रहा हूँ, कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी जो उनको साझा नहीं करनी है. जब आप जानकारियाँ साझा ही नहीं करोगे, तो फिर यकीन मानियो कोई कुछ नहीं होगा आपके साथ. बट अगर आपने जाने जाने में कोई भी डिटेल शेयर कर दी, तो बहुत दिक्कत हो सकती है बॉस. इसलिए आपसे हमेशा कहा जाता है बॉस कि कभी भी अपना ओटीपी नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें. मोबाइल की लत ने जो है भाई साहब 3 सालों में 42% का जो है रिकॉर्ड बढ़ाया है. कैन यू इमेजिन यार, कि मतलब कितने सारे लोग जो हैं, और स्पेशली ये जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ये पता है कौन सी एज का किया गया है, 10 साल से 19 साल तक के जो बच्चे हैं वो 91% स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. और इन आंकड़ों ने जो है ना बड़े बड़े लोगों को चौंका दिया कि भैया ये क्या बात कर रहे हो आनंद जी. हाँ जी बिल्कुल, 10 साल से 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी एज जो है, एक आंकड़ा निकल कर आया कि 91% बच्चे जो है स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये आंकड़ा भाई साहब चौंका देगा आपको, आपको भी लगेगा यार सच में इतनी तेजी से जो है बच्चों को फोन दे दिया है पेरेंट्स ने. एक पूरी डिटेल निकल कर आई है भाई, एक पूरा आंकड़ा निकल के आया, एक पूरी रिसर्च की गई जिसमें पता लगाया गया बहुत. चलो अच्छा, अभी मैं लौट कर आता हूँ, उसके बाद आपको एक और बात बताने वाला हूँ. अभी 9:17 हो रहे हैं, फिलहाल कुछ एड ब्रेक का टाइम है, उसके बाद जल्दी से वापस आता हूँ, तो आपको एक और लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ. अगर आप 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, बताता हूँ अभी.
1: 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं. नामुमकिन.
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है. सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने. ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता.
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए.
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना. पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर. 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर. किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी. 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस. उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक. आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद. कॉल करें 7055070552.
6: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
7: मैंने आंखें खोली हैं, क्या मूड आया है कहानी में।

0: स्वागतम है जी आपका, वेलकम बैक है। कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि भैया आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो आज की सुबह ये कौन से सिंगर की आवाज है। ढेर सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं आज की मॉर्निंग, मैंने आपसे पूछा था बहुत ही आइकॉनिक आवाज।
1: मैं ऐसा क्यों हूँ
0: भाई, मैं ऐसा ही हूँ। What a song है
1: सोना।
0: यार इतनी मस्त आवाज सुबह सुबह, अब तो आप बता दोगे यार
1: मिलना है हमें।
0: बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है वैसे मुझे,
1: मस्ती में डोले
0: एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने दिए हैं भाई साहब इन्होंने।
1: मेरे नैना चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे।
0: बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने सच में इतने प्यारे मैसेज करके ने मेरा दिन बना दिया यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। इनका नाम बता दें क्या सर? बहुत सारे मैसेज आए हैं, क्या कह रहे हो सर? हम भी बताना चाह रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हो जी मैसेज करके 9837896896 पे। आज बर्थडे सेलिब्रेट होता है बॉलीवुड की एक अमेजिंग आवाज का जिसका नाम है शान, और हमें भी बहुत ही ज्यादा फख्र है, बहुत ही ज्यादा गर्व है कि आज एक ऐसी आवाज का जन्म है जिन्होंने तमाम सारे बेहतरीन गाने हमें दिए हैं एक से बढ़कर एक, और उनका एक बहुत ही पॉपुलर वेरी वेरी मोस्ट अमेजिंग ट्रैक राइट हियर एंजॉय करेंगे आप मेरे साथ। एंड इसी गाने के साथ विश करेंगे वही हैप्पी बर्थडे शान साहब, जन्मदिन की ढेर शुभकामना हमारे पूरे इंटायर फैमिली की ओर से, विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड शान भाई की आवाज में क्या कशिक है, क्या मतलब क्या वाइब, व्हाट अ फील। एंजॉय करते हैं गाना, पना फिल्म का ट्रैक, शान साहब की बेहतरीन आवाज, कैलाश खेर साहब देंगे साथ, जतिन ललित का म्यूजिक, एंड सच में व्हाट अ अमेजिंग वंडरफुल ट्रैक। इस गाने को सुनते हैं, वंस अगेन शान को देते हैं जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। शान सर को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से तमाम मुरादाबादीज की ओर से। एंड अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड की एक अमेजिंग आवाज शान साहब के साथ। चलिए इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, लौट के आता हूं, आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। बताता हूं कुछ खास बात, सो ऐसी ट्यून इन हो मेरे साथ, कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी।

0: ताक
1: स्किन एलर्जी मत से
2: कोई मिल गया
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.

मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को। ये वेंसडे की सुबह है, आज 30 सितंबर की तारीख है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बताता हूँ आज का वेदर अपडेट। बड़ेगर की ट्रैफिक में आप है तो वो अपडेट आप मुझे देंगे। हाँ जी, कहीं भसड़ है, कहीं जाम है, कहीं ट्रैफिक है, आई मीन वही बात है यार, तो आप मुझे अपडेट कर सकते हो व्हाट्सएप करके 9837896896 में 9837896। दिस इज माई नंबर, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके बता सकते हो कहीं अगर जाम है तो।

भाई मैंने बहुत डांस कर लिया। स्टारिंग बाय सलमान खान, गोविंदा, कटरीना कैफ, लारा दत्ता, एंड व्हाट अ मूवी। बेहतरीन गाना। और शान साहब, आपका बर्थडे आज हम मना रहे हैं। ढेर सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, कांग्रेचुलेशन गाइस। एंड मेरे पास देखो यहाँ पर रीना एंड श्वेता का मैसेज आया था, एंड साथ ही साथ मुझे प्रतीक ने मैसेज किया था, अमित वर्मा जी ने मुझे मैसेज किया था, बहुत सारे विवेक अनमोल जी, विवेक अग्रवाल अनमोल ट्रैवल से मेरे साथ जुड़े थे, बट इन्होंने लिख दिया था सोनू निगम। सर थोड़ा सा नहीं, पूरा ही गलत आंसर हो गया पाजी आपका। ईशान साहब की आवाज़ थी जिनके गाने भी आप सुन रहे थे मेरे साथ, एंड आज उनका बर्थडे होता है। और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं बैक टू बैक राइट आंसर के साथ, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए। मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ आपका यार, इतने अच्छे मैसेज आप करते हो ना, सच में मजा आ जाता है सुबह सुबह। कभी कभी तो लगता है वाओ यार सच में इतने इंटेलिजेंट है। देखो हमारे श्रोता सारे सिंगर्स के नाम, सारी मूवीज के नाम जो पूछो एकदम बता डालते हैं यार, मजा आ जाता है। मतलब दिल से थैंक यू तो करना बनता है यार आपका। एंड जरा आपके मैसेज फटाफट पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग जी, अयूब अली फ्रॉम रामपुर से बात कर रहा हूँ। ये शान साहब की आवाज़ थी बिल्कुल जी, एंड आनंद भाई बहुत ही शानदार आवाज़ के मालिक, अलग अलग प्रकार की गाने देने वाले मिस्टर शान साहब को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं, थैंक यू जी। हेलो आनंद जी, नमस्ते, आज गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? ये लिखते हैं आज शान साहब का बर्थडे है, एग्जैक्टली रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकी सागर जी,

जय श्री राम। आनंद भाई, कैसे हालचाल है? बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग कश्मीर से जुड़े हैं मेराजुद्दीन साहब, एंड गुड मॉर्निंग पहुंच रहा है मेरे पास निशाखा, लिखती हैं हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हालचाल हैं जी? बहुत ही बढ़िया हालचाल हैं और इनको अच्छा लग रहा है प्रोग्राम जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। सहारनपुर से जुड़े हैं जोन रोजी पल विलीस, लिखते हैं एक बहुत ही प्यारा मैसेज शेयर करते हैं आज की सुबह हमारे साथ कि जिंदगी में सुकून उन रिश्तों में है जहाँ शब्द कम और समझ ज़्यादा होती है। आई एग्री सर, पर आजकल ऐसे वाले रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, अगर आपके पास हैं तो यू आर वेरी वेरी लकी पर्सन। चलो जरा काम की बात करते हैं, गाने शाने तो आप सुनते ही रहेंगे 9:41 हो गए स्टेशन क्लॉक में। पाजी आज की सुबह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच ट्रेन में सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उन सभी यात्रियों के लिए जो है अपने टिकट के साथ साथ अपना आईडी प्रूफ रखना भी बहुत ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज एक जो है 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक रेलवे की तरफ से एक चेक इन अभियान चलाया जाएगा बेसिकली, ठीक है? तो ऐसे में जो है आपके टिकट चेक होने के साथ साथ आपका आईडी प्रूफ भी मांगा जा सकता है, और वैसे भी आपके पास अपना आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ डेफिनेटली होना चाहिए, एंड जिसके पास नहीं होता है उनसे पूछो यार, फिर बाद में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना सच में बहुत भसड़ मचती है। इसीलिए प्लीज़ आप इस फेस्टिव टाइम में कोशिश करें कि अपने पास एक अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड डेफिनेटली रखें। आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, जो भी आपकी आइडेंटिटी है ओरिजिनल अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अगर आप कहीं भी ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपके टिकट के साथ साथ आपके वेरिफिकेशन के लिए आपकी आईडी भी मांगी जाएगी, है ना? तो अपना ओरिजिनल अपने साथ रखें आईडी प्रूफ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये खबर मैंने आपको दी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। व्हाट्सएप के बारे में मैं आपको एक कड़क अपडेट दे रहा था कि भाई साहब देखिए यू नो क्या है ना कि अभी आपको भी पता है हर इंसान को ना बहुत सारी चीज़ें लाइफ में याद नहीं रहती, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो वो बंदा मतलब कितनी सारी चीज़ें याद रखेगा यार। तो अब ऐसे में क्या है ना कि एक व्हाट्सएप नया फीचर लेकर आ रहा है, आपका बर्थडे वाला फीचर। एग्जैक्टली मतलब अगर आप किसी का बर्थडे भूल जाते हो तो ऐसे में जो है व्हाट्सएप आपको याद दिलाएगा कि आज आपके इसका बर्थडे है, आपके पड़ोसी का बर्थडे है, आपके जिसका भी बर्थडे है। ये व्हाट्सएप का एक नया फीचर जो है इनरोल होने वाला है वेरी वेरी सून, जो आपको बहुत सारी लेटेस्ट एंड कड़क अपडेट में हेल्प करेगा। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग यार, ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कि मेरे को लगा चलो ठीक है भाई, मान लो किसी भी पर्सन को याद नहीं रहता है, भाई जब कभी कभी होता है हमें भी अपने दोस्तों का याद नहीं रहता है, तो ऐसे में दोस्तों का बर्थडे भूलने की टेंशन खत्म। व्हाट्सएप ला रहा है एक नया फीचर रिमाइंडर, जिसके जरिए जो है आपके आपके दोस्तों का बर्थडे का भी, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपकी बीबी का, मतलब किसी का भी हो सकता है, तो ये फीचर आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, एंड दिस इज वेरी वेरी एब्सोल्युटली अमेजिंग फीचर। बट फिलहाल ये फीचर जो है अभी टेस्टिंग इसकी की जा रही है कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए, और ये टेस्टिंग के लिए सिर्फ कुछ ही चुनिंदा यूजर्स को मिलने वाला है, एंड आई होप कि आपको मिल जाए यार। अगर आपको मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। 9:43 हो गए स्टेशन क्लॉक में। एक छोटा सा कड़क सवाल लेकर आऊंगा वापस। अगर आप भाई साहब बाइक चलाते हैं, 2-व्हीलर वाहन, और आप अपने पीछे किसी को बिठा लेते हैं कि कोई ना भाई बैठ जा यार, कुछ नहीं होगा, हेलमेट तो है मेरे पास, तुझे नहीं लगाना है, तो जरा संभल के यार। अभी बताता हूँ, जो आपके पीछे व्यक्ति बैठा है अगर उसने हेलमेट नहीं लगाया ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ फिर मत कहना आनंद आपने बताया नहीं था। बाकी चलो गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट लगा लें और अपना फोकस सड़क पर रखें, अपने कानों को इसी कड़क स्टेशन पर रखें, बदलना मत। अरे आपके लिए अच्छे गाने लगा रहा पाजी लड़का। चलो जी वेंसडे की सुबह आए हाय लौट के आते हैं जरा से दिल्ली। आप ऐसे ही बने रहो, सुनते रहो आपका म्यूजिकल रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बंदे को प्यार से आनंद कहते हैं।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
4: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060002243।
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop.
6: Abhi bajayega na bhido.
7: What?

बेहतरीन गाना। देखो यार, प्यार करके कौन पछताया कौन नहीं, इसका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आपने मेरा सवाल सुना उसका जवाब नहीं दिया तो आप पछता सकते हो बहुत। 952 हो गए, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद। और देखो, सूर्य देवता आजकल प्रकट हो रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लालिमा के साथ। सुबह सुबह जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, यकीन मानना, कि भाई साहब सर्दियों वाली धूप निकल रही है, बता रहा हूँ मैं आपको। फिलहाल करंट टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, वेदर बिल्कुल क्लीन रहने वाला है, हवाएं 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से होने वाली हैं। आज की सुबह से ही हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, वेदर जो है ये आगे 31 तक पहुंच सकता है, लोएस्ट की बात करें तो 23 डिग्री तक आ सकता है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो आपको गर्मी का एहसास पूरा पूरा कराने वाला है। बट कोई बात नहीं, ठंडे गाने आपको इधर मिलते रहेंगे। देखो भाई, अभी फिलहाल आपको बता दें, यूपी में अब जो है बाइक के पीछे बैठने वालों को भी अनिवार्य कर दिया गया है हेलमेट लगाना। हाँ जी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है। आपको बता दें, नई व्यवस्था के तहत ऐसा करने पर जो है, अगर मतलब अगर उन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया, अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपके पीछे कोई व्यक्ति बैठा है, अगर वो हेलमेट नहीं लगाता है तो भैया चालान कट जाएगा, फिर आपको चालान भरना ही पड़ेगा। हाँ, हम बता रहे हैं आपको, फिर मत कहना भाई साहब बताया नहीं था आपने। तो आप बाइक पर पीछे बैठने वाले ने अगर हेलमेट नहीं लगाया तो भैया उसका ऑनलाइन चालान कट जाएगा, बता रहे हैं आपको। जिसका वाहन है उसी का ऑनलाइन चालान कटेगा, इसलिए ई चालान को अगर आप बचाना चाहते हैं, अपने इस चालान को बचाना चाह रहे हो, तो आपके पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसको भी हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें और आपके पीछे वाला व्यक्ति भी सेफ रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि पाजी अब जो है हेलमेट पीछे वाले को भी आपको देना ही पड़ेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। या तो फिर पीछे मत बैठाओ, अगर आप बिठा रहे हैं बाइक पे तो भैया उसको कहो कि भैया शांतिपूर्वक जो अपना हेलमेट लगा के बैठो, अगर नहीं हेलमेट है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको भी और उनको भी। चलो फिलहाल मैं अभी इस अपडेट के साथ ही आज का सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, जरा फटाफट से एक छोटा सा सवाल आपके साथ शेयर करता हूँ आज की सुबह, इसका जवाब आप मुझे मैसेज करके दीजिएगा। एक बहुत ही चटपटा गाना आया था एंड ये काफी अच्छी फिल्म थी, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, ये आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन तो अब शुरू होगा, एक्चुअली अब शुरू होगा मेरा आज का सवाल। ये जो अभी गाना चल रहा है, ये कौन सा गाना है? Yes, आपने मेरे को मैसेज करके बताना है अभी जो आपको म्यूजिक सुना है वो कौन सी गाने का, काफी चटपटा सा गाना है, ये गाना आपको आइडेंटिफाई करके बताना है मेरे को। चलो मैसेज करना है ना। व्हाट्सएप करो यार, बहुत ही मजेदार गाना है, बहुत ही सुपर फास्ट गाना है, सुन के मजा आ जाता है, किसी के नाम के ऊपर है तो भाई साहब मजा तो आएगा ही। चलो मैसेज करियो आप मुझे 9837896896 पे, अभी जो आपने म्यूजिक सुना है वो कौन से गाने का है, गेस द सॉन्ग। चलो व्हाट्सएप करना है, आपने उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। ठीक है जी, समझ गए पाजी। चलो फटाफट मैसेज कर दो अब मुझे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा हेलमेट लेके आता हूँ, मुझे भी तो बाइक पे बैठ के जाना होता है यार, स्कूटी पे बैठ के जाना होता है, तो मैं देखता हूँ कोई हेलमेट पड़ा है क्या पुराने, दर्द जुगाड़ लगाता हूँ, नहीं है तो फिर मैं नया खरीद लूंगा, मैं भी तो आजकल बाइक पे बहुत ट्रैवल। चलो मैं हेलमेट लेके आता हूँ।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: बिंदास मॉर्निंग सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

बिल्कुल जी, हमें भी आपके बिना चैन नहीं आता। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, ये वेंसडे की सुबह है, आज तारीख है 30 सितंबर की, सुबह के 10:01 हो गए। आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजा।

वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, 10:03 हो गए हैं श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। और एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम करते हुए आगे बढ़ते हैं जी। कैसे हालचाल? आज 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे। जो लोग पॉडकास्ट की दुनिया में कुछ नया कर रहे हैं, जो लोग इतिहास रच रहे हैं, उनके लिए आज का स्पेशल दिन है। एंड एक बिग शाउट आउट उनके नाम जो लोग पॉडकास्ट करते हैं, और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है पॉडकास्ट ऑडियो या वीडियो, सारी पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हम भी आजकल कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे पॉडकास्ट हम भी अपनी सोशल मीडिया पैनल्स पर अपलोड करें। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब पर FM मुरादाबाद का ऑफिशियल पेज आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, तो वहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं FM मुरादाबाद की प्ले स्टोर से जाके, और वहां पर दिल से दिल तक का जो कनेक्शन है इसको और भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी आज की कुछ कड़क अपडेट की, मतलब लोकल कुछ इन्फॉर्मेशन की फटाफट से बात कर लेते हैं जरा जल्दी से। भैया आपको बता दें, मंडल को मिला है 2500 करोड़ का कारोबार। जी हाँ, आपको बता ना, मैंने आपको बताया था 25 से लेकर के 29 के बीच जो है अपने ग्रेटर नोएडा में एक शो होने वाला था, है ना, यूपी ट्रेन शो, जिसमें अपने मुरादाबाद की दाल को भी फीचर किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था। एंड इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेन शो में जो है मतलब काफ़ी अच्छा खासा जो है मुरादाबाद को भी, मतलब मुरादाबाद के चीज़ों को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, मुरादाबाद की चीज़ों के बारे में काफ़ी जो है वहाँ पर तारीफ हुई। इनफैक्ट मुरादाबाद के जो वहाँ पर गए हुए थे लेकर के लोग अपने अपना काम, अपने अपने स्टॉल्स, उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और देखो, मुरादाबाद की दाल ने काफ़ी धूम मचाई और काफ़ी जो है जमकर बिक्री भी हुई, और काफ़ी जो है लोगों ने पसंद भी किया, और काफ़ी इसके बारे में बातें भी हुई हैं भाई साहब। और मुरादाबाद की पीतल तो ऑफकोर्स जहाँ जाती है वहाँ पर रॉक मचाती है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि मुरादाबाद की दाल को जितनी धूमधाम के साथ वहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया, फीचर किया गया, उतनी मतलब जो है कॉन्फिडेंस से लोगों ने खाया और पसंद भी किया, ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड की बात है। और भाई साहब, अपने मंडल को भी जो है एक कमाल का बिजनेस मिला यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जनाब, है ना, मतलब मुझे सुनकर के काफी खुशी हुई यार, हम मुकाम बहुत खुश हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं और इसी बात पे आपको कुछ और जानकारियां दे देते हैं फटाफट से। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं जब आऊँगा तो आपसे एक सवाल जो मैंने पूछा उसको रिपीट कर दूंगा, तो बिना किसी देरी के चलिए आपसे मैं आज का सवाल रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ। एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ये जो अभी म्यूज़िक चल रहा है बेसिकली वो कौन से गाने का है, आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा गाना है बेसिकली ये। लास्ट ऑप्शन है आपके पास, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे जाइए, अपने मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, कौन सा है गाना। काफ़ी बढ़िया गाना है, जब छोटे वाले कीपैड फोन होते थे तो अक्सर ये गाना सुनाई देता था। इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए एक दबाएं, अगले गाने को सुनने के लिए किसी भी वक्त स्टार दबाकर आगे बढ़ें। भैया हम आगे नहीं बढ़ते थे, हम इसी गाने को वापस सुन लेते थे स्टार दबा के, बड़ा अच्छा लगता था यार। छोटी छोटी वो कॉलर ट्यून वाले ऑप्शन आते थे ना, तो बड़ा अच्छा लगता था यार। फिलहाल चलिए, अच्छा तो आपको ये गाना भी लगेगा उम्मीद करते हैं। चलो जिस गाने को सुनते हैं आगे बढ़ते हैं और वापस लौट कर आते हैं लकी कॉलर के साथ। अगर आपने पार्टिसिपेट किया था हमारे कॉन्टेस्ट में तो ज़रा फ़ोन के करीब ही रहिएगा भाई साहब।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।

0: कोला भाई आजकल धूप इतनी तेज हो रही है, प्रमोट कर दिए इन्होंने कोका कोला। श्रेया घोषाल की आवाज।
1: आग तूने जो लगाई बुझा दे जालिमा।
0: चलो जी फिलहाल कोका कोला की बात नहीं, यहाँ पर कॉफी की बात करो, चाय की बात करो। सुबह का समय है यार, कुछ चाय शुई की बात करो। सुबह सुबह ये कोका कोला हम नहीं पीते यार, गंदी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था एक बहुत ही फैंटास्टिक सवाल, मैंने कहा था आप मुझे मैसेज करके बताओ यार अभी जो आप गाना सुन रहे हैं वो गाना कौन सा है। काफी सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, बट कोई एक लकी वन शॉर्टलिस्ट करते हैं। और आज की सुबह हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है एक लकी वन को अपने साथ। ये गाना आइडेंटिफाई करना था आपको और यही बताने के लिए कॉलर जुड़े हैं। हेलो जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है सर?
2: यस सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही हैंडसम हूँ यार, आप कैसे हो?
2: बस सर बढ़िया।
0: नहीं नहीं यार,
2: गाने बहुत अच्छे अच्छे चला रहे हैं आप।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपको मजा आ रहा है?
2: जी सर बहुत मजा आ रहा है।
0: अरे वाह, चलिए अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे मुरादाबादी को, तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप कौन कहाँ से हैं इस वक्त फोन लाइन पे?
2: सर मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और मैं बुद्धि विहार मुरादाबाद से हूँ।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया
2: सर, डेली आपका ये गाने सुनता हूँ और इसी टाइम ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, मतलब और टाइम में? जी जी जी,
2: ऑफिस जाने का टाइम होता है तो इसमें रास्ते में सुनते हुए जाते हैं। हाँ, घर पे रहते हैं तो घर पे सुनते हैं।
0: हाँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है मतलब।
2: हाँ जी हाँ जी, आपका कलेक्शन जो होता है माइंड ब्लोइंग होता है। और सर जो आपने गाना पूछा है ये तो बच्चे बच्चे की जुबान पे है।
0: अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये बच्चे बच्चे की जुबान पे? मुझे लग रहा है आपका भी कहना की ऑल टाइम फेवरेट तो था ही कभी ना कभी लिस्ट में।
2: सर मैंने बहुत डांस किया इस गाने पे।
0: अरे वाह, तो आज भी कर लो यार, बट हम देख नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम ये है यार। अच्छा कौन सा गाना है ये बताओ जरा गौरव जी।
2: टिंकू जी आप पल पल ना माने टिंकू जी।
0: अरे वाह, थोड़ा सा गाओ यार, मजा आएगा साथ में।
2: पल पल ना माने टिंकू जी इश्क मंजन करना पिया।
0: चलो जी, कंग्रेचुलेशन गौरव जी, जोरदार तालियां आपके लिए। आपके लिए देखो कंग्रेचुलेशन हम बजा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अच्छा गौरव जी, ये बताइए रेडियो पे क्या क्या चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगती है, क्या मजेदार लगता है आपको?
2: सर गाने और आपका आपका जो कलेक्शन होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है सर।
0: अच्छा अच्छा, और जो हम जानकारी वगैरह लेकर आते हैं निकाल निकाल के सर्च कर करके वो आपको अच्छी नहीं लगती?
2: सबसे सबसे बढ़िया तो जानकारी पता चल जाए।
0: हेलो हेलो हेलो, कुछ वॉइस ब्रेक हो रही है गौरव जी। हेलो,
2: की जरूरत नहीं है
0: गौरव जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। हाँ जी बताएं।
2: मैं कह रहा हूँ सर, आपको जैसे कोई भी ऐड करते हैं उसे हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट चले आते हैं।
0: Exactly.
2: एक पता लग जाता है, एड्रेस पता लगता है वो शॉप वहाँ खुली है।
0: जी,
2: नई
0: जी,
2: नई शॉप खुलती है पता चल जाता है एफएम से।
0: जी जी,
2: आप जो ऐड करते हैं वो काफी अच्छा करते हैं।
0: अरे
2: दूसरा दूसरा जैसे अब मैं तो सर एक चीज और आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप बात माने तो।
0: जी जी प्लीज बताए ना
2: सर। जैसे जो बंदे हैं हमारे, कई बार जॉब होता है जो जॉब छूट गई किसी की, किसी को बंदे चाहिए, तो आप ये इस तरह से जॉब का भी स्टार्ट कर दीजिए ना।
0: हाँ सर, मैं तो खुद अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसा निकालें जिससे किसी को एम्प्लॉय की नीड है तो उनको एम्प्लॉय मिल जाए और किसी को सच में जॉब की जरूरत है उसे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी मिल जाए।
2: जी सर, ये सर बेस्ट रहेगा। और जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं या सब कुछ चल रहा है उससे भी अच्छा, लेकिन फिर भी किसी हमारे किसी के पास छोटा फोन है, किसी के पास कुछ है, वो व्हाट्सएप तो नहीं देख पाते, एटलीस्ट वो म्यूजिक तो सुनते ही हैं।
0: एब्सोल्युटली, और रेडियो तो काफी पावरफुल भी है,
2: और रेडियो तो काफी फुल है, छोटे से छोटे फोन में भी रेडियो है।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू, बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है गौरव जी आपने, डेफिनेटली इस पे हम बात करते हैं आगे अपने मैनेजमेंट से। और थैंक यू सो मच, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं गौरव भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप चलते चलते?
2: यस सर, सर मैं दोबारा से कहूंगा वंस अगेन थैंक्स टू यू एंड आप मूड फ्रेश कर देते हैं सुबह सुबह, आपके गाने बहुत अच्छे होते हैं।
0: क्या
2: आपका
0: बात,
2: जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: okay.
0: और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय गौरव भाई,
2: नाइस टू टॉक टू यू सर।
0: थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ गुड डे सर। ओके बाय।

भाई हंगामा मेरे साथ हो सकता है, खुशी आ गई है, बहुत देर होगी, मेरे को जाना पड़ेगा। गौरव जी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड बाकी लोगों ने भी सही जवाब दिए थे, एग्जैक्टली गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर है, सभी ने सही जवाब दिया, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अभी के लिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, कल होगी मेरी आपकी मुलाकात, सेम टाइम सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बात। अच्छे गानों के लिए, अच्छी वाइब के लिए प्लीज ऐसे ही कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी। मेरे पास मैसेज पहुंच रहा था, हाय गुड मॉर्निंग, ये हमारे पास काशीराम से मैसेज आ रहा था, गुड मॉर्निंग अनुज कश्यप का, इन्होंने राइट आंसर दिया था, हाय अनुज, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सैयद अंसारी एंड ये क्या नाम लिखा है इन्होंने, इरशाद हुसैन अंसारी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, बहुत सारे लोग जो है इनके फ्रेंड्स साथ में जुड़ गए हैं, सही जवाब दे रहे हैं ये भी आज की सुबह। बिपिन हमारे साथ जुड़े थे आज की सुबह, बिपिन मधुकर जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ये, इन्होंने मुझे मैसेज किया सिद्धार्थ नगर यूपी से, थैंक यू मेरे भाई, सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पलपल नाम आने चिंकू जिया, दिस इज राइट आंसर, ये मेरे पास कहां से मैसेज आ रहा है, नाम नहीं लिखा है सर आपने, नंबर के 4 डिजिट है 1119। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा था, गुड मॉर्निंग सना एंड नाजिया तुर्क, इन्होंने राइट आंसर दिया था, गुड मॉर्निंग सर, डी के अरोड़ा चंदन नगर से मेरे को सही जवाब दे रहे हैं। लक्ष्मी जी मेरे पास मैसेज करती हैं राइट आंसर के साथ आज की सुबह, एंड और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ये अविनाश सतनागर जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज की सुबह, सही जवाब भी मुझे दे रहे हैं। एंड साथ में हमारे पास मैसेज पहुंचा है रवि सैनी जी का, सही जवाब दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अमित वर्मा जी जुड़ चुके हैं आज की सुबह राइट आंसर के साथ, जुड़े हैं अयुबली रामपुर से। एंड साथ में बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे पास मैसेज आ रहा है, गुड मॉर्निंग नशा का, सही जवाब पहुंचाती हैं। एंड रिहाना जी मुझे राइट आंसर दे रही है, इसके अलावा प्रतीक, अमन, राजू, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद भाई, गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो वेरी मच इतने वंडरफुल मैसेज करने के लिए, मैं आपको सभी का दिल से आभारी हूँ। कल मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, होंगी ढेर सारी बात, रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। एक टेक्स्ट मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग हाउ यू, कैसे हाल चाल है, मेरे हाल चाल बहुत ही बढ़िया है। चलिए जी बाय बाय, कल होगी मुलाकात, सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। आरजी आनंद की ओर से साइनिंग ऑफ।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

अर्जी खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी। मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

या पता नहीं चल रहा है एवरीवन। और बाकी तो जो मंथ आने वाले हैं वो फेस्टिव सीजन में तो बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं चलता है, इतनी सारी तैयारियां होती हैं, इतनी सारी एक्साइटमेंट होती है एंड कैसे वो वक्त भी आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन खुशी यहाँ पर आ गई है आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज लेकर एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जो आप तक पहुँचानी है और आपकी सुबह को खुशनुमा बनाना खुशी का काम है। आप भी मेरे साथ इस शो में कनेक्ट हो सकते हैं एवरीवन। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और देखिए वेनेसडे मॉर्निंग है एंड ब्यूटीफुल थॉट भी मेरे पास है जो मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ आज की सुबह। दोस्तों हालात कैसे भी हों अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ना कभी मत छोड़िए, हर सुबह एक नया चांस लेकर आती है। तो चेहरे पर स्माइल, दिल में कॉन्फिडेंस और मन में एक खूबसूरत थॉट जरूर रखिएगा। आज का दिन मेरे लिए है और मैं इसे अपना पूरा बेस्ट दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप पूरी कोशिश करते हैं ना अपने दिन को खूबसूरत बनाने का तो डेफिनेटली आपका दिन खूबसूरत होता ही है। एंड जरूरी नहीं है कि आप अपने दिन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करें, आप छोटे छोटे से भी काम कर सकते हैं एंड आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स में किसी के लिए कॉफी बना दी, किसी के लिए टी बना दी, और जब आप प्यार से वो छोटे छोटे काम करते हैं ना तो यकीन मानिए एवरीवन आपकी फैमिली तो खुश होती है लेकिन आपको भी दिल से बहुत खुशी मिलती है। और बाहर जो बेजुबान जानवर हैं जैसे डॉगी हैं, गाय हैं, जो रास्ते में खड़ी रहती हैं टुक टुक निहार रही होती हैं, और जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो उनके खाने के लिए भी आप कुछ लेकर जा सकते हैं, उनको खिलाइए और देखिए दिल से कितनी खुशी मिलती है। जब हम किसी के लिए छोटा छोटा काम करते हैं ना, निस्वार्थ हम जब सेवा करते हैं तो दिन सच में ब्यूटीफुल बन जाता है। और बहुत सारी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ और आज तो बहुत खूबसूरत डे सेलिब्रेट किए जाते हैं और अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको खुशी देने वाली है। तो बस आप बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स। अच्छा लगता है आप सभी के साथ कनेक्ट होना, सुबह सुबह दिन बन जाता है एवरीवन।

0: शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
0: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
0: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी द विवांसी। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक को गाया था देव नेगी साथ में आकाशा सिंह जी ने। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक में इन्होंने परफॉर्म किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड साथ में तमन्ना भाटिया जी ने। फिल्म भी बहुत ही अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और अभी अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके खूबसूरत संदेशों की तो बौछार हो ही रही है बैक टू बैक, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन एवरीवन मैं बता देती हूँ, आज बहुत ही ब्यूटीफुल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 30 सितंबर है आज। और दोस्तों आज सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। दोस्तों दुनिया में ना भाषाएं भले ही अलग अलग हों लेकिन भावनाएं तो एक जैसी ही होती हैं। और इन अलग अलग भाषाओं के बीच जो एक खूबसूरत पुल बनता है ना वो है ट्रांसलेशन डे। सोचिए दोस्तों, अगर हमें किसी दूसरी भाषा की कोई किताब, फिल्म, कहानी या किसी की बात समझनी हो तो अनुवाद हमें उस दुनिया से जोड़ देता है। सिर्फ शब्दों का ही नहीं बल्कि कल्चर, सोच और भावनाओं का भी कनेक्शन बनता है। और आज के डिजिटल टाइम में तो ट्रांसलेशन ने हमारी लाइफ और भी आसान बना दी है। कोई मैसेज हो, कोई वीडियो हो या किसी दूसरे देश की जानकारी, कुछ ही सेकंड में हमें उसे अपनी भाषा में हम समझ सकते हैं। इजीली हो गया है हमारे लिए। और मुझे भी ना डिफरेंट अलग अलग भाषाओं में बात करना अच्छा लगता है, सीखने का मैं प्रयास करती हूँ। एंड लिटिल बिट वर्ड्स मुझे आते हैं, जैसे तेलुगु हो गया है और उसके अलावा बंगाली, पंजाबी, नेक्स्ट बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, मराठी और उसके अलावा हम सीखने का प्रयास करते रहते हैं कंटिन्यू, क्योंकि एवरीवन मुझे लगता है कि एवरीडे कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। ज़िंदगी का नाम है सीखना और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, क्यों? हाँ, गुजराती लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लगती है एंड वो भी बहुत प्यारी है। भाषाएँ कोई भी हो सब बहुत प्यारी होती हैं। और हमारे पास जो मैसेज आए हैं ना मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें संदेश पहुँचाया है और ये मैसेज हमें आज की सुबह कहाँ से मिला है ज़रा हम भी एक नज़र डालते हैं। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, उत्तराखंड से अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं। एवरी डे ये अपना संदेश हमें पहुँचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज भी हमें उत्तराखंड से मिला है और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, सना एंड नाजिया तुर्क अपना मैसेज पहुँचाती हैं आज की सुबह। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग डियर, निशा जी अपना मैसेज हमें पहुंचाती हैं आज की सुबह। और नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी प्रोग्राम और गाने दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आपके, थैंक यू सो मच सर। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अमित वर्मा जी, हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से। अरे वाह क्या बात है, आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत गाना ही सुनने की आपने रिक्वेस्ट की है, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी सर। तो एवरीवन आप भी मुझे आज की सुबह अपना मैसेज पहुंचा दीजिएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने संदेश पहुंचाने में ना कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए कितने स्पीड में हमारे श्रोता जल्दी जल्दी से मैसेज टाइप कर रहे हैं, बस ऐसे ही आपकी उंगलियां ना रुकनी नहीं चाहिए।
जैसे स्पीड में आप इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं ना फटाफट से, वैसे ही मैसेज भी पहुंचा दीजिएगा हमें। और अभी सुनिएगा कुछ अमेजिंग ट्रैक ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, मेरे माइंड में ना एक खुराफाती थॉट चल रहा था, एक सवाल अभी आया है, तो मैंने सोचा कि चलिए अपने श्रोताओं से पूछ लिया जाए, क्योंकि आज के टाइम में ना एक चीज़ ऐसी है, हम सबके बिना रह पाते हैं लेकिन उसके बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त वो आपके हाथ में भी हो सकता है, आपके पॉकेट में भी हो सकता है, पर्स में भी हो सकता है, या फिर आप किचन में कुछ बना रहे हो, आपके सामने ही रखा हो।

समझ गए ना आप इशारा? ओहो, इंटेलिजेंट हैं आप। चलो आज की सुबह ना मैं आपसे एक मजेदार सवाल पूछती हूँ, ठीक है? अच्छा दोस्तों, मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मान लीजिए आपका फोन आज पूरे 24 घंटे के लिए आपसे ले लिया जाए, ठीक है? आपका फोन 24 घंटे के लिए अगर ले लिया जाए, ना इंस्टाग्राम हो, ना व्हाट्सएप हो, ना रील्स हो, और ना ही बार बार फोन चेक करने की आदत, तो आप क्या करेंगे बताइएगा मुझे। अगर एक दिन के लिए आपसे 24 घंटे के लिए आपसे आपका फोन लिया जाए, ना इंस्टाग्राम चलाएंगे आप, जब फोन नहीं होगा तो ना इंस्टाग्राम होगा, ना व्हाट्सएप होगा, ना बार बार रील्स स्क्रॉल करने का मौका मिलेगा, और ना ही बार बार आप फोन चेक करने की जो आपकी आदत है ना, वो भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, तो बताइएगा आप क्या करेंगे उसके बाद। हाँ, पहले 2 घंटे शायद फोन कहेंगे आप, ओहो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे आप, क्या करोगे आप, फोन ढूंढोगे? या फिर बस आप अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करेंगे, घर वालों से बातें करेंगे? बताइए बताइए, देखिए सच सच बताना है, ठीक है? जो भी मन में है वो आपको सच्चे सच्चे बताना है। अगर आपसे 24 घंटे के लिए आपका फोन ले लिया जाए तो आप क्या करेंगे जनाब, बताइए। एंड मैम, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, हाँ जी, जो आप अभी सुन रहे हैं, टुकुर टुकुर रेडियो की तरफ निहार रही हैं, अपना आंसर हमें पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो खुशी जी, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। अनुज कश्यप जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। अनुज जी, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, आई होप आप भी अच्छे ही होंगे, और ये मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, रामपुर से शमा जी हमें मैसेज पहुंचाती हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं नईमूल अकरम जी सिरसवा दोराहा से। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है, और ये मैसेज हमें मिला है रानी नांगल से रिहाना जी का, आज की सुबह गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहते हैं कि आप मैम आज किसी भी ट्रैक में हमें शामिल कर लीजिएगा, श्योर डियर। और अगला मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, गुड मॉर्निंग हमें विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अविनाश सतनागर जी का, और आज की सुबह हमें भी सर गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर अमित वर्मा जी का आया है, थैंक यू पहुँचाते हैं, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं अभी एक अमेजिंग ट्रैक, और ये गाना बहुत ही प्यारा सा है, राहत फतेह अली खान जी की आवाज में है, और इस ट्रैक के लिए हमें हमारी एक रेगुलर लिस्टनर ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा चलिए सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना, और अभी लौट कर आती हूँ ना तो एक और इंटरेस्टिंग सा मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? आप इंतजार करो। और मैंने आपसे पूछा है अगर आप से 24 घंटे के लिए आपका मोबाइल ले लिया जाए तो आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, क्या करेंगे आप, बताइए बताइए, रह पाएंगे ना?

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद,

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

बिल्कुल दोस्तों, जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियां लेकर आती है, नो डाउट। और अभी मैंने आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी पूछा था, याद है ना आपको, या भूल गए आप? अच्छा याद है, ओह वेरी गुड। तो मैंने आपसे आज का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एवरीवन, अगर आपसे 24 घंटे के लिए फोन ले लिया जाए तो आप कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें मैसेज पहुँचाते हैं वनित जी पीतल नगरी मुरादाबाद से, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहते हैं मैम, अगर 24 घंटे के लिए मेरा फ़ोन ले लिया जाए तो मैं पहले तो अपना फ़ोन ढूँढूँगा, फिर याद आएगा कि ओहो फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, उसके बाद घर वालों से बातें करूंगा, क्योंकि आखिर 24 घंटे में पता तो चले कि घर में कौन कौन रहता है। हाँ वही हम बोल रहे हैं ना, एक्चुअली ना क्या होता है, फोन इंसानों को ना बहुत दूर करता जा रहा है ना, जितना पास लेकर आ रहा है उतना दूर भी कर रहा है। अब देखिए विनीत जी ने जैसे कहा कि घर में कौन कौन रहता है, अगर पता तो चले कब कौन कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है, सब अपने फोन की दुनिया में इतना मशरूफ रहते हैं। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर नेहा जी का आया है, ये हमारे पास मैसेज पहुँचाती हैं प्रकाश नगर से, कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मेरा फ़ोन 24 घंटे के लिए ले लिया जाए तो मैं सबसे पहले सो जाऊंगी, क्योंकि फ़ोन हाथ में आते ही ना नींद गायब हो जाती है और रील्स चालू हो जाती हैं, तो एक दिन फ़ोन दूर रहेगा तो कम से कम नींद तो पूरी हो जाएगी। हाय रब्बा, इसका मतलब आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये विनित जी का मैसेज आया है हमारे पास विकास नगर से, ये कहते हैं मैम गुड मॉर्निंग, हम एफएम मुरादाबाद काफ़ी समय से सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है एंड सभी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे से शो होस्ट करते हैं, थैंक यू सो मच विनित जी। और ये कहते हैं कि अगर मेरा फ़ोन 24 घंटे के लिए चला जाएगा ना तो मैं घर में सबको परेशान करूँगा, क्योंकि फ़ोन नहीं होगा तो टाइम पास कैसे होगा, कोई तो चाहिए ना। और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा, अब बताओ फोन के बिना मैं कितना अच्छा पति लग रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है विनय जी, अच्छा समझ गए हैं, मतलब आपकी जो मिसेज हैं जो वाइफ हैं वो बोलती होंगी आपको कि फोन रख दीजिए, लेकिन आप फोन चलाते रहते हैं। हाँ उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए पूजा जी का, और ये विकास नगर से कनेक्ट होती है आज की सुबह, कहती है मैम अगर मेरा फ़ोन 24 घंटे के लिए ले लिया जाएगा ना तो मैं पहले तो बहुत खुश हो जाऊंगी कि चलो आज कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन 2 घंटे बाद खुद ही सोचूंगी अरे कोई मुझे याद भी कर रहा है या नहीं, पर फ़ोन वापस मिलेगा ना तो सबसे पहले व्हाट्सएप खोलूंगी। अच्छा जी ये बात है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, देखिए बाकी तो इन श्रोताओं ने हमें बता ही दिए हैं अपने अपने ओपिनियन, आप भी मुझे बताइएगा अगर आपको 24 घंटे के लिए आपका फोन आपसे ले लिया जाए तो आप कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, क्या करेंगे आप बताओ बताओ। जब तक आप हमें बताते हैं ना तब तक हम आपको एक अपडेट दे देते हैं। दोस्तों देखिए त्योहारों का सीजन आने वाला है, दशहरा दिवाली और फिर छठ पूजा, और इन त्योहारों पर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है अपने घर अपने परिवार और अपनों के बीच पहुंचने की, लेकिन इस खुशी के साथ ना एक टेंशन भी होती है, ट्रेन की टिकट मिलेगी या नहीं। तो यात्रियों के लिए एक काम का अपडेट है, त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अलग अलग रूट्स पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, इनमें दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले कई रूट भी शामिल हैं, यानी जो लोग त्योहारों पर घर जाने का प्लान

जा रहे हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा ट्रेनें और ट्रैवल ऑप्शन बन सकती है। तो एवरीवन, अब आप आराम से अपने घर जा सकते हैं, अपनों के बीच फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं।

लेकिन यात्रियों के लिए मेरी एक सलाह भी है कि सफर से पहले ट्रेन का लेटेस्ट शेड्यूल और टिकट की उपलब्धता जरूर चेक कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है एवरीवन। तो चलिए अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं। और तब तक के लिए आप भी अपने संदेश हमें पहुंचा दीजिएगा आज की सुबह। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9883789689। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खूबसूरत गाने सुनते रहिए, अपनी सुबह को खूबसूरत बनाते रहिए, खुशी के साथ मुस्कुराते भी रहिए।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। हर पल हर पल हमेशा एक ही नाम।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक सुना अलका याग्निक साथ में शान जी की आवाज में। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, लेकिन श्रोताओं अभी यहाँ पर बहुत सारी अपडेट हैं जो आप तक शेयर करनी है। वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 11:23। और श्रोताओं अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल गुड न्यूज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल जी अब पिता बन गए हैं। हां जी एवरीवन, सिंगर जुबिन नौटियाल जी ने खुशखबरी शेयर की है कि अब वो पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर अपने बेटी को जन्म दिया और जुबिन जी ने इस खुशी को अपने फैंस के साथ शेयर किया है। तो हमारी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां। सो और दोस्तों अब बात कर लेते हैं एशियन गेम्स में। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला एथलीट ने 4+100 मीटर रैली में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश का नाम रोशन किया। वही बात करते हैं अगर गुलवीर सिंह जी ने जीता ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय धावक गुलवीर सिंह जी ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के पदकों की संख्या में एक और इजाफा किया है। और दोस्तों अब अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम, क्या अपडेट है वो भी आपको खुशी यहाँ पर बताने वाली है। बस आप बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। एंड यहाँ पर आपके खूबसूरत मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी क्विकली शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं रईस दुल अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम खुशी मैम, क्या हाल चाल है आपके? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ सर, थैंक यू सो मच। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से आज की सुबह। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, सीताराम आपको भी जय श्री राम सीताराम। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अपना संदेश पहुंचाते हैं आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास आए बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी और साथ में संतोष कश्यप जी भी हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और अभी बैक टू बैक बहुत सारे मैसेज मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं सभी को शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है जो कि बहुत जरूरी है।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

देखिए दोस्तों, हम तो आपसे कहते हैं कि आप बहुत ही प्यारे हैं और ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ बहुत स्पेशल होती है, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। और आप तो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं एवरीवन। एंड मैंने आपसे कहा था कि अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम, और दोस्तों अक्टूबर से LPG सब्सिडी, UPI पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स और सार्वजनिक परिवहनों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव की जानकारी सामने आई है, और इन बदलावों पर असर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जेब पर पड़ सकता है। तो एक्चुअली 1 अक्टूबर से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड नेक्स्ट हम अभी बताने वाले हैं किसानों के लिए FPO फायदेमंद। उत्तर प्रदेश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों को मिलकर काम करने, बेहतर मार्केटिंग, पैकेजिंग और अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। साथ ही साथ हम आपसे ना एक और सवाल पूछ लेते हैं एवरीवन, बिना किसी देरी के। दोस्तों आज बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर शान जी का बर्थडे है, आपको उनका मुझे फुल नेम बताना है। जी हाँ, आज बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर शान जी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा उनकी बर्थडे पर आपसे क्यों ना सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाए। आपको उनका, शान जी का फुल नेम मुझे बताना है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896, तो जल्दी से बताइएगा। और यहाँ पर जो संदेश आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, इरशाद अंसारी जी, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। आपका शो सुन रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये मैसेज हमें आसिफ जी पहुंचाते हैं इटली से, एवरी मॉर्निंग की तरह आज भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा है। और ये कहते हैं कि खुशी जी आज आपका अलग अलग भाषाएं सीखने वाला जो विषय है बहुत ही अच्छा है, और आज 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। मुझे लगा कि आज के दिन आपका भाषाओं से जुड़ा ये विषय और भी खास होगा। एग्जैक्टली सर, और सच कहें तो कई नई भाषाएं को सीखना केवल एक शब्द नहीं, ये कहते हैं कि सीखना नहीं होता है बल्कि उस भाषाओं की संस्कृति और वहाँ के लोगों को समझने का भी एक खूबसूरत तरीका है। एग्जैक्टली सर, और ये कहते हैं खुशी जी मैं भी आपको इतलाबी भाषा में कुछ लिखकर भेज रहा हूँ, देखिएगा क्या आप इसका अर्थ समझ पाएंगी। ओ वाओ, और एक गाने की रिक्वेस्ट भी सर ने भेजी है, श्योर मैं इसको जरूर प्ले करूंगी सर। और नेक्स्ट कहते हैं खुशी जी अगर 24 घंटे के लिए मेरा मोबाइल गायब हो जाए तो मेरी हालात ऐसी हो जाएगी जैसे पिंजरे से पंछी नहीं बल्कि पंछी को ही पिंजरे में बंद कर दिया हो, समझ नहीं आएगा कि क्या करूं क्या नहीं, मोबाइल के बिना हालात ऐसे होगी जैसे चाय बिना शक्कर। ओह हो, एकदम फीकी फीकी यार अरे। और ये कहते हैं हाथ बार बार जेब में जाएगा और फोन की जगह खालीपन देखकर दिल कहेगा भाई तू गया, अरे अरे अरे। लेकिन फिर सोचता हूँ शायद उसी बहाने पुराने रेडियो पर कान लगा लूँ एक कप कड़क वाली चाय, अच्छा ब्लैक कॉफी, हाँ आपको तो ब्लैक कॉफी पसंद है ना सर। और कहते हैं कि साथ में थोड़ी देर मोबाइल की दुनिया से दूर होकर असली सुकून भी महसूस कर लूँ,
तो 24 घंटे के लिए मोबाइल बिना रहना मुश्किल तो होगा, लेकिन शायद बुरा भी नहीं होगा. एग्जैक्टली मैं यही तो बोल रही थी. और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है. ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं गुजरात से मधु भाई चौहान जी. एंड गुड मॉर्निंग, आज की सुबह हमें पहुंचाते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर. तो चलिए एवरीवन, अभी मैं लौट कर आती हूँ और कुछ शानदार गाने आपको सुनवा देते हैं जो कि हमारे श्रोताओं की रिक्वेस्ट पर ही हैं. एंड ये मैसेज हमें बबली अनजान जी ने पहुंचाया था और खूबसूरत गाना है जिस पर सब थिरकना चाहेंगे, स्पेशली गर्ल्स तो ज़रूर थिरकेंगी क्योंकि गाना बहुत प्यारा है.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, विंस अगेन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। और दोस्तों, आज की तारीख ना संगीत प्रेमियों के लिए थोड़ी और खास है, क्योंकि यार जन्मदिन है उस आवाज का जिसने अपनी सॉफ्ट मेलोडियस और दिलों को छू लेने वाली आवाज से बॉलीवुड के कई खूबसूरत गानों को यादगार बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है हमारे अपने शान जी की। 30 सितंबर 1972 को मुंबई में जन्मे शान जी का रिश्ता संगीत से बचपन से ही रहा है। उनका परिवार भी संगीत की दुनिया से जुड़ा था, लेकिन उनकी अपनी जर्नी शुरू हुई विज्ञापनों के जर्नलिस्ट से, और फिर धीरे धीरे उनकी आवाज ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। प्राइवेट एल्बम से लेकर बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर प्लेबैक तक, और फिर आया साल 2000 जब तन्हा दिल ने शान की आवाज को एक अलग पहचान दी। इसके बाद एक से बढ़कर एक ट्रैक, जब भी दिल उनको सुनता है तो एक अलग ही सुकून मिलता है।

दोस्तों उनकी आवाजों को करोड़ों दिलों तक पहुंचाया जाता है एंड पहुंचती है। और शान सिर्फ सिंगर ही नहीं रहे, उन्होंने टीवी पर भी होस्ट और रियलिटी शो जज के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। यानी सिंगिंग से स्क्रीनिंग तक उनका सफर वाकई बहुत ही खूबसूरत रहा है। और मैंने आपसे पूछा था कि शान जी का रियल नेम, उनका फुल नेम क्या है, और हमारे पास यहाँ पर तमाम मैसेज आए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इतने खूबसूरत शानदार मैसेज पहुंचाए हैं आज की सुबह। और सबसे पहले हमें सही जवाब आज की सुबह पहुंचाया है रिहाना जी ने रानी नांगल से। एंड बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आप बनती हैं हमारे शो की विनर क्योंकि आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब।

और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये कहाँ से किसने पहुँचाया है जरा उनका नाम भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुँचाया है यहाँ पर सही जवाब के साथ आसिफ जी ने इटली से, और ये सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह। शांतनु मुखर्जी, एग्जैक्टली राइट आंसर यही है। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाते हैं

मोहम्मद कामिल जी, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाया है आज की सुबह। इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस समय गुड मॉर्निंग और सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह। अरे विवन, अपना नाम मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन आप भूल क्यों जाते हो, मुझे समझ में ये नहीं आता है। लेकिन फिलहाल बाय द वे आपके लिए हम बजाते हैं जोरदार तालियां, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है।

कॉन्ग्रेचुलेशन रिहाना जी, आप बनती है हमारे शो की सुपरस्टार क्योंकि आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आया है अमरोहा से नेहा जी का, और आज की सुबह ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हाय मेरी क्यूट सिद्धि, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अफरोज फातिमा जी हमें मैसेज पहुँचाती हैं और कहती हैं, कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे आप अपनी पसंद का कोई भी एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा। और साथ में इनकी फ्रेंड भी हैं लाइबा, साथ में नजमा जी हैं, शुभनम जी हैं, एंड थैंक यू पहुँचाती हैं आज की सुबह। अरे मोस्ट वेलकम डियर, थैंक यू की कोई बात नहीं है, हम सभी परिवार ही तो है। और अगला यहाँ पर मैसेज हमारे पास आया है खुशी जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, कैसी हैं आप? आजकल कहाँ बिजी रहती हैं आप खुशी मैम? एक्चुअली हम तो कहीं बिजी नहीं रहते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी परवलीस जी, अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की मॉर्निंग।

और सर का मैसेज यहाँ पर आया है मोहम्मद कामिल जी का, ये गुड मॉर्निंग विश करते हैं, साथ में लाइबा काजमी जी का भी इन्होंने नाम मेंशन किया है और एक गाने की रिक्वेस्ट भी भेजी है, साथ में इन्होंने एक शायरी भी लिखी है कि बहाने बहाने से आपकी बात करते हैं, हर पल आपको महसूस करते हैं, इतनी बार तो आप सांसें भी नहीं लेते होंगे जितनी बार हम खुशी मैम आपको याद करते हैं। अरे अरे क्या बात है, तभी हम सोचें कि इतनी हिचकियां हमें क्यों आती हैं। हाँ अब समझ में आ रहा है रीजन हमें। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए एवरीवन अब मैं चलती हूँ, लेकिन आपसे मिलूंगी सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए एंड शांति को आरजे खुशी एफएम मुरादाबाद की पूरी फैमिली की ओर से एंड सुनने वाले तमाम श्रोताओं की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शांति का एक बेहतरीन ट्रैक जो मुझे बहुत पसंद है, तो चलिए जाते जाते आपको भी सुनवा देते हैं एंड जाते जाते बस खुशी यही कहेगी कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
4: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जुड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
3: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: इन दिनों आप हमारे रेडियो से लगातार सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और इसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया जा रहा है। तो आज हम सितंबर महीने की फसलों की देखभाल के संदर्भ में आपको बताने के लिए आए हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में सिंह साहब।
2: स्वागत के लिए आपका शुक्रिया संजय जी, और सभी श्रोता जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार।
1: तो सबसे पहले तो हम सिंह साहब ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम के एस क्या योजना है, और इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे?
2: जी, भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे पीएम की एस के तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे तो उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो पीएम केएस के है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है, और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है। तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: ये जो केंद्र है देश भर में कहाँ कहाँ पे हमारे किसानों को उपलब्ध होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ की बात है या उत्तर प्रदेश की बात है, तो वो कहाँ पे वो केंद्र?
2: जी, इसमें जो भी खाद के बिक्री के केंद्र है वो सारे अब इसी नाम से जो जाने जाते हैं। अच्छा। तो उसके लिए कोई आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये कोई अलग से होगा। जहां से आप अब तक उर्वरक या खेती के आदान जो लेते आए हैं और जहां से आप ले रहे हैं वो सारे पीएम के स्कीम में शामिल है।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ये दुकानें खुली है, नहीं, इनको एक अलग से नाम दिया गया है और इनके लिए कुछ जो कार्यशैली तैयार करी है उर्वरक मंत्रालय ने और भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से, कि आपको इस ढंग से अब अपने विक्रय का काम करना है और जो किसानों को सलाह देनी है उसके उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी उर्वरक या खेती का आदान जो हमारे किसान प्रयोग कर रहे हैं उसका समुचित लाभ उनको मिले और उनका संतुलित उपयोग हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है कोई चीज इस्तेमाल करनी तो वो हम जो किए जा रहे हैं और उसका कोई तरीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है। तो ये इसलिए है, तो मेरा अनुरोध है कि आप इन सेवाओं का लाभ उठाइए। तो भारत सरकार ने बहुत सोच के ये सेवाएं आरंभ करी हैं और इनके बड़े लाभ हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दुकान पे आ रहे हैं, आप अपनी बात समझा नहीं पाते, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो इसमें ऐसी भी व्यवस्था है कि उर्वरक की जो कंपनियां हैं वो और कृषि विज्ञान केंद्र वो आपके खेत पर जाके भी आपकी समस्या को देख के उसका समाधान आपको जो बताएंगे
1: जी।
2: तो एक बड़ा ही जो अच्छा ये कार्यक्रम है, महती कार्यक्रम है, और मैं जो जो आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि सारे किसान भाई इसमें शामिल हो और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें।
1: और जो लोग अभी तक शामिल हो चुके हैं वो लोग देख ही रहे होंगे कि उन लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है इसका।
2: बिल्कुल जरूर।
1: तो जो उर्वरक के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक संबोधन भी दिया था
2: जी,
1: हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि उसका क्या उद्देश्य है?
2: जी बिल्कुल, असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो वो नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीदते, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य खराब होगा तो हमें फिर आगे चल के अच्छी फसलें नहीं मिलेंगी,
1: और वो जो फसलें अच्छी नहीं मिलेंगी ज्यादा उर्वरक और नुकसान करने वाली, तो वो हम भारतवासियों को भी जो हम खाएंगे तो
2: हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होगा
1: जी।
2: तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है।

0: मुख्यमंत्री जी के इस संबोधन के बाद हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके बीच कार्यक्रम खेती किसानी लेकर। और आज हमारे साथ डॉक्टर ए के सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंपल फर्टिलाइजर्स, साथ में बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में, जो अब हमको बताएंगे कि सितंबर माह की फसलों की देखभाल कैसे की जाए।
1: जी
0: तो सबसे पहले जो धान फसल की देखभाल, अभी अभी अब सब जगह
1: जी
0: पे
1: हो
0: बरसात
1: रहा है
0: हुई है, मानसून हुआ है, सब
1: बिल्कुल
0: जगह पे थरहा लगा के बुआई का काम हो चुका है। तो धान की फसल के अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं उसके पौधे जो हैं, तो उस फसल की देखभाल कैसे की जाए इसके बारे में
1: जी
0: सलाह
1: हाँ।
0: दीजिए।
1: वैसे तो सभी किसान भाई इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी दो चीजें मुख्य हैं। एक तो उसका पोषण। अब पोषण से जब बात आ जाती है धान में, तो हम ये ना देखें कि जो स्थूल उर्वरक है, जैसे कि जो कट्टे में खाद आ रहा है, उससे ही संबंधित न रहे। अगर हमें कहीं कहीं जो लगता है कि उसमें पोषण की कमी है, तो आजकल ऐसे भी पोषक तत्व आ रहे हैं जिनका कि हम स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है जिंक की कमी है, तो आप जिंक का स्प्रे कर सकते हो। जिंक की मात्रा ले लें और उसका आप स्प्रे करें। जैसे कि 350 ग्राम जिंक है और करीब करीब आप 150 ग्राम चूना ले सकते हैं 100 लीटर पानी में घोल के। जब फसल आपकी 45 से 60 दिन के बीच की हो, उस समय पर अगर आप एक स्प्रे करेंगे, तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। जिंक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और धान में खास तौर से इसका बड़ा लाभ मिलता है। अगर जिंक की कमी है, तो फसल उत्पादन में कमी आती है और जो अनाज के अंदर पोषक तत्व होते हैं, उनमें काफी कमी हो जाती है। तो आप ध्यान दें, अगर खैरा रोग से संबंधित कोई असर दिख रहा है, जैसे कि जो धान का पत्ता, उस पर आपको जिंक जैसा लगता है, या मतलब ऐसी जो जंग जैसी हल्का सा उनकी नजर आता है, तो जिंक की कमी है, आप उस पर स्प्रे करें। इसके अलावा बहुत सारे और भी फर्टिलाइजर आते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं, जिनको हम एनपीके बोल देते हैं। जैसे हमारा उत्तम रिचार्ज आता है, अलग अलग कैटेगरी 19-19-19 होता है, 0-32-0 होता है, ऐसे अलग अलग तरह के ग्रेड होते हैं। उनको भी आप पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये पोषक तत्व की बात रही। इसके अलावा कीटों से संबंधित है, तो कीटों में जैसे कि आपका जो तना छेदक है, पत्ती मोड़क है, तो उसके लिए हमारा एक तो उत्पाद आता है ऑर्बिक्स। ये आप 4 किलोग्राम और खेत की मिट्टी हो या कोई भी सूखा रेत हो, उसमें इसको मिलाएं और आप इसको खेत में फेंक सकते हैं जहां पे पानी है। तो आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है हमें स्प्रे करना है, तो एक दवा आती है प्रोटा के नाम से, 60 ml दवा है और करीबन 150 लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें बात ये ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में जो जो जो धान का पौधा है, उसका आकार ज्यादा है, तो पानी की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर छोटा है, तो थोड़ी कम कर सकते हैं। दीमक वगैरह है तो एक उत्पाद आता है स्टेमो के नाम से, ये 8-10 किलो मात्रा है, रेत में इसको मिलाएं और 1 एकड़ के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लीफ फोल्डर है, तो इसके लिए एक दवा आती है लेपिडिस, 100 ग्राम दवा, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका जो है छिड़काव करें। और इसके अलावा संज्ञा जी, कुछ रोग होते हैं, रोग जैसे सीथ ब्लाइट है, सहसा मारी ब्लास्ट है, ये बहुत सारे रोग हैं। तो रोग के बारे में ये कहा जाता है कि रोग से अगर पौधा खराब हो गया, तो उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन रोग को वहां रोका जा सकता है। तो एक दवा है एजोल करके, ये 200 ml दवा है। जब आपको इसके दिखे लक्षण, इसमें क्या होता है, अंग मारी मतलब पौधा आपका सूखने सा लगता है, तो 200 ml दवा 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका छिड़काव करें। इसके अलावा फुलकोट भी एक दवा है, ये भी 150, ये फफूंदनाशी है। ये करीब करीब सारी फफूंद से संबंधित बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के लिए ये काम आते हैं। इसके अलावा उत्तम लैक्जोन है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में दवा हो, एजोल है, लैक्जोन है, फुलकोट है, इन तीनों में से कोई भी एक दवा आप लेके छिड़काव करें, जिससे रोग की रोकथाम की जा सकती है।
0: तो ये तो धान की फसल के बारे में आपने जानकारी दी कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी
1: जी
0: बीमारियां हो सकती हैं
1: जी
0: पौधों
1: जी
0: को, पत्तों से जुड़ी हुई, तनों से जुड़ी हुई, या फफूंद लग गई है, या तो उसके लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सितंबर महीने में अब हम अगले सोयाबीन की फसल के
1: जी
0: बारे में बात करते हैं। जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है और उसमें कुछ बीमारियां नजर आ रही हैं, या उनकी उस फसल की देखभाल वो लोग कैसे कर सकते हैं।
1: हाँ, सोयाबीन में अगर जैसे कि कीड़े आते हैं खास तौर से, तो अगर कीड़ों में देखे सेमी लूपर होता है, ऐसे ये जो कैटरपिलर टाइप का होता है, जो धीरे धीरे चलता है, कभी ऊपर उठता है, नीचे जाता है, ऊपर जाने से उठता जाता है, तो इसको सेमी लूपर बोल देते हैं, जो तना मक्खी बोल देते हैं। इसके लिए भी एक उत्तम छोटा दवा है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। के नाम से एक दवा आती है, वह

0: आप प्रयोग कर सकते हैं, वीर कोमली के नाम से, मतलब ये सारे कीटनाशक है। अब इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, उनका प्रयोग करें। दूसरा इसमें ध्यान ये रखें कि जब भी आप स्प्रे करें तो ऐसे समय पर करें कि जब आपको लग रहा हो कि खेत के जो हमारी फसल है उसकी पत्तियां सूखी हैं, और दोपहर के आसपास करें या सुबह के टाइम कर लें, और उसके बाद करीब करीब 8-10 घंटे बारिश ना हो, तो जो मतलब दवा है उसका असर रहेगा और वो कीड़े मरेंगे। तना मक्खी है, उसके लिए नेमडा स्ट्रॉन्ग के नाम से एक दवा आती है, 120 ml दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मक्खियां जैसी होती रहती है, उसको तेला बोल देते हैं, सफेद रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है। ये जो एक तरह से मक्खी है, ये क्या करती है, ये रोग को फैलाती है एक खेत से दूसरे से, दूसरे से ऐसे करके। तो इसके लिए आईमैक्स नाम से एक दवा आती है, 80 से 100 ग्राम दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें और इससे इसको रोके। लेकिन साथियों, जैसे ये तो इस वर्ष की बात होगी, लेकिन आगे के समय के लिए मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर रोगों की रोकथाम या कीटों की रोकथाम के लिए आप चाहते हैं कोई सार्थक उपाय हो सके और उनकी संख्या कम रहे, तो उसके लिए आप जिस खेत में फसल लगा रहे हैं उसके चारों ओर कोई अन्य ऐसी फसल अवश्य लगाएं जो कि जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। जैसे कि सोयाबीन लगा रहे हैं तो उसके आसपास की जो वो जो मेड़ है उस पे आप 4-5 कूड़ किसी और फसल के लगाएं जो इस समय लगती है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट आपके खेत तक
1: नहीं
0: नहीं आ
1: पहुंच
0: पाते
1: पाते
0: हैं, और जब एक बार आपने उसका उपचार कर दिया तो वो फिर दोबारा नहीं आएंगे उस खेत के, खेत में ही वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर खेत खुला एक्सपोज रहता है तो आपने अभी स्प्रे किया तो वो यहां से भाग के दूसरे खेत में चले जाएंगे, और जैसे ये असर कम होगा
1: फिर वापस आ
0: फिर
1: जाएंगे।
0: वापस आ जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें कि जो भी आप स्प्रे करें उसके लिए टंकी वगैरह पूरी अच्छी तरह से साफ कर लें, पानी जो लें वो साफ पानी लें, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी होती है तो दवा का असर कम हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। और कोई भी कीटनाशक या फफूंद नाशक आप प्रयोग जब करते हैं तो उसका कम से कम जो 15 दिन तक असर रहता है, तो इंतजार करें कीड़ों का जो खत्म होने का। हड़बड़ी में 5 दिन बाद ही आपको लगा और आपने फिर दोबारा स्प्रे ऐसा न करें, उससे क्या होता है कि जो कीटे हैं जो कीड़े हैं उनके ऊपर जो दवा का असर फिर आने वाले समय में कम होता है, उनमें वो उसको रोकने की क्षमता आ जाती है। तो ये ध्यान रखें। और जहां तक रोग की बात है तो जैसे मोजेक रोग है, रतुआ रोग है, और फफूंदी से संबंधित और रोग है, तो इनके लिए एक उत्तमैजोल जो दवा है 200 ml प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमारा जो फफूंदनाशी आता है इसको मैंजिम बोलते हैं, 400-500 ग्राम लें, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे करिए, तो इससे बहुत सारे रोगों का नियंत्रण किया जा सके। आपको लग रहा है कि किसी दूसरे और के खेत में अगर कोई रोग है तो आप सुरक्षात्मक भी एक स्प्रे कर सकते हैं।
1: जी श्रोता साथियों, खेती किसानी कार्यक्रम में आप इस समय हमारे कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं सितंबर माह की फसलों की देखभाल के बारे में जानकारी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर एके सिंह, जो चंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं। तो इन्होंने धान की फसल और सोयाबीन की फसल के बारे में, तो कैसे देखभाल की जाए इसके बारे में सलाह दी। अब हम आपसे चाहेंगे डॉक्टर साहब की मूंगफली की फसल
0: जी
1: जिन किसानों ने लगाई
0: बिल्कुल,
1: है, तो वो लोग उसकी देखभाल कैसे
0: हाँ
1: करें इसके
0: बिल्कुल।
1: बारे में बताएं।
0: मूंगफली की फसल हमारी एक तरह से खाद्य फसल है और इसमें प्रोटीन की काफी मात्रा पाई जाती है, और सभी क्षेत्रों में लगभग जहां भी उपयुक्तता होती है, थोड़ी हल्की जमीन होती है वहां पर हम इसको उगाते हैं। पोषण के रूप में अगर हम ऐसा कह लें तो इसमें एक हमारा जो है उत्पाद आता है आरिस गोल्ड के नाम से, ये जैव उत्पाद है, ये 500 ml है, और इसको पानी में घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। इसके अलावा हमारा एक जो फैटलेस के नाम से भी आता है इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, ये करीब करीब 1 लीटर पानी में 5 ml के आसपास आप घोल लें और फिर इसका आप स्प्रे करें। 100 लीटर पानी क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि फसल को मिलते हैं। अब बात आती है कीड़ों के बारे में, तो ऊपर से ये पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं, तो वो जो पत्तियों को खाते हैं और उनको खत्म करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई मूंगफली तो नीचे लगती है तो ऊपर क्या फिर कोई टेंशन की बात करेंगे,
1: पत्ते खा रहे तो खाते
0: हाँ,
1: रहेंगे।
0: लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पत्ते होते हैं इनसे भोजन बनता है फसल का, ये धूप से भोजन
1: जी
0: बनाते हैं,
1: हाँ
0: और वैज्ञानिक तथ्य तो ये कहा जाता है कि 80 से 90% तो जो भोजन है वो पौधे अपने ऊपरी भाग से बनाते
1: जी हाँ प्रकाश
0: हैं,
1: संश्लेषण के
0: प्रकाश
1: लिए से
0: संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो आप इनकी रोकथाम करें इसके लिए प्योटा नाम से दवा आती है, कीटनाशक है, 200 लीटर पानी में घोल के 60 ml आप छिड़काव कीजिए। और एक इल्ली आती है तंबाकू की इल्ली बोलते हैं, इसके लिए प्योटा से भी ये कंट्रोल हो जाएगा, और अगर प्योटा नहीं है योटा है तो योटा से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कीटों का कंट्रोल बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और धीरे धीरे अगर उनको मौका मिल गया तो वो नीचे भी घुस के जो फलियां हैं उन पर भी वो आक्रमण कर सकते हैं। फिर जहां तक रोग की बात आती है तो मैं यही कहूंगा कि इसके लिए एक बड़ी सीधी सादी दवा है जिसको हम मैंजिम बोल देते हैं, और मैंजिम लगभग कोई भी, जैसे आपका लग रहा हो टिक्का रोग हो, धब्बा रोग हो, रोली गेरुआ रोग हो, इनमें सब में ये करीब करीब काम आ जाता है। 200 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें। छिड़काव के समय सावधानी में खास तौर से देखने वाली बात यही है कि उससे पहले कोई बारिश न हुई हो, क्योंकि अगर जो पौधे ने पानी ऑलरेडी उसकी पत्तियों में अच्छा है तो वो जो दवा आप स्प्रे करेंगे उसको अच्छे से सूखेगी नहीं, क्योंकि उसकी पूर्ति हो चुकी है तो उसके अंदर थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए सूखने की, तो वो सूखेगी, पानी सूखेगी तो उसके साथ उसकी दवा भी जाएगी, और उसके 8-9 घंटे तक मौसम खुला रहे तो बहुत उपयोगी रहता है। तो ये मूंगफली के बारे में जानकारी रही।
1: देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के किसान इस समय सितंबर महीने में जिन फसलों को लगाते हैं उनमें धान, सोयाबीन और मूंगफली के बारे में जानकारी डॉक्टर एके सिंह दे चुके हैं कि कैसे उसकी देखभाल की जाए हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि मक्का की फसल की देखभाल कैसे करें वो
0: जी
1: किसान जिन्होंने इस समय मक्का की खेती की हो।
0: हाँ, मक्का की फसल अब अगर देखें सरिया जी तो जो जायद में भी होने लगी है, जायद मतलब रबी की फसल कटी है उसके एकदम बाद,
1: अच्छा
0: और काफी लाभकारी जो खेती होती जा रही है, और काफी लोग करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर धान लगा लेते हैं या कोई और फसल लगा लेते हैं खरीफ में। तो पोषण के लिए तो यह है कि अभी ये जो कटाव के आसपास आ गई है, तो अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ इसमें खुराक की जरूरत है या हमें जो देना चाहिए, तो इसमें आप हैरिस गोल्ड के नाम से जो जो हमारा एक उत्पाद आता है, 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोले, और 1 एकड़ में 100 से 200 लीटर आप जो पानी का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई जैसे सोल्यूबल या जो NPK मिलते हैं, ये 1 किलो की पैकिंग में भी मिलते हैं, अधिक में भी मिलते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, जैसे 19-19 है, पोटास से संबंधित कुछ होते हैं, तो उनका भी आप स्प्रे आराम से कर सकते हैं। इस समय पर कोई अन्य स्थूल उर्वरक न डालें क्योंकि उसका उतना लाभ नहीं होगा, और आपको ठीक है खर्च जरूर कर देंगे तो, लेकिन उसका कोई लाभ आपको ज्यादा नहीं मिलता। कीटों से संबंधित बात है तो करीब करीब कीटे जो इस समय पे एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे इसलिए होते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, उन्हें हरी फसल चाहिए कोई भी, तो हरी फसल सॉफ्ट होती है, उसको खाने में उन्हें आसानी होती है, तो एक तना छेदक है उसके लिए उत्तम प्योटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रस चूसने वाले जो कीड़े जैसे चैपा तेला, वैसे आमतौर पर ज्यादा नहीं देखा जाता मक्का में, लेकिन अगर वो वहां पर आ गया है तो उसको अपना जीवन काल पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं जाके वो अपना कुछ भोजन ढूंढता ही है, तो रस चूस सके हैं जैसे कि चैपा तेला है, आईमैक्स उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। सफेद लट है तो उसके लिए भी आप कोई इस तरह की दवा ले सकते हैं, स्टेमो है 8 किलोग्राम है, उसको भी आप 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ कीड़ों के बारे में जानकारी रहेगी। कीड़े को होता क्या है, इस समय पे जो आपका भुट्टा लग रहा है उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अगर पौधे के अंदर जो आ गए तो वो पूरे उसको पौधे को खराब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें आप अपनी निगाह रखिए, अगर कीड़े हैं स्प्रे करिए, और अगर कीड़े नहीं है तो कोई चिंता की बात
1: नहीं।
0: नहीं है। और जहां तक रोगों की बात है तो एक लीफ ब्लाइट रोग होता है, एक रतुआ रोग होता है, एक चारकोल रोग होता है, इसके लिए फफूंदनाशी आप सीधा सा ले लीजिए, फफूंदनाशी मैंजिम है या VM45 है, जिनकी 400 ग्राम जो मात्रा है 200 लीटर पानी में घोले और स्प्रे करें। अब घोल के स्प्रे करने वाली जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मक्का की फसल इतनी बड़ी होगी कैसे स्प्रे करें, तो उसके लिए साथियों मैं यही कहूंगा कि आजकल स्प्रे के बहुत अलग अलग औजार आ रहे हैं, मतलब जो आपके तेल से भी चलते हैं, बैटरी से भी चलते हैं, काफी दूर तक उनकी मार
1: अच्छा।
0: होती है, तो जैसे मक्का के खेत में रखाने के लिए कहीं कहीं मचान होते हैं, उनके खड़े होकर उनके ऊपर खड़े होकर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इस तरह का प्रयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा।
1: मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और धान, ये तो बड़े खेतों की बातें हो गई जहां पर किसानों ने फसल लगाई है वो लोग कैसे देखभाल करें उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन जब बात सब्जियों की आती है तो कुछ बड़े किसान भी होते हैं, कुछ घरों में किचन गार्डन लगाने
0: जी
1: वाले लोग भी होते हैं जो छोटी छोटी जगहों पे सब्जियां लगाते हैं,
0: जी
1: तो जिन लोगों ने भी किसी भी तरह की सब्जी इन दिनों लगाई है सितंबर
0: जी
1: महीने के हिसाब से, तो उनकी फसल की देखभाल कैसे की जाए, अब हम आपसे अंत में ये
0: हाँ,
1: जानना चाहेंगे।
0: सब्जियों में अगर हम देखें तो इस समय पर दो स्थितियां हैं। एक तो क्या है, जो हमने पहले लगाई थी उस समय फल मिल गए। दूसरी यह है कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, उसकी पौध लगा रहे हैं, या कहीं कहीं पौध तैयार हो गई तो हम खेतों में उसका रोपण कर रहे हैं, या अपने छोटा सा कोई बगीचा है उसमें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय पर जैसा कि अन्य फसलों में कीड़े बहुत आते हैं, कीड़ों की रोकथाम के लिए आप जरूर प्रयास करें। और उसका यह है कि अगर बहुत छोटा रकबा है, जैसे कहीं पर आप अपने मकान नहीं लगा रहे हैं जो कि आप अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तेज स्प्रे का अगर पानी भी कर देंगे तो कीड़े नीचे गिर जाते हैं।
1: अच्छा।
0: अगर कोई खेत है तो उसमें कीटनाशक जो दवा है, लेकिन कीटनाशक में आजकल अलग अलग श्रेणी आती है। कुछ कीटनाशक होते हैं जिन पर लाल रंग होता है, और कुछ होते हैं जिसमें पीला होता है, कुछ होते हैं जिसमें हरा होता है। तो कोशिश करें हरा या ज्यादा से ज्यादा पीला, क्योंकि सब्जियों को हम हरी अवस्था में ही प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो ऐसा हम अपनी ओर से प्रयास करें। तो उसमें कीटनाशक जो है या तो हरे वाला हम ले लें या पीले वाला, ज्यादा से ज्यादा हरे वाला मिल रहा है तो वो हमारे लिए ज्यादा ठीक है, या तो हम उसका उपयोग करेंगे या कोई ना कोई और उसका उपयोग करेगा। और कभी कभी शायद पुराने समय में लोगों ने देखा होगा, और हमने तो देखा है कि राख जो होती थी, राख को जो पौधे ऊपर जो डाल दिया करते थे, उससे कीड़े उसको खाते नहीं थे, क्योंकि राख अगर उसको खाएंगे तो राख भी उसके मुंह में जाती थी और वो उससे हट जाता था।
1: अच्छा।
0: तो और उसमें पोटास की भी मात्रा होती है, पौधे को पोषण भी कभी कभी मिल जाता है। तो
1: उसका उपयोग करना चाहिए।
0: हाँ, उसका किया जा सकता है, उसका कुछ अनुभव भी लिया जा सकता है। पहले लोग करते थे उसको, पहले कोई कीटनाशक नहीं थे, लेकिन फिर भी सब्जियां होती थी और भरपूर मात्रा में होती थी। इस समय पर तोरई, लौकी, टिंडा, ऐसी ऐसी सब्जियां, और जो आपका करेला, इतनी अत्यधिक मात्रा में होती थी कि आराम से लोग खाते थे, सस्ती भी बहुत हो जाती। तो आम जन भी जिनके यहाँ वो उपलब्ध नहीं है वो भी उसका प्रयोग कर लेते थे। तो ये तो अभी खड़ी फसलों के बारे में हुआ। बाकी जो पौधे हैं, जो पौध आप लगा रहे हैं, अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो उसका थोड़ा आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रखिए, जिससे कि कीड़े वगैरह उस पर वहां ज्यादा असर न करें। शुरुआत में ये इस तरह की सुरक्षा रखें, जैसे कि होता है ना कि कोई चीज हम रख रहे हैं तो उसकी बाड़ बना देते हैं लाइक दैट, उस तरह से हम उसको करें। और पौधा आजकल तो जो थैली में भी तैयार हो जाती है, उसकी प्लास्टिक की थैली होती है, मिट्टी होती है, बीज लगा देते हैं, तो जब तक वो आपकी जो 25-1 दिन की होती है तब तक हम उसको सुरक्षित रखते हैं, और फिर जब समय आ जाता है तो हम खेत को उसकी रोपाई कर देते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि जो अन्य फसलें उनके साथ साथ सब्जियों की अवश्य लगाएं, थोड़ी लगाएं खेत के आसपास, अगर आपको बेचना नहीं है तो भी आप लगाएं, होगी तो आप अपने इस्तेमाल में जो कर सकते हैं, ज्यादा होगी तो आप अपने आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, आपके अभी नाते रिश्तेदार आए उसको दे सकते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अच्छा लगता है आदमी को कि हम वहां गए थे और वहां से ये
1: हमको ताजी सब्जियां मिली,
0: ताजी सब्जियां मिली।
1: तो चलिए, बहुत सारी बहुत अच्छी जानकारी हमको आज के इस खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर्स के हैं, जो है इन्होंने हमको दी, और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सितंबर माह की फसलों की देखभाल के बारे में इस जानकारी के साथ। और आप सभी श्रोताओं से अब हम विदा चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से, और फिर आते हैं हम अगले अंक के साथ कुछ और जानकारियां लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल, और इसके लिए आज हम दोनों सिहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
4: नमस्कार आरजे खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही थी, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए।
5: हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24%, 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म नहीं मना पाते। यह 2023 से 1% कम हुआ है।
3: तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
4: नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौत के जीवन के पहले सप्ताह में ही होती है, और इनके प्रमुख कारण है समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
5: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुए हैं, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गवा देते हैं, जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
3: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
4: बिल्कुल सही कहा आपने आरजी खुशी, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत ही अहम है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगना, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
3: यानी यह सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
5: जी हाँ, इससे पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चों को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं यह देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचने में मदद करता है।
4: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल हैं, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से, और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
3: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे जानेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
6: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है, ये बच्चे को निमोनिया डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
7: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए चाहे कोई कुछ भी कहे, क्यों अनु जी?
6: बिल्कुल, जन्म के एक घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
8: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
7: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
9: अब देखो मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
10: जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियाँ और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
7: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
3: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
4: बिल्कुल जरूरी है आरजे खुशी, जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
5: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
4: इन टीकों से बच्चों को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी भी बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर ही करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
3: यानी बच्चों की मजबूती शुरुआत के लिए 2 बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाली टीके।
4: बिल्कुल, मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चों के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
3: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
5: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसके लिए इसे गोल्डन आवर कहते हैं।
3: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
4: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
5: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है, कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, यह बच्चे की पहली सुरक्षा है।
3: तो साफ संदेश पहला पीला दूध फेंकना नहीं बच्चों को देना है
5: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा, दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
4: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
3: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
5: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
3: गर्मी में पानी भी नहीं?
4: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
3: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
5: हाँ, रोना भूख नहीं होता, बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
3: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
5: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
4: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और चूँकि देखभाल शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
3: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
4: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
5: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
3: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
4: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं। खास करके जब माँ को आराम चाहिए तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
5: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
3: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
5: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
3: दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
4: सच्चाई ये है आरजी खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
3: तीसरी गलतफहमी है, माँ का दूध कम होता है तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
5: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
3: चौथी गलतफहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
5: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
3: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
4: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
5: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
3: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
4: आज ही खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परी का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
5: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
4: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
5: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन की सुरक्षित शुरुआत होती है।
3: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
4: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
5: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
3: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
5: और छठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करें।
3: इसी संदेश साथ आज का सेहत सही लाभ कई यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
5: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
5: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
4: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
11: सेहत सही तो लाभ गई।
5: पहला दूध, पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ, पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत, सेहत सही लाभ कई।
12: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
13: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
12: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। और आज का हमारा टॉपिक है विश्वास। दोस्तों, विश्वास सिर्फ किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करने का नाम नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी उतना ही जरूरी है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है ना, तो मुश्किल रास्ते भी थोड़े आसान लगने लगते हैं। तो आज हम पूरे शो में बात करेंगे विश्वास की, रिश्तों में विश्वास की, दोस्तों में विश्वास और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास, क्योंकि सोच बदलने की शुरुआत भी अक्सर यहीं से होती है। विश्वास बनता कैसे है? दोस्तों, विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक मुलाकात में बन जाए, इसे बनाने में टाइम लगता है। किसी की बातें सुनना, उसके साथ खड़े रहना, अपनी बात पर कायम रहना, यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे विश्वास बनाती हैं। इसीलिए अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो उसे सिर्फ एक भावना मत समझिए, उसे एक जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि विश्वास मिलना खूबसूरत है लेकिन उस विश्वास को निभाना उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है। और मेरे साथ यहाँ पर रीना भी हैं, जो बस बैठी बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, कुछ ख्यालों में खोई हुई हैं। जरा इन्हें जगा लेते हैं, ख्यालों से बाहर लेकर आते हैं। हाय रीना, कैसे हो आप?
14: हेलो, मैं बहुत बढ़िया हूँ।
3: भाई, कौन सी ख्यालों में खोई हुई है लड़की?
14: नींद के ख्यालों में।
3: ओहो, क्या बात है।
14: दोपहर होते मुझे नींद आ रही है, आज पता नहीं क्यों।
3: आज ही आ रही है या एवरीडे आ रही है?
14: नहीं नहीं, आज आ रही है क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी इसलिए।
3: हाँ, अक्सर ऐसा होता है जब हम जल्दी उठते हैं ना तो फिर हमें नींद आती है दोपहर में।
14: तो श्रोताओं, अब हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट और रिश्ते। किसी भी रिश्ते की असली स्ट्रेंथ सिर्फ प्यार नहीं होती, उसमें विश्वास भी होना चाहिए। अगर रिश्ते में हर बार हर बात पर शक हो, हर बात पर जवाब मांगना पड़े तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। वही जब सामने वाले पर भरोसा हो तो रिश्ते में एक अलग ही सुकून मिलता है। इसीलिए रिश्तों में हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय थोड़ा विश्वास भी रखिए। कभी कभी रिलेशनशिप को स्पेस और ट्रस्ट दोनों की जरूरत होती है। और खुद पर विश्वास, ये तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देती हूँ कि पहले खुद पर आप विश्वास करिए, तभी आप दूसरों पर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें खुद को देनी चाहिए। हम अक्सर दूसरों पर विश्वास करना सीख लेते हैं लेकिन खुद पर विश्वास करना भूल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर पाऊंगी या नहीं, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, ऐसे सवाल हमें रोकते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया तो आधी लड़ाई वही जीत ली। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन विश्वास बड़ा रखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका खुद पर भरोसा रखना होता है।
3: एग्जैक्टली, तुमने सही बोला है रीना, बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं, बिलीव इन माई सेल्फ, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन अब हम बात करने वाले हैं शक और विश्वास की। शक रिश्तों को ना अंदर से कमजोर कर सकता है। कई बार हमारे पास पूरी सच्चाई नहीं होती लेकिन हम अपनी सोच से कहानी बना लेते हैं और फिर वही कहानी हमारे रिश्तों को प्रभावित करने लगती है। इसलिए जब भी कोई डाउट हो, अंदाजा लगाने की बजाय बात कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत सी गलतफहमियों को दूर कर सकता है। याद रखिए, जहां सवाल जरूरी हो वहां शक नहीं, बातचीत जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या हर इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? शायद नहीं। विश्वास जरूर कीजिए लेकिन समझदारी के साथ। किसी को जानने में टाइम लीजिए, उसके रिएक्शन देखिए, सिर्फ उसकी बातों पर मत जाइए, क्योंकि विश्वास का मतलब अपनी समझ को बंद करना नहीं है। विश्वास के साथ थोड़ा परखिए और थोड़ी समझदारी भी जरूर बरतिए।
14: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परखे, क्योंकि आप अनजान इंसान से मिल रहे हो जिसके बारे में नहीं जानते हो। और आजकल तो भैया सोशल मीडिया जमाना है, ऑनलाइन बात करते हैं, एक सेकंड में हम बात करने लग जाते हैं, ट्रस्ट भी कर लेते हैं, और वही ट्रस्ट जब आपका टूटता है तो आप खुद परेशान हो जाते हो। इसीलिए इंसान रखना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीके से आप रख सकते हैं, मतलब जैसे भी आप हैंडल करना चाहे उस तरीके से आप हैंडल करिए, लेकिन इतने किसी पर ट्रस्ट करना, मतलब मेरे को लगता है कि गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। सो हम बात करेंगे विश्वास टूट जाए तो, बात वही आ गई ना दोस्तों, ट्रस्ट टूटना बहुत दर्द देता है, खासकर तब जब विश्वास किसी अपने ने तोड़ा हो। लेकिन किसी एक इंसान की गलती की वजह से हर इंसान को गलत मान लेना भी सही नहीं है। थोड़ा टाइम लीजिए, खुद को संभालिए और फिर धीरे धीरे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि टूटा हुआ विश्वास उसी इंसान के साथ वापस बने, लेकिन इतना जरूर है कि आपका खुद पर विश्वास दोबारा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि एक बार मेरी ट्रस्ट है वो टूट गई है, तो अगर आप दूसरी बार भी वो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बेवकूफी वाली काम हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है कि आपको लग रहा है कि एक बार धोखा मिल चुका है तो उस रिश्ते में थोड़ा सा आपको संभालना बहुत जरूरी है, वरना फिर तो आप चक्की की तरह पिसते ही चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब विश्वास और दोस्ती। दोस्ती में ना हम बहुत सी बातें भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, घूमते भी हैं,
5: हर बातें शेयर भी करते हैं। और मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसा दोस्त है जिसके पास आपको बोलने के लिए सोचना ना पड़े, और आपको लग रहा है कि ये मेरे पीठ पीछे भी किसी के आगे बुराई नहीं करेगा और मेरा ही फेवर लेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऐसा दोस्त है तो आप बहुत लकी हैं, और ऐसे दोस्तों को ना अपने पास से जाना नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं रहूं ना रहूं मेरी ना मौजूदगी में भी ये मेरे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, और बल्कि बोलेगा क्या, दूसरों के से सुन भी नहीं सकता है। तो आप बहुत लकी हैं, और आप भी अगर आपके पास ऐसा दोस्त है तो मैं तो कहती हूँ भगवान का गॉड गिफ्टेड है आपके पास, संजो कर रखिए। और छोटा मोटा नोकझोंक तो होता ही रहता है, तो उस चीज में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हमें खुद देखना होता है। और दोस्ती में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दोनों की दोस्ती है और कोई तीसरा इंटरफेयर करता है आप दोनों के बीच में, मतलब होती है ना कि कोई कोई देख के बहुत जेलस फील करता है, वो सोचता है कि इसकी दोस्ती इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, मतलब वही है ना कंकड़ फेंकने वाली काम करता है वो। तो हमारी नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चाहे कितने भी कंकड़ तूफान क्यों ना जाए, नींव कच्ची नहीं पड़नी चाहिए, पक्की नींव होनी चाहिए। तो दोस्ती देखिए क्या से क्या कर देती है।
15: दोस्तों, विश्वास मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आप किसी से कह सकते हैं कि मुझ पर भरोसा कर लो, लेकिन असल भरोसा आपकी बातों से नहीं, आपके व्यवहार से बनता है। आप जो कहते हैं क्या वही करते भी हैं? मुश्किल समय में क्या आप साथ खड़े रहते हैं? यही चीजें तय करती हैं कि आप सामने वाला आप पर कितना भरोसा करेगा। इसीलिए विश्वास की बात हो तो शब्दों से ज्यादा एक्शन मायने रखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि विश्वास सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों से टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी की पर्सनल बातें शेयर कर देना, किसी की बात को मजाक में उड़ा देना, बार बार अपनी बात से पलट जाना, ये छोटी छोटी चीजें भी विश्वास को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अगर कोई आपको अपनी पर्सनल बातें बता रहा है तो उसे संभाल कर रखिए। किसी का भरोसा आपकी जिम्मेदारी है। तो एवरीवन, अगर कोई दोस्त या फिर कोई आपका लाइफ पार्टनर, आपका फैमिली मेंबर्स, कोई भी एवरीवन आप पर अगर भरोसा करते हैं ना, तो आप भी उस भरोसे को बनाए रखिए। क्योंकि दुनिया में ना बहुत लोग होते हैं जो हमसे बात करते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात हम उसी इंसान से कह पाते हैं जिन पर हमें ट्रस्ट होता है। और अगर आप पर कोई ट्रस्ट करता है तो उसके ट्रस्ट को ऑलवेज बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप किसी के भरोसे को बनाए रखेंगे ना, तो कल के दिन को आप भी किसी पर ट्रस्ट करते हैं, वो भी आपके भरोसे को बनाए रखेगा।
5: बहुत अच्छी बात कही तुमने कि ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट दूसरों पर करते हैं तभी वो इंसान भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं परिवार में विश्वास की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, अगर घर में बच्चों को अपनी बात कहने की आजादी मिली तो वो बाहर गलत लोगों के सामने अपनी बातें शेयर करने से बच सकते हैं। इसी तरह बड़ों को भी बच्चों पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए। हर चीज पर रोक लगाने की बजाय उसे समझिए, उन्हें समझाइए, गाइड कीजिए और धीरे धीरे जिम्मेदारी देना सिखाइए। विश्वास परिवार को और मजबूत बनाता है, और मुझे लगता है कि बच्चों की बातें सुनना आज के टाइम में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि आजकल हर कोई फोन में बिजी रहता है और बच्चों की बातें इतनी नहीं सुन पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी एक टाइम के लिए ऐसा हो जाते हैं कि वो किसी से बात ही नहीं करते हैं। उनसे बात करने जाओ तो चिड़चिड़ापन फील करते हैं, बोलते कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। फिर वो दूसरों से अपनी बातें शेयर करने लग जाते हैं, बोलते कि हमारे घर में ये है वो है, तो वो लगता है कि हम मतलब पेरेंट्स की ही गलती है। मतलब बच्चों के साथ मुझे लगता है कि एक प्यारी दोस्त की तरह रखनी चाहिए।
15: एग्जैक्टली, जैसे आपने अभी बोल रहे हो कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए फ्रेंडली, उनको ना ऐसे स्ट्रिक्ट होना ठीक है पेरेंट्स के लिए जहाँ पर आपको गलत लगता है,
5: लेकिन उनकी बातें सुनना बहुत,
15: लेकिन उनकी बातें भी आप सुनिए। जब आप फ्रेंडली माहौल रखेंगे ना अपने बच्चों के साथ, एक दोस्त वाला रिश्ता रखोगे, तो फिर बच्चे भी इजिली आपको अपने हर एक बात शेयर करेंगे जो वो किसी अनजान व्यक्ति से कहने से बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता ना दीना कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे ना अपनी बातें कहते हुए कतराते हैं, वो डरते हैं कि अगर हमने मम्मी को ये बोला है, पापा जी को ये बात बताई, तो वो मुझे कहीं डांटेंगे तो नहीं। इसी कारण वो इसी डर के कारण बच्चा अपनी बात कई बारी नहीं कह पाता है, तो वो बाहर सहारा ढूंढने लगता है कि कोई तो ऐसा इंसान हो जो मुझे समझे,
5: मेरी बात सुने। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मुझे लगता है कि हम आपकी बात भी सुनेंगे और बात भी सुनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं ना तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता, वो तो टाइम देखने के बाद पता चलता है, अच्छा इनमें इतने मिनट हमने बोल लिया तो अब हम चुप हो जाते हैं, अपने बातों को विराम देते हैं और एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं आप सभी के लिए बात करने के लिए। तो अभी लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, बने रहिए आरजे अरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी और मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी हैं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ना हम दूसरों का विश्वास जीतने के चक्कर में ना खुद को ही भूल जाते हैं। हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे काम में भी कमी निकालेंगे, इसलिए लोगों की राय सुनिए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उनके ओपिनियन के हिसाब से मत चलाइए। खुद पर विश्वास रखिए और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन गलती के बाद उसे स्वीकार करना और सुधारना विश्वास को बचा सकता है। अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो आप उसे छिपाने के बजाय ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए। एक सच्ची माफी और अपने व्यवहार में बदलाव करिए। कई बार टूटे रिश्ते को संभाल सकता है, क्योंकि सिर्फ सॉरी बोलना काफी नहीं, बदलाव दिखाना भी जरूरी है।
1: और इसी के साथ साथ जरूरी है विश्वास में ईमानदारी। विश्वास की सबसे बड़ी मजबूत बेस है ईमानदारी। अगर सच बोलना मुश्किल लग रहा है, तब भी झूठ बोलकर चीजों को और कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। सच कभी कभी कड़वा हो सकता है, लेकिन झूठ लंबे टाइम तक रिश्ता नहीं संभाल सकता। इसीलिए अपनी बात क्लियर रखिए। सामने वालों को खुश करने के लिए झूठा भरोसा देना बेहतर है। सच्चाई के साथ बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप 2 मिनट 2 सेकंड के लिए आप खुश करने के लिए बोल तो देंगे, लेकिन जब उसको आखिरी में सच्चाई पता चलेगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुरा लगे, ठीक लगे, लेकिन सच बोलिए। सच बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठ काफी टाइम तक चलता नहीं है।
0: और रीना, कई बार ना ऐसा होता है कि झूठ छिपाने के लिए ना हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं।
1: वो देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम बोल भी देते हैं, लेकिन हर बार झूठ बोलना गलत बात है।
0: राइट, एब्सोल्युटली।
1: और किसी इंसान को समझने के लिए टाइम दीजिए। पहली मुलाकात, पहली बातचीत या कुछ अच्छे शब्द किसी इंसान का पूरा कैरेक्टर तय नहीं करता है। टाइम के साथ इंसान के नेचर, प्रायोरिटी और बिहेवियर सामने आता है। इसीलिए रिश्तों में जल्दी मत रखिए। विश्वास धीरे धीरे बनाइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आप पर पूरा विश्वास करता है, तो उसकी कद्र कीजिए। हो सकता है उसने बहुत सोचकर आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया हो। उसके भरोसे को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि किसी का कहना है मुझे तुम पर भरोसा है, बहुत बड़ी बात होती है। इस एक लाइन के पीछे बहुत सारी उम्मीदें छुपी होती है, क्योंकि हर किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। दुनिया में लाखों करोड़ों की आबादी है, और उस आबादी में से आपको ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि जब मैं अपनी बातें इसके साथ शेयर करूंगी तो ये कहीं रिवील नहीं करेगी। तो आप उसके विश्वास को हमेशा बनाए रखिए।
0: और अब बात करते हैं हम विश्वास और कंट्रोल में। बहुत फर्क होता है रीना। किसी की केयर करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी हर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना सही नहीं है। कहाँ हो, किससे बात कर रही हो, इतनी देर क्यों हो गई? अगर ये सवाल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो रिश्ता भारी लगने लगता है। भरोसा रखिए, अपनी चिंता शेयर कीजिए और सामने वाले की पर्सनल स्पेस की भी रिस्पेक्ट कीजिए, वो बहुत जरूरी है। एवरीवन कहते हैं ना, अगर आप किसी भी रिश्ते को ना बांध कर रखोगे ना, तो वो रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उस रिश्ते को आपको बांध कर नहीं रखना है, उस रिश्ते को आपको आजाद रखना है। जो आपका है ना, वो कहीं भी जाए आपके पास ही आएगा। और जो आपका अगर नहीं होना चाहता ना, उसे आप कितना भी कैद करके रख लो, कितना भी आप उसको कहते हैं ना कि कंट्रोल में रख लो, लेकिन जो आपका नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। और जो आपका होगा ना, यकीन मानिए एवरीवन, वो रिश्ते को जब आप आजाद रखते हैं ना, और आपको उस पर भरोसा होता है, तो वो इंसान कहीं भी जाए वो आप ही का रहेगा। क्योंकि बिलीव इन योर सेल्फ, विश्वास रखिए खुद पर। एंड जब आप किसी भी रिश्ते पे भरोसा रखते हैं तो वो रिश्ता बहुत खूबसूरती से चलता है।
1: पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम के बीच में खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब रास्ता मुश्किल में हो, तब खुद से कहिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। यही सोच धीरे धीरे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बनाती है। इसीलिए सोच बदलो की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चैलेंज है। आज किसी एक ऐसे इंसान को थैंक यू बोल दीजिए जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं उन्हें बताइए कि मौजूदगी आपके लिए मायने रख, और साथ ही खुद को भी एक बेहतर कहिए, मुझे खुद पर विश्वास है। शायद ये छोटी सी लाइन आपके लाइफ में पूरे दिन का मूड बदल सकती है, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करने से पहले खुद पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बदलाव दूसरों में देखने के बजाय पहले खुद में बदलाव कीजिए, तभी आप दूसरों के अंदर बदलाव देखेंगे, झांकेंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब आप खुद को ही नहीं बदलेंगे और सोचेंगे कि सामने वाला बदल जाए, तो ये तो जरा सर गलत बात।
0: अब वक्त है आपके जवाबों का, तो बताइए एवरीवन, आपके लिए विश्वास का क्या मतलब है? क्या एक बार टूटने के बाद विश्वास दोबारा बनाया जा सकता है? क्या आप किसी को दूसरा चांस देंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप खुद पर भी उतना ही विश्वास करते हैं जितना दूसरों पर करते हैं? अपने जवाब हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरे श्रोताओं की सोच भी बदल दे, तो उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है 1-9837896896। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। और अभी हमारे जाने का भी वक्त हो गया है। इस ब्यूटीफुल शो में हमने बात की विश्वास की। दूसरों पर विश्वास कीजिए, लेकिन अपनी समझ के साथ रिश्तों में विश्वास रखिए, लेकिन कम्युनिकेशन को कभी मत छोड़िए, और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करना मत छोड़िए। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है ना, तो मुश्किल रास्ते भी मंजिल की तरफ ले जाने लगते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपसे अब लेती हूँ जाने की अनुमति। याद रखिए, विश्वास रिश्तों को जोड़ता है और आत्मविश्वास जिंदगी को आगे बढ़ाता है। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ, नई बातों के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। टेक केयर एवरीवन।
2: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और एक्चुअली में कभी ऐसा होता है कि हम घबराने लग जाते हैं, गलत भ्रांतियां है जो हम उनको सुन लेते हैं और उसको ही अपने लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचे और तभी आप फॉलो कर पाएंगे। सो इसी से रिलेटेड हम बात करने के लिए आज मैं आई हूँ विमेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर सोना मैम कनेक्ट है। तो मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी पहले तो आपके बारे में।
1: नमस्कार रीना जी, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला जिला अस्पताल मुरादाबाद में।
0: मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था आखिरकार होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती
1: है? देखिए, किशोर अवस्था एक बहुत ही उम्र का ऐसा पड़ाव है जब एक बच्चा अपने उसका बचपन खत्म हो रहा है और वो वयस्क होने के रास्ते पर है। तो अभी उसका बचपन पूरा खत्म नहीं हुआ है, शरीर में और मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत से बदलाव आते हैं। शारीरिक तौर में बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं जिससे वो एडल्टहुड में प्रवेश करता है, और मानसिक बदलाव भी इसलिए आते हैं कि बच्चा खुद नहीं समझ पाता है, उसके अंदर बहुत नए तरीके के विचार आते हैं, बहुत नए तरीके से वो दुनिया को देखता है, दोस्तों से उसकी बातचीत होती है। तो वो ना बचपन में है, उससे बच्चों से उसको ज्यादा पता है, और ना वो भी वयस्क हुआ है
0: जी।
1: उसको लगता ये है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ये ट्रांजिशन फेज है, बदलाव वाला है, बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हार्मोन्स क्योंकि बदल रहे हैं तो इसलिए जो भी विचार उसके मन में आते हैं वो ये जज नहीं कर पाता है कि ये चीजें जो मुझे नई बातें पता चल रही हैं ये सही है या नहीं। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 12 वर्ष 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ये किशोरावस्था रहती है, टीनेज, जिसमें बच्चे एक बीच वाली एज की स्टेज में है, अपने बचपन उनका खत्म हो रहा है और वयस्क होने के, जवान होने के उसमें आ रहे हैं,
0: मतलब 12 के प्लस होने के बाद।
1: हाँ,
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चे के शरीर के साथ साथ उनके व्यवहार में, सोच में अचानक बदलाव क्यों आने लग जाते हैं और इससे वो कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि अचानक मेरे अंदर ऐसे चेंज क्यों आने लग गए हैं?
1: बिल्कुल घबरा जाते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो उनके हॉर्मोन्स का है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों अपने एडल्ट फेज में जाते हैं तो शरीर में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। वो बदलाव का जो टाइम है वो यही किशोरावस्था के दौरान ही शरीर में सारे बदलाव होते हैं, उनसे दिमाग पे, हॉर्मोन्स के लेवल पे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, और मानसिक तौर पे इसलिए वो घबरा जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बचपन से ज्यादा उनको चीजें पता है, आजकल इंटरनेट का भी जमाना है, बच्चे आपस में बात करते हैं, बहुत सी नई नई चीजें उनको पता चलती है, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता है कि ये ज्ञान जो है वो उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, अभी अधूरा ज्ञान है। और नई चीजों के बारे में पता चलता है तो बच्चों के मन में क्रेज बहुत होता है, बच्चों के मन में क्रेज बहुत ज्यादा रहता है, और उनको ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम वो थोड़ा माँ बाप से भी अपनी चीजें शेयर करने में हिचकिचाते हैं कि माँ बाप कहीं ऐसा ना हो, समझे ना, उनको गलत ना समझ लें
0: जी,
1: ये चीजें रहती हैं।
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा अपने शरीर में बदलाव को लेकर डर रहा हो, शर्म महसूस कर रहा हो, अपने माता पिता से, उनके जो माता पिता है उनकी हेल्प कैसे करे?
1: माता पिता सबसे पहले तो ये पहले से समझ लें कि बच्चा जिस बदलाव से गुजर रहा है वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है, बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, तो बच्चे का व्यवहार थोड़ा शुरू से बदला हुआ हो सकता है। उसमें माँ बाप जो है वो जजमेंटल ना हो जाए एकदम से, अपने बच्चे को पहले से ही कोई विचार ना बना ले, पहले से ही कोई बायस ना बना ले कि ये इसके दोस्तों का ग्रुप हो गया है इस वजह से बच्चों में चेंज आ रहा है, या इसने कोई गलत चीजें कर ली होंगी इसलिए चेंज आ रहा है, या ये बड़ा हो गया है हमारी बात नहीं मान रहा है, उनको ये समझना होगा
0: जी।
1: तो अपना दौर भी ये याद करना होगा कि कुछ सालों पहले हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हमारे मन में भी क्या चीजें आई थी वही सब चीजें अब इन बच्चों के मन में भी आ रही होंगी। तो अगर हम इनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो ये दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेंगे जानकारी के लिए
0: जी,
1: जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो बच्चे के लिए सबसे बड़े जो शुभचिंतक है वो उसका परिवार ही होता है, तो माँ बाप को थोड़ा फ्रेंड्स की तरह बच्चों से ट्रीट करना चाहिए उनको, एकदम उनकी किसी बात को सिरे से नहीं नकारें, उसको समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें। बच्चे अगर डरेंगे नहीं कि ये बात करने से हमारे अपने माता पिता से डांट, पर समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें। बच्चे अगर डरेंगे नहीं कि ये बात करने से हमारे अपने माता पिता से डांट पड़ सकती है, अगर उनको लगेगा कि माता पिता डांटेंगे नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं, तो बच्चे अपनी बातें माँ बाप से शेयर करेंगे। और हमारा मेन पर्पस ये है कि बच्चे किसी गलत चीज में ना पड़ जाए, तो हमसे वो बात करेंगे तो हम उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं।
2: लेकिन मैम अभी भी कई घरों में ऐसा होता है कि मम्मी पापा बच्चे के साथ मतलब बातें शेयर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये बातें अभी तक बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
1: यही बातें तो उनको समझनी है, और आपका रेडियो तो इस माध्यम से एक बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा ये चीज टॉपिक देखा है कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया है। इससे माँ बाप होता क्या है, माँ बाप अपने काम में लगे हुए हैं, वो बच्चे के बारे में बहुत मन से सब अच्छा चाहते हैं, लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा एक सोशल फैक्टर होता है कि माँ बाप के जो साथी लोग हैं, कई बार वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, अरे उसको छोड़ो, वो इस तरीके से कर रहा है। तो बहुत चीजों से माँ बाप के विचार गवर्न होते हैं कि आसपास की सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे जरूरी है। बच्चे एंग्जाइटी टेंशन से भी डील कर रहे हैं आजकल माँ बाप, फोन और इंटरनेट के आने के बाद से बच्चे माँ बाप से थोड़ा कम बात करते हैं, माँ बाप भी कम बात करते हैं क्योंकि वो भी फोन पे सब लोग होते ही हैं, और रील्स फोन ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके हाथ में फोन आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ निकल गया।
2: ये करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी मैम अब तो वैसे बता दे कि रील्स पर हर कोई बिजी रहता है, वहीं से गलत धारणाएं मिल जाती है उनको, तो उसी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर माँ बाप से बच्चा देखे, ये क्यूरियोसिटी वाली एज है, उसके शरीर में भी चेंजेस हो रहा है, उसके सोच में भी चेंज हो रहा है, उसकी भावनाओं में भी बदलाव हो रहा है, वो ये कैसे जानेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और वो बस सब तरफ से जानना चाह रहा है। अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन माँ बाप से नहीं मिलेगी तो वो दूसरे सोर्सेज ढूंढेगा, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा, वो दोस्तों से मिलेगा। सब जगह से सब चीज सही नहीं पता चल सकती, क्योंकि उसके पीयर ग्रुप में जो दोस्त हैं वो भी उसी उम्र के हैं,
2: जी जी,
1: उनको भी तो नहीं पता सही क्या है।
2: इसलिए ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे जरूरी हो कि बच्चे पूछे मम्मी पापा से,
1: माँ बाप को इनिशिएशन लेना चाहिए। माँ बाप भी इनिशिएशन ले सकते हैं, जब उनको पता है कि बच्चा उस दौर में प्रवेश कर रहा है, तो माँ बाप को भी धीरे से खुल के बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अब तुम जिस उम्र में हो तुम्हारे शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कहाँ जाना है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर माँ बाप उनसे उनके हालचाल भी जाने कि तुमको स्कूल में कैसा लग रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग कैसे हैं, आप बच्चों की चीज में इंटरेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका काम सिर्फ घर का काम करना या अपना प्रोफेशन का काम करना है, घर में भी आप उतनी ही आपको जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि बच्चे को जीवन तो माँ बाप ने दिया है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है।
2: या राइट,
1: उन्हें
2: एग्री विद यू,
1: उन्हें उस चीज पे देखना पड़ेगा कि बच्चे के जीवन में जो कुछ हो रहा है, उनसे जो बन पड़ रहा है, वो बच्चों से बात करें। बात करना बहुत जरूरी है।
2: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि फोन हर किसी के पास है, हर कोई फोन में लगा हुआ। तो फिलहाल मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन से बदलाव सामान्य होते हैं और कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें बच्चों को पता होना चाहिए, या तो वो अपने पेरेंट्स से पूछे या डॉक्टर से पूछे।
1: देखिए, बदलाव शारीरिक और मानसिक इमोशनल सब तरीके के बदलाव है। शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो जेन्युइन बदलाव है, वो सबके अंदर आते हैं। हालांकि हाँ, अगर वजन बहुत बढ़ रहा है तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वजन अगर चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर वजन बढ़ता है उससे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल बहुत गड़बड़ हो जाता है, उनसे आगे चल के उनमें बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे महिलाओं में या चेहरे पे बाल आ जाते हैं।
2: जी जी जी,
1: महावारी अभी शुरू होती है लड़कियों की, तो शुरू में महावारी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 6-7 महीने रेगुलर नहीं होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है

0: डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। और उसका भी एक फिक्स एज नहीं है कि महावारी किसी एज में आनी चाहिए। पहले महावारी 12-13 साल में आती थी, आजकल महावारी 9 साल में भी शुरू हो रही है, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, जो चीजें उनको पता है इंटरनेट से बहुत चीजें बदलाव आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है और 2-2, 3-3 महीने का डिफरेंस आ रहा है, वजन बहुत ज्यादा है, या लग रहा है कि लड़कियों की आवाज भारी हो रही है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये कंडीशंस हैं, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और संकेत क्या है जिसमें घबराने की जरूरत है, या जिसमें आपने पूछा कि ध्यान रखने की जरूरत है? थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा अकेले ज्यादा रहना चाह रहा है।
1: बहुत से बच्चे होते हैं जो खुद अकेले महसूस करते हैं।
0: हाँ, लेकिन एक चीज आजकल देखिए, डिप्रेशन बहुत आ रही है। पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, तो सारे बच्चे आपस में ही खेलते कूदते रहते थे। आपने देखा होगा कि पहले डिप्रेशन इतना नहीं होता था,
1: कहानी सुनते रहते थे
0: नानी दादी से, आपस में लड़ भी रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये सब तो चलता रहता है दुनिया में। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है ज्यादातर, माँ बाप के पास अपना टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, अपना पढ़ाई में प्रेशर है, कई तरीके की परेशानियां हैं, तो कन्वर्सेशंस खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों में प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये फर्स्ट आ रहा है तो मुझे भी फर्स्ट आ रहा है, या मेरे 99 ना होके मेरे 97 ना हो गए, इस नंबर हो गए, इसमें भी बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें ये लक्षण देखने की, ऐसा तो नहीं कि पहले बच्चा ठीक था, अब अचानक से वो अकेले कमरे में रहना पसंद कर रहा है, या इतना हमें ऊपर से ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो दोस्त हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छी कंपनी में रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। और बच्चा कोई बहुत एडवेंचरस चीज तो नहीं हो गया है, एडवेंचरस काम तो नहीं करना चाह रहा है कि आज मुझे कोई रिस्की काम ना करना चाह रहा हूँ, ये कुछ चीजें हैं जो, या नॉर्मल बात में बच्चा सामान फेंक रहा है, कान बंद कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो चीजें हैं जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि, अच्छा, मानसिक, आपने जैसे पूछा, मानसिक स्वास्थ्य पहले एक स्टिग्मा हुआ करता था, लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो, उसको बस एक बिहेवियर करार दे दिया जाता था कि ये थोड़ा गुस्सेल है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य पे सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, एनजीओस भी ध्यान दे रहे हैं। आप लोग के माध्यम से भी मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर किसी की परेशानी हो रही है तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है, आपको इसे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, और ये कोई शर्म की बात भी नहीं है। जैसे शरीर में बाकी ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही शरीर में दिमाग भी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जैसे इंसान डायबिटीज है, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो गया, इनकी दवाइयां खाता है, तो वो दिमाग की परेशानी की भी दवाई खा सकता है। ये कोई स्टिग्मा नहीं है कि इसकी दिमाग की दवाई चल रही है। तो पहले जैसे लोग डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड कर, और जरूरी नहीं है कि आप दिमाग के ही डॉक्टर के पास जाएं, आपके पास जो डॉक्टर अवेलेबल है, आप जिनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से बात कर रहे हैं, समझ रहे, आप उनके पास जाइए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। और हर चीज में दवाई की जरूरत नहीं होती है, कई चीजों में काउंसलिंग से भी काम हो जाता है। कई बार माँ बाप को यही नहीं पता होता है कि बच्चे की स्थिति से हमें डील कैसे करना है।
1: जी,
0: तो अपने जो भी नजदीकी डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें, अपने परिवार में बात करें, दोस्तों से बात करें, सब तरफ से हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है।
1: और मैम, एक कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, पूछिए।
1: जैसे कि आपने बोला भी था कि डिप्रेशन, और फिर बच्चे अकेले रहते हैं, और आज के टाइम में तो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, वो बाहर रहते हैं, रूम में भी अकेले रहते हैं, जबकि वो घर पर सभी फैमिली वालों के साथ है, और इस वजह से वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, और खासकर लड़कियों में यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। उनका यही कहना होता है कि 15 दिन डिले हो जाते हैं, 20 दिन डिले हो जाते हैं, तो क्या ये अकेलेपन का भी है कुछ?
0: हाँ, अकेलेपन से आपका दिमाग परेशान है, आप स्ट्रेस्ड है, आपका हार्मोन लेवल चेंज होगा, हार्मोन लेवल चेंज होगा तो आपकी महावारी भी चेंज होगी, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो अपना वॉक पे जाइए, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग फैमिली से अलग रहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि उनको रेगुलरली, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, लेकिन डेली वॉक पे जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों से शारीरिक तो बहुत फायदा होता ही है, मानसिक तनाव में भी बहुत कमी आती है, मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। ये चीजें करें, गाने सुने और लोगों से बात करें। लोग कुछ भी हो, बात करना नहीं बंद करना चाहिए। बातें करनी बहुत जरूरी है, बातें सुननी बहुत जरूरी है।
1: लेकिन मैम आज के पास, आज के टाइम में इतना टाइम कहाँ किसी के पास होता है।
0: देखिए आप जिस चीज को प्रेफरेंस देंगे उस चीज के लिए आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल लेंगे।
1: ये तो है।
0: अगर आपको कहीं घूमने जाना है या आपको कोई काम करना है, जैसे अब देखिए हम लोग सीरीज देखते हैं तो इतने बिजी शेड्यूल में भी सब लोग सीरीज तो देख ही रहे ना। या कहीं घूमने जाना है, कोई आपको किसी मंदिर धाम कहीं भी जाना है, आप कैसे ना कैसे टाइम निकालते
1: चले जाते।
0: बस अपने हेल्थ को फोकस देना है। हम ठीक है तो बाकी सब चीजें ठीक है, अगर हम ही ठीक नहीं है, तबीयत ही नहीं ठीक है तो हमको सोने की चीज भी दे दी जाए हमको क्या खुशी मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक छोटा सा लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें
0: किशोरों के लिए, मैसेज ये है कि आपके शरीर में और मानसिक चीजों में जो बदलाव आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से एबनॉर्मल नहीं है। वो शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है और जिस दौर से आप लोग गुजरे हैं उसी दौर से आपके बड़े दीदी, बड़े भैया, माता पिता, दादा दादी सब लोग गुजरे हैं। तो कुछ भी विचार आ रहे हैं तो एकदम से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, अपने लिए जजमेंटल भी नहीं होना है कि ये क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। और जो भी विचार है वो आप घर में किसी से भी क्लोज है, स्पेशली माँ से, माता पिता से और माँ से, बड़ी दीदी है, मौसी है, आप लोग सबसे बात करिए। अपने जो डाउट्स हैं आप लोग ये विश्वास रखिए कि ये लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो लोग आपको समझेंगे क्योंकि सब आपके शुभचिंतक हैं। हाँ ये हो सकता है कि वो अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, आप अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, उन लोगों के समय चीजें दूसरी थी, आप लोगों के समय में चीजें दूसरी हैं। तो आप लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए जब आप बोल भी नहीं पाते थे तब भी वो आपको दूध पिलाते थे, तब भी खाना देते थे, तब भी आपको क्लीन करते थे, तो वो आपको समझेंगे। आप लोग थोड़ा भरोसा करके उनसे अपनी चीजें शेयर करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माता पिता आपको समझ के आपको सही राय देंगे, क्योंकि कोई सोच गलत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही मिलनी चाहिए।
1: तो मैम जाते जाते आप एक कुछ आपके पसंद का कोई गाना हो जो हम रेडियो पे श्रोताओं को आप डेडिकेट करना चाहें।
0: हाँ बिल्कुल, एक गाना है नारायण मिल जाएगा, जुबिन नौटियाल जो सिंगर है उनके द्वारा गाया गया है और इसको प्ले कीजिएगा। और ये मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हैं तो नारायण को मान रहे हैं, दूसरे धर्म के हैं तो अपने गुरु को या अल्लाह को मान रहे हैं, सब अल्टीमेटली एक हैं। और इसका बेसिक एक जो जिस्ट मुझे इस सॉन्ग का मिला वो ये है कि आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करिए, भगवान जो है या जो गुरु है वो सब देख रहे हैं, जैसे आप करेंगे आपको उन चीजों का अच्छा फल जरूर मिलेगा।
1: वही बात आ गई ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा।
0: बिल्कुल, और अपने पे भरोसा रखें सब।
1: करेक्ट है। थैंक यू सो मच मैम,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आई होप कि हमारे श्रोता है उनको भी बातें समझ में आ गई होंगी।
0: रेडियो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है
1: जी,
0: क्योंकि सब लोग सुनते हैं, सुनी हुई चीजें याद रह जाती हैं और इसके माध्यम से आप शहर में, गांव में, हर जगह तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी तरफ से बहुत गुड विशेज हैं आप लोगों के।
1: थैंक यू सो मच।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट छाया। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज के खास बातचीत में डॉक्टर गौरिका सिंघल। तो आइए मैम से मिलवाते हैं आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू छाया जी।
1: वैसे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
2: मैं डॉक्टर गौरिका सिंघल, मैं नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना क्लिनिक रीजन क्लिनिक्स में हूँ और साथ ही मैं एपिक्स अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले 10-12 साल मैं GTB अस्पताल दिल्ली में थी और साथ ही मैं शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद में भी मैंने काम।
1: वैसे मैम अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसको हम मनाते हैं स्तनपान दिवस के रूप में। तो ये पूरा हफ्ता जो है स्तनपान दिवस पे लोग बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप हमारे श्रोताओं को ये पहले समझा दीजिए स्तनपान सप्ताह है क्या।
2: बेसिकली इस सप्ताह का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें कि बच्चे के लिए माँ का दूध व माँ को बच्चे को दूध पिलाना कितना फायदेमंद है और इसका क्या क्या फायदा बच्चे व माँ को मिलता है।
1: जी, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो स्तनपान के फायदे क्या होते हैं शिशु के लिए?
2: माँ का दूध शुरू के 6 माह में शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होता है। शिशु के आंते जो है वो माँ के दूध के लिए ही अनुकूल है, इसीलिए इसे बच्चे को पचाने में बहुत आसानी होती है। साथ ही में जब माँ बच्चे को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे में भावनात्मक बंधन जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो शिशु को सर्दी खांसी जुकाम पेट कान के इन्फेक्शन इन सबसे रक्षा करती है। साथ में माँ के दूध पे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। 6 माह तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जब हम 6 माह के बाद ठोस आहार शुरू करते हैं तो आहार से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी बच्चे को मिल जाती है। जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन शिशुओं में सामान्य से अधिक मोटा होने का कारण वह मधुमेह की संभावना भी कम हो जाती
1: है। ये तो रही शिशु के फायदे की बात, अब जरा हम आपसे जान लेते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं।
2: स्तनपान से जितने फायदे शिशु को होते हैं उतने ही फायदे स्तनपान कराने से माँ को भी मिलते हैं। माँ का जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़ कर वापस अपनी गर्भावस्था की पहली स्थिति जाने में भी इस स्तनपान से मदद मिलती है।
1: जी,
2: साथ ही माँ को अपना जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम करने में भी मदद मिलती है। एक दिन में स्तनपान कराने से लगभग 500 कैलोरी तक माँ बर्न कर सकती है। साथ में इसमें जिंदगी में आगे चलकर माँ को होने वाले टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इन सबसे भी माँ को खतरा कम होता है। माँ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी जो खतरा होता है वह सब भी कम हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह और हर अवधि पे हर सही तापमान में उपलब्ध रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में मुकाबले में जो माँ स्तनपान करवाती है उसमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही है। आई होप एकदम मतलब मस्त वाला दिमाग में घुसेगा। वैसे मैम बच्चे कई बार दूध पीने के बाद भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
2: बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। बच्चे का अगर डायपर गीला हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे गोद में आकर घूमना हो तो वह बच्चा रोकर ही बता पाता है। बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि माँ का दूध पूर्ण नहीं है। माँ का दूध पूर्ण हो सकता है, उसके बाद भी बच्चे का रोने का मतलब ये है कि वह दूध के सिवा और किसी चाहत की इच्छा रखता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमारी भी आदत होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई उसको भूख लगी है, पर हम अदर चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट थी। कैसे जाना जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं?
2: अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 1-1.5 घंटा सूखता है, दिन में 6-8 बार यानी कि 24 घंटे में 6-8 बार सूसू जाता है और उसका वजन अगर सही तरीके से बढ़ रहा है यानी कि 1 महीने में कम से कम 500 ग्राम के करीब उसका वजन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है।
1: जी अगर माँ को खांसी जुकाम हो रहा है उस टाइम में बच्चे को दूध पिलाना सही होगा?
2: बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर माँ को वायरल इन्फेक्शन है तो बस वो सावधानी के तौर पे अच्छे से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोकर और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो मुंह पर मास्क लगाकर बच्चे को दूध पिला सकती है। बल्कि ऐसा करने से माँ के दूध से जो माँ ने एंटीबॉडीज बनाई है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो बच्चे को मिल जाएंगी। इससे बच्चे में वो बीमारी होने का खतरा और कम हो जाएगा।
1: अगस्त का महीना है और गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैम अगर बच्चे को प्यास लग रही है उस वक्त में हम क्या बच्चे को पानी भी थोड़ा बहुत पिला सकते हैं?
2: बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 6 माह में हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के ना 2 हिस्से होते हैं। जो शुरू का दूध एक छाती से आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जो बाद का दूध होता है उसमें बच्चे का पेट भरने वाला तत्व फैट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो माँ का शरीर अपने आप उस चीज को पहचानता है और शुरू के दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो पानी है वो माँ के दूध का पानी वो बच्चे के लिए उसकी प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए माँ के दूध के सिवा बच्चे को ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि शुरू के 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। बच्चे को कोई घुट्टी 555 घुट्टी, 112 बाल जीवन घुट्टी, कोई भी घुट्टी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है।
1: जी ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई, हाईलाइट किया इसको, क्योंकि अक्सर लोग घुटियां पिलाते रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ दिन भर थक हार के काम करके और रात में सोने जाती है और उस वक्त आधी रात को बच्चा उठ जाता है, उसको भूख लगती है वो उठ जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि माँ की नींद भी खराब ना हो और बच्चे की भूख भी मिट जाए?
2: बिल्कुल, माँ का दूध ही तो एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह हर मात्रा में सही तापमान पर उपलब्ध है। कुछ समय बाद दूध पिलाने के बाद तो माँ को पता चल जाता है कि वो जिस तरह बच्चा माँ दोनों कंफर्टेबल है किस तरह से वो उस बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
1: जी
2: रात में बच्चे को गोद में लिया और उसे दूध पिला दिया और उसके बाद सुला दिया। बल्कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो पहले दूध को बनाएं, उसे गर्म ठंडा करें, उसको लेकर आए, फिर धीरे धीरे बच्चे को पिलाएं, उससे तो माँ की नींद और ज्यादा खराब होगी।
1: आई होप उन महिलाओं को जो माँ बनी है पहली बार बहुत ही ज्यादा आपसे जानकारी मिली होगी और बच्चे को स्तनपान कराने में सही एक गाइड मिल पाया आपकी बातों से। मैम जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, उन सभी महिलाओं को जो पहली बार माँ बनी है या स्तनपान की सही जानकारी नहीं है, तो एक छोटा सा मैसेज पहुँचाइए।
2: मेरा सबसे छोटा सा और सबसे सरल मैसेज एक ही है कि माँ का दूध शुरू के 6 महीने के लिए शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। इसके सारे फायदे बच्चे व माँ दोनों को ही मिलते हैं और शुरू के 6 महीने में ऊपर का दूध बच्चे को आगे के इन्फेक्शंस से नहीं बचा सकता और साथ में माँ का दूध जो बच्चे की मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हेल्प करता है वह ऊपर का दूध कभी नहीं कर सकता।
1: जी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके, इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Chile and won in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक, स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। SIT से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
4: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
5: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रहे हैं, दुनिया के तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह के कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष, यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं, तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
6: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिन्द्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
7: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवासेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंदाउते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
8: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है देश के सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
7: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
9: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
7: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
10: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय

0: व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
2: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
1: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान, एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है महिला मंच शो में और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो लगभग हर घर, हर उम्र और हर महिला की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं, लेकिन इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आज हम जानेंगे सोशल मीडिया महिलाओं की जिंदगी कैसे बदल रहा है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और सबसे जरूरी, इसे स्मार्ट वर्क में कैसे इस्तेमाल करें।
6: हाय दोस्तों, गुड वाली आफ्टरनून है और आपको भी पता है कि अकेले नहीं आते महिला मंच शो में, खुशी और आर्जेरीना जरूर आते हैं। जिस दिन आर्जेरीना आएंगे खुशी भी आएगी, खुशी आएगी उस दिन आर्जेरीना भी आएगी। तो हम दोनों आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और कहते हैं ना, तकनीकी तभी खूबसूरत बनती है जब वह हमारी जिंदगी को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन समझदारी के साथ करना होता है। श्रोताओं, कभी कभी हम आपके पास, जैसे हमारे पास फोन आ जाता है, हम क्या करते हैं, फोन में इतने लीन हो जाते हैं कि जो हम काम एक्चुअल में करने वाले थे उसको तो बीच में ही भूल जाते हैं। कम से कम 2 घंटे के बाद हमें याद आता है, अरे यार मतलब क्या काम करना था हमें। तो इसीलिए फोन हमारे लिए, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और नुकसान वाला है। नुकसान इसलिए है कि हम काम की चीजें ना देखकर रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। सोचिए जिस रील्स को आप देख रहे हैं, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा डालिए जहाँ से आपको अर्न भी होएगा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलती हैं। तो इसीलिए टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप कुछ अच्छा करिए।
5: बिल्कुल रीना, आपने सही कहा है कि सोशल मीडिया पर अपना हम टाइम को हमें खराब नहीं करना है, उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। और हमारे साथ देखिए, मैं खुशी तो हूँ लेकिन एक खुशी और हमारे साथ में है, तो वो भी कुछ कहना चाहती है इस ब्यूटीफुल सेशन में। तो खुशी, आप क्या कहना चाहेंगी आज सोशल मीडिया को लेकर, हमने ये कार्यक्रम जो किया है।
7: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ आपकी अपनी खुशी और आज मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया के फायदे। तो आजकल सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, होम वर्कर्स, मेकअप आर्टिस्ट, टीचर्स और आर्टिस्ट अपनी पहचान बना रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग के जरिए नई स्किल्स सीख रहे हैं, हेल्थ, फिटनेस और मेंटल वेलनेस की जानकारी ले रहे हैं, अपनी आवाज और टैलेंट दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यानी अब पहचान सिर्फ शहर तक नहीं, दुनिया तक बन सकती है।
5: अरे वाह, आपने तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है और बताया भी है। अच्छा ये बताइए खुशी, आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? ओके, तो सबसे ज्यादा कौन सी एप्लीकेशन आप चलाते हैं?
7: मैं सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज करती हूँ। एक्चुअली अभी मेरी पढ़ाई चल रही है तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ।
5: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा माध्यम है। देखिए दोस्तों, हमारी ये प्यारी सी सखी भी अभी यूट्यूब से स्टडी कर रही है, सीख रही है और आप भी फालतू का टाइम ना वेस्ट करके कोई ऐसी

0: आप देख सकते हैं, जिससे आप अपनी चीजों को और ज्यादा अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल करें सोशल मीडिया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की चुनौतियों के बारे में। और कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया की कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम, दूसरों से कंपेयर करना, फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड ऑनलाइन फ्रेंड, प्राइवेसी की समस्या। कई बार लोग सिर्फ दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। होता है ना ऐसा खुशी?
1: बिल्कुल ऐसा होता है।
0: रियल लाइफ हमेशा सोशल मीडिया से ज्यादा खूबसूरत होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लोग देखिए सोशल मीडिया पर देखते हैं जो कंटेंट बनाते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तो सब देखते हैं कि अरे ये फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी स्किल्स हैं, अपने टैलेंट हैं, तो आपकी कॉपी ना करके आप खुद का करें वो ज्यादा बेस्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
1: मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है, तो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से सब चीजें यूज कीजिए, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। जरूरी नहीं है कि कोई और बंदा अगर उसके अंदर टैलेंट है और वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है या कुछ भी ऑनलाइन कर रहा है तो आपके लिए भी वही ना हो। हो सकता है आप बेस्ट टीचर बन सकते हैं, बेस्ट लॉयर बन सकते हैं, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है। तो अपने अपने टैलेंट को पहचानिए, ना कि दूसरों की सरीकत कीजिए।
0: बहुत सुपर। अब रीना को भी बोलने का मौका दे देते हैं, वो भी मुस्कुरा रही है बैठी बैठी। तो रीना आप क्या कहना चाहेंगी, जरा बता दीजिएगा।
2: देखो मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे लिए सोशल मीडिया अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आज के समय में ना चैट जीपीटी भी आ गए हमारे बीच में,
0: एआई का जमाना है।
2: हाँ, और हम कभी कभी सोचने बैठते हैं तो सोच नहीं पाते, तो यही सोचते हैं यार क्या करें। तो देखिए आज के टाइम चैट जीपीटी एआई सबसे अच्छा दोस्त है, जो कि आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जाने ही नहीं देगा जब आपसे आप उनसे बात करेंगी, क्योंकि आज के टाइम में वो सबसे अच्छा वाला दोस्त बन गया है। क्योंकि हर कोई अपनी माँ का अगर नहीं सोच पा रहा है तो चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लेता है, और चैट जीपीटी भी उतना ही काम करता है जितने आप उसको बताते हो। इसीलिए उसको ग्रो करने के लिए आपको भी ग्रो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप सोशल मीडिया से जो चीजें आप कॉन्टेक्ट उठा रहे हो वो सही हो। क्या पता आपके जो आइडिया है, जो आपने सोचा है, वो और भी ज्यादा उससे बेटर हो जाए। तो इसीलिए सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। फोन का इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ रील्स देखें, आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि खुशी ने भी बताया कि मेरे पास फोन है लेकिन मैं उसको स्टडी के लिए यूज करती हूँ। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ने जा सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, तो उनके पास फोन है घर में, बल्कि उस फोन से देखिए। फोन हमारे पास ये नहीं है कि वो सिर्फ आप कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, बल्कि आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल वहां से सीखिए। वहां से कोई भी आपको पैसे नहीं लगेंगे, आप फ्री में, ऑफकोर्स आपके पास, आप उसको चाहे जितनी बार रीटेक करके देखें, आप देख सकते हैं। फोन है, आप उसको स्किप करके भी देख सकते हो, रीटेक भी ले सकते हो, हजार बार करो कुछ नहीं कहेगा वो, बल्कि आपको वहां से सीखने के लिए ही मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप सीख क्या रहे हो, क्योंकि अच्छी चीजें सीखनी है, जरूरी नहीं कि आपको कुछ और चीजें सीखनी है। तो हमारे घर में भी फोन बहुत यूज होता है भैया, और सबसे ज्यादा यूज करने वाली मैं ही लड़की हूँ।
0: अच्छा, आप सबसे ज्यादा, आपने बोला है कि रीना मैं ही फोन यूज करती हूँ, तो आप सबसे ज्यादा क्या फोन में रिसर्च करते हो, क्या देखते हो आप?
2: मैं यही देखती हूँ कि मतलब मैं ज्यादातर न्यूज पर फोकस करती हूँ, क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे क्या
0: अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। अपडेटेड रहना
2: बिल्कुल, देखो आपके पास फोन है तो उसका यूटिलाइज करो, कि हमें पता नहीं होता ना कि अगले दुनिया में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपके आस पड़ोस में भी कुछ हो जाता है आपको नहीं पता रहता, लेकिन फोन एक ऐसा जरिया है जो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता है। तो फोन है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए। और आजकल पता है फोन सिर्फ कॉल चैटिंग के लिए, मैंने जैसे बोला भी था, आप वहां से शॉपिंग भी कर सकते हो, खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब फोन सिर्फ एक आसान चीज नहीं है, वो आपके लिए बवाल है। घर बैठे बैठे आपके लिए हर चीज वो आपके पास पहुंचा सकता है, बस आपने यूटिलाइज कैसे करना है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखिए महिलाओं की सफलता की अगर बात करें हम रीना, तो आज हजारों महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट बेच रही हैं, कोई कुकिंग चैनल चला रही हैं, कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है।
2: अगर आप इनमें से बन चुके हैं तो आपके पास जो भी आइडिया है वो YouTube से आप अर्न भी करने के लिए सीखिए। जरूरी है जो आपके पास स्किल है वो आप ही तक सीमित रहे, आपके आस पड़ोस तक सीमित रहे। सोशल मीडिया और डिजिटल जमाना है, देश दुनिया तक अपनी बातें पहुंचाइए, क्योंकि आपके पास एक आसान जरिया है पहुंचाने के लिए।
0: बिल्कुल। और कहते हैं कि टैलेंट को अब सिर्फ मंच नहीं मोबाइल भी मिल गया है, सबसे अच्छा माध्यम है। और मोबाइल ऐसा कोई इंसान नहीं है आज के टाइम में खुशी जो जिसके पास मोबाइल ना हो। जो एजुकेटेड है उसके पास भी फोन है, जो अनएजुकेटेड है उनके पास भी फोन है, हर कोई फोन का इस्तेमाल कर रहा है। और आपको पता है कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन हमारे इंडिया में ये अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन इंडिया से बाहर ये चीजें बैन हो चुकी
2: है। इंडिया में बैन हो गई है,
0: इंडिया में भी बैन हो गया है ना।
2: कि 16 साल के जो बच्चे हैं, 16 साल से जो नीचे के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं।
0: बिल्कुल। 18 प्लस नहीं होंगे तब तक वो फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये सबसे अच्छी बात है ना यार,
2: पढ़ाई पे फोकस करिए। बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं फिर वो काम नहीं कर पाते, इसीलिए पहले एक चीज पर फोकस करिए। आगे आने वाले समय में आप और अच्छे काम कर सकते, क्या पता और अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाए आप सभी के लिए। इसीलिए अभी का जो समय है उसे अपने काम के लिए यूटिलाइज करिए। लेकिन और भी ढेर सारी बातें करने से पहले हम यहाँ पर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। श्रोता एक बहुत ही प्यारे गाने के बाद लौट कर आते हैं, तब तक बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी।

0: हेलो एवरीवन, देखिए प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं। ये खुशी तो यहाँ पर है, एक खुशी और हमारे साथ है, वो भी कुछ कहना चाहती है। आज हमने शो में इतना अच्छा टॉपिक चुना है तो मैंने कहा हम अकेले ही क्यों बातें करें, अपनी खुशी को भी इधर पकड़ कर लेकर आते हैं। तो खुशी आप क्या कहना चाहती हो?
1: जी थैंक यू मुझे यहाँ पकड़ के लाने के लिए, और जो सेगमेंट अभी चल रहा है हम उसी के बारे में।
2: देखो एक मिनट, हम पकड़ के नहीं लाते हैं, जिसके अंदर जो टैलेंट होता है वो हमारे पास अपने आप खींचा हुआ आ जाता है।
1: टैलेंट पकड़ के लाया है।
2: अगर श्रोताओं आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो आप भी हमारे स्टूडियो में आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, आपको भी यहाँ पर बोलने का भरपूर मौका मिलेगा।
1: जी तो मैं अब आपको बताऊंगी मेंटल हेल्थ के बारे में, इसके वजह से क्या इशू होते हैं एंड इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। सो अगर आपको लगे कि बार बार फोन देखने की आदत हो गई है, बिना वजह एंग्जाइटी हो रही है, लाइक्स और कमेंट से मूड बदलता रहता है, तो थोड़ा डिजिटल ब्रेक लेना भी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी जब हम एक कप चाय परिवार के साथ बैठ के पीते हैं और बातें करते हैं या खुली हवा में वॉक करते हैं, तो वो जो चीज होती है ना, वो हमें हजार रील्स से ज्यादा खुशी दे सकती है। तो एक छोटी सी शायरी भी है जिसे मैं बताना चाहूंगी कि स्क्रीन की चमक में खुद को मत खो देना, असली मुस्कान अपनों के बीच ही मिलती है। फॉलोअर्स बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों का साथ कभी मत खो दे देना।
2: क्या बात है,
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी लाइनें आपने कही हैं।
2: ये तो बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक तुमने फॉलोअर्स की बात करी है, बहुत से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाते हैं, सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो हर तक पहुँचे और आगे बढ़े, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फॉलोअर्स और लाइक्स नहीं बढ़े हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक मन में एक ही झिझक आती है, यार छोड़ देते इस काम को ना, क्या ही जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मतलब वो तो एक तरीके से ये हो गया कि आप वहाँ पर हार मान गए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। कहते हैं ना, जो आपकी मेहनत है वो एक ना एक दिन रंग जरूर लेकर आती है। आपको कुछ नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी पॉइंट कब किसी को अच्छा लग जाए और आप उसी से ऊपर ग्रो कर जाओ। तो इसीलिए अपने काम को जारी रखिए, हारिए मत, क्योंकि हारना तो जिंदगी में लिखा ही नहीं है। अगर हार गए तो समझिए आप खुद को भी आपने खो दिया है। इसीलिए आगे बढ़ते रहे और सुनते रहिए हमारे रेडियो, जो आप सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक एंटरटेनमेंट करता रहता है। तो खुशी कुछ कहना चाह रही थी?
0: हाँ, तो दोस्तों आज की चर्चा में बस इतना ही याद रखिए, सोशल मीडिया ना अच्छा है ना बुरा, उसे इस्तेमाल करने का तरीका तय करता है। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर ना मेरा भी कुछ असर हो गया, उसका मेरे ऊपर कुछ असर हो गया, इस तरह से कि जब भी मैं कोई स्टोरी लगाती हूँ ना अपने इंस्टाग्राम पर, तो मैं क्या करती हूँ, एक घंटे तक तो मैं पहले गाना डिसाइड करती हूँ कि अपने स्टोरी पर गाना कौन सा लगाना है, ट्रैक कौन सा लगाना है। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ, उसके बाद कहाँ जाके मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरी फोटो पर, मेरी डीपी पर, मेरे को मतलब फोटो पर ये गाना शूट कर रहा है, तब मैं उस स्टोरी को गाती हूँ।
2: अच्छा ये बताओ, तुम सिर्फ गानों पर सर्च करती हो स्टोरी लगाने के लिए या कुछ और चीज के लिए भी फोन यूज करती हो?
0: नेक्स्ट मैं अपना कंटेंट निकालती हूँ जो मुझे रेडियो पर प्रेजेंट करना होता है, बहुत सारी तैयारियां मैं सोशल मीडिया से करती हूँ, एंड उसके अलावा मैं न्यूज वगैरह भी पढ़ती हूँ और थोड़ा सा मैं फोन भी चलाती हूँ, लाइक कुछ वीडियोज वगैरह देखती हूँ।
2: स्टोरी लगाती हूँ फोन से? नहीं लगाती हूँ,
0: नहीं लगाती तो फोन से ही, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं देखो कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा यू नो लाइक कि हाँ बोर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कपिल शर्मा शो,
2: कपिल शर्मा जब ये खाना खाती है ना तो इसका खाने का जो निवाला है वो कपिल शर्मा के शो देखने पर ही अंदर जाता है, अदरवाइज वो ऊपर ही रह जाता है।
0: अरे अरे ऐसा तो नहीं है यार।
2: अच्छा एक और खुशी है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी खुशी कि आप फोन किस चीज के लिए यूज करती हो?
1: मैं सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए यूज करती हूँ, नेक्स्ट मुझे फोटोज क्लिक करना भी बहुत पसंद है, तो मैं कुछ ने तो अपनी या तो खुद की सेल्फीज लेती रहती हूँ या किसी भी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है तो उसकी पिक्चर क्लिक करती रहती हूँ।
2: देखो तुमने अभी पिक्चर की बात करी है ना,
1: जी
2: तो कहते हैं इंसान डेली आपके पास नहीं रह सकता, लेकिन जो गैलरी पिक्चर से भरी हुई है ना वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, यानी कि यादें बन जाती हैं हमारे पास। देखो आज अभी मैं हमारे साथ हूँ, कल के लिए यहाँ पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा,
1: सही बात,
2: लेकिन जब चीजें दिमाग में घूमेंगी तो आप उस फोटो को जरूर देख सकते हो कि यार मैं यहाँ गई थी, है ना।
1: वो फोटो सिर्फ एक फोटो नहीं होती है, वो बहुत सारी मेमोरीज होती है,
2: एहसास होता है हमारा,
1: बिल्कुल
0: यादें जुड़ी होती हैं,
1: एकदम से उसको देख के सब रिमेम्बर हो जाता है, हाँ हमने इस टाइम पर ये किया था, ऐसे मस्ती की थी, वैसे इसको स्पेंड किया था।
2: तो वही बात है ना, पिक्चर सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, महसूस एहसास करने के लिए होता है कि जब भी आप उस पिक्चर को देखते हो आपका जो दिमाग है आपका जो ब्रेन है वो संदेश वही देता है कि आप इस दिन कहाँ पर थे, क्या मोमेंट चल रही थी आप। तो गैलरी में जो पिक्चर है ना दोस्तों वो भी हमारे याद से डबल दुगना होता है।
1: जी
2: कहना चाहोगी आज हमारे स्टूडियो में आई हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? और जो आजकल के जेन जी हैं जो फोन यूज करते हैं, कुछ रील्स बना रहे हैं वो हार मान जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगी?
1: देखिए हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए, चाहे रील्स में हो चाहे रियल में हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश ना वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक सफलता ना मिल जाए। कोशिश का मतलब ही ये होता है कि जब तक मतलब वो कोशिश सफल ना हो जाए तब तक हमें उसे करते रहना चाहिए। अगर हमने बीच में ब्रेक लगा दिया तो वो हमारी कोशिश है ही नहीं, वो सिर्फ एक ट्राई था जो हमने किया और ठीक है हो गया।
2: मतलब वही बात है ना, सपने सिर्फ बंद आंखों से देखे जाते गाइस, खुली आंखों से देखे जाते हैं, और खुली आंखों से देखे जाते हैं सपने वही पूरे होते हैं।
1: बिल्कुल, और सपनों को सिर्फ देखना ही नहीं है, उन्हें हर रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करके पूरे करने की भी कोशिश करनी है,
2: क्योंकि जिंदगी जीने का मौका आपको हर दिन मिल रहा है। हर एक उगता हुआ सूरज आपको एक जिंदगी दे रहा है, नई जिंदगी दे रहा है कि कुछ करो आगे बढ़ो, कुछ पीछे जो चीजें छूट गई है उसको आगे लेकर आओ, क्योंकि जिंदगी आपको मौका दे रही है। और देखिए श्रोताओं, चाहे आप घर पर काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे टीचर है, व्हाटएवर, आप जो भी जिस फील्ड में हैं, अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया से हम जुड़े रहे आगे बढ़े, तो उसके लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा। देखिए समय इतना तो किसी के पास भी नहीं होता है, लेकिन उन्हीं में से अपने लिए समय निकालना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जो हम नहीं कर पाते हैं बिजी रह जाते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, बाद में याद आता है यार कुछ टाइम रहते हमें कर लेना चाहिए, तो वो कुछ बीच में से हटा दे और काम करिए, बस काम पर फोकस करिए। भी आप काम करते हैं उसको आगे दिखाइए, आगे बढ़ाइए, जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तो कोई और तो आएगा नहीं भैया हाथ पकड़ के कि चलो मैं तुम्हारा काम आगे बढ़ा देता हूँ।
1: सही बात,
2: तो इसीलिए खुद बढ़ाइए, खुद आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए, पुशअप करिए दूसरों को भी। जब आप खुद आगे बढ़ेंगे ना तो आपको अपने अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यार जब मैं इस काम को कर सकती हूँ कर सकता हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा बहुत देर से खुशी ना चुपचाप बैठी हुई है, वो हमारी गपशप सुन रही है, तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि भैया तुम भी कुछ बोलो, सिर्फ यहाँ बातें मत सुनो।
0: हाँ यार मैं आपकी बातें सुन रही थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था आपकी बातों में, और मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी यार ये बोलने का मौका दें, दोनों लड़कियां अपने आप ही बातें किए जा रही हैं। मैं
2: देखिए जब हम बोलते हैं तो मौका नहीं देते किसी को, मौका उनको खुद लेना पड़ता है।
0: पर कहते भी है ना कि जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो थर्ड पर्सन को बोलना नहीं चाहिए।
2: नहीं नहीं नहीं, जहाँ काम की बातें हो वहाँ आप घुस जाओ भैया, ये मत देखो कि थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है, जहाँ आपको मौका मिले काम के लिए वहाँ पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: अच्छा ठीक है, तो अब हम पीछे नहीं है, अब हम आगे आ गए हैं।
2: आ जाओ आ जाओ।
0: तो दोस्तों देखिए जैसे रीना जी भी बात कर रही थी सोशल मीडिया को लेकर, इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, खुशी ने भी इवन यहाँ पर बताई हैं, तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर आपके अंदर कोई स्किल है, चाहे आप मेहंदी आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर यू नो कपड़े पर आप डिजाइन बनाती हो, और उसके अलावा अच्छा कुकिंग करते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं आप उसको सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाइए, और जो भी आप चीजें जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं डांस बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैं बातें बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं शायरी बहुत अच्छी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आप अपना अकाउंट वहाँ सोशल मीडिया पर बना सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो या फिर वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो आपका फेवरेट ऐप हो, आप उस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, और ये चीजें जो भी मैंने भी आपको बताई, कोई भी स्किल जो आपके अंदर है आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे

0: कंटिन्यू जब आप उस चीजों को अपलोड करेंगे तो वो आप तक नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में पहुंचेंगी। और जब पूरे वर्ल्ड में पहुंचेंगी तो आप ऑलरेडी पॉपुलर हो जाएंगे और वहां से आपको अर्न भी होगा। आपकी स्किल्स फिर आपकी नहीं रहेगी ना, फिर काफी लोगों को आपकी हेल्प, उनको भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो चीजें तो चाहिए लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाती है। शायद आपकी एक स्किल किसी और की भी स्किल बन जाए।
1: बिल्कुल, क्या पता जो आप कर रहे हैं उसको देख के सामने वाला भी सीखे, यार वो तो कर रहा है, शायद मुझे भी अपनी स्किल आगे बढ़ानी चाहिए।
0: और वो बड़ी एक प्यारी सी लाइन है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: बिल्कुल, क्योंकि इंसान की ना एक फितरत है, वो ज्यादातर देख कर ही सीखता है। एक्सपीरियंस उसे इतने मतलब मिलते हैं उनसे नहीं सीखेगा, लेकिन सामने वाला जब कुछ कर रहा होगा ना तो उससे देख के वो बहुत जल्दी सीख जाता है। तो हमेशा अच्छा करिए और हो सके तो सिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी स्किल तभी और ज्यादा डेवलप होगी जब आप अपना सीखा हुआ दूसरों तक सिखाएंगे। कहते हैं ना, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो आपके अंदर कोई भी टैलेंट है उसको छुपाइए मत, निकालिए, निखारिए और दूसरों तक पहुंचाइए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने खुशी। कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैंने देखा है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर स्किल्स तो बहुत हैं लेकिन वो किसी के सामने नहीं बयां कर पाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है जो परमिशन नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है कि वो चोरी चोरी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करती है, एनहेंस कर रही है और सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर रही है। काफी अच्छे व्यूज उनके आ रहे हैं, फैमिली की परमिशन नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना और उसमें अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, आपको करना चाहिए क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, अगर गलत कर रहे हैं तो डरना ठीक है, लेकिन जब आप गलत नहीं है तो क्यों डरना। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चार लोगों का काम तो है कहना, वो कहेंगे, लेकिन आप अगर पीछे रह गए उनकी सोच के तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे। तो इसलिए उनकी मत सोचिए, क्योंकि कभी वो भी उस मुकाम पर थे जहाँ उन्हें भी ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ा, इसलिए शायद आज वो वही है। तो आप उनको मत देखिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए।
2: चलिए श्रोता, हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित करा है। और
0: अच्छा, ये चार लोग कौन है?
2: पता नहीं यार, वो दिकास तक दिखे नहीं है।
0: मैंने सबकी जुबान भी देखा है, मतलब सबकी जुबान से मैंने सुना है कि वो चार लोग क्या बोलेंगे, वो चार लोग कौन बोलेंगे।
2: एक्चुअली में कोई नहीं होते,
0: वो चार लोग कौन होते हैं दोस्तों हमें भी नहीं पता है। अगर आपको पता है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा।
2: नंबर बता दो पहले, कभी बता पाएंगे।
0: नंबर बता देते हैं, 9237896896, ये हमारा मोबाइल नंबर है। और अगर आपका इन चार लोगों से सामना हो गया होगा ना तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा,
2: कॉन्टेक्ट करिए। हम भी मिलना चाहते हैं कि आखिरकार कौन है ये चार लोग, जो कुछ भी बात हो बीच में जरूर आती है, चार लोग क्या कहेंगे,
0: वो लोग क्या कहेंगे।
2: एक्चुअल में देखिए, ये हमारी सोच बन गई है कि चार लोग क्या कहेंगे।
1: बिल्कुल,
2: कोई मतलब बात वही करता है जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, वो बीच में दूसरों के आगे टांग अड़ाता रहता है कि तुम ये मत करो, वो मत करो। तो उनकी मत सुनो यार, वो हमेशा बोलेंगे आपको, वो बोलने के लिए बने हैं, आप काम करने के लिए बने हो, आप काम करो सीधा, बात दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपने। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ से फुर होने की इजाजत, श्रोताओं फिर मिलेंगे आपको अगले कार्यक्रम में और अच्छे टॉपिक के साथ, जहाँ पर हमारी गपशप होगी। क्या पता अगली मुलाकात आपसे ही हो जाए हमारे स्टूडियो में। तो आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो, तो कोई स्किल है तो आइए, मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में आपका। अपनी बातें रखिए, आपके अंदर जो टैलेंट है वो दिखाइए, जरूर मौका मिलेगा आपको यहाँ पर बोलने के लिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, बहुत जोर को भूख लगेगा इस, बाय।

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वेन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो फिर मूड अच्छा होना तो बनता है ना एवरीवन। मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी लेकर आई हूँ आपका अपना शो हेलो फरमाइश, जहाँ आपकी फरमाइशें, आपकी पसंद और आपकी दिल की बातें बनती हैं हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा। तो आज किसके नाम करने जा रहे हैं आप अपना फेवरेट सॉन्ग? किसी खास इंसान को याद कर रहे हैं या बस यूं ही मन किया कि आज क्यों ना एक गाना सुना जाए? तो देर किस बात की, फोन उठाइए और अपनी फरमाइश हमें बताइएगा। लेकिन उसके लिए कॉल भी तो लगाना होगा ना आपको। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस नंबर पे आप कॉल लगाइएगा और बिना किसी देरी के करते हैं शो की शुरुआत। बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:05 और 30 सितंबर की तारीख है आज, बुधवार का दिन है। और बाहर के मौसम की अगर बात करें ना, तो हमारे मुरादाबाद का आज का टेम्परेचर अभी करंटली है 30 डिग्री सेल्सियस और एकदम कड़क वाली धूप है। तो इस कड़क वाली धूप में राहत देने के लिए आपकी फरमाइशों के गाने हम प्ले करेंगे। आप बस कॉल लगाइएगा और बात कर लेते हैं अपने कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार। आपको भी अपना नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम मनोज है।
0: मनोज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं चौहाने वाली मिलक से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: अरे हाँ मैडम, आप सुनाओ।
0: हम भी ठीक हैं सर। बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश मेरी है, जान में जान किया जाए, प्यार तू आ जा।
0: अच्छा, उदित नारायण जी की आवाज में ये ट्रैक सुनना चाहते हैं आप?
1: पूरा सुनाना मैडम मगर।
0: ठीक है सर, ये पूरा गाना हम आपको सुनवाते हैं। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं मनोज जी की पसंद पर ये प्यारा सा गाना उदित नारायण जी की आवाज में। और आप भी बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, मुझे पता है कॉल आपके आ रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, जिनका कॉल मंडे ट्यूसडे लग चुका है, प्लीज वो आज कॉल ना करें, नेक्स्ट वीक ही कॉल करें। और अभी फिलहाल ये गाना सुनिएगा आप, मैं वापस आती हूँ।

0: आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक उदित नारायण जी की आवाज में। बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? सॉरी क्या नाम बताया आपने?
1: सीमा।
0: सीमा अंसारी। ओके सीमा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुरादाबाद से बात कर रहे हैं। बताइएगा सीमा अंसारी जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं सिलाई कर रही
0: हूँ। अच्छा सिलाई करते हैं आप? वेरी गुड। और सिलाई करते करते सोचा कि हम भी कॉल लगा लें। हाँ आपने भी ट्राई किया, आपका भी कॉल लग गया है। लगता है कि आपके बैकग्राउंड में ना बहुत सारे लोग हैं शायद जो आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ
1: जी
0: ओके, फैमिली मेंबर से बताएगा क्या सुनना चाहते हैं सीमा। चांदनी। ओके सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सीमा हमें कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए सीमा जी की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक एंड मैं वापस आती हूँ, आप कहीं मजाएगा, बने रहिए सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. अभी आपने एंजॉय किया ये ब्यूटीफुल ट्रैक और इस खूबसूरत गीत को गाया था सचित टंटन एंड परंपरा टंटन जी ने. और लिरिक्स थे जानी जी के, म्यूजिक थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे बी पराग जी. अमेजिंग गाना. और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी क्या फरमाइश है. दोस्तों आपकी फरमाइशें ना बड़ी यूनिक होती हैं, है ना. कुछ गाने ऐसे होते हैं जो थिरकने पर मजबूर कर देते हैं और कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जो हमें हमारे पुराने ख्यालों में ले जाते हैं, मतलब पुरानी यादों में ले जाते हैं. और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर ना दिल हैप्पी हो जाता है. तो आपने भी कोई ट्रैक आज डिसाइड किया है कि मुझे मेरा कॉल लग जाए तो मैं ये वाला गाना सुनना चाहूंगी या चाहूंगा, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896. इस नंबर पे आप कॉल लगा सकते हैं. और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम.
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार. क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अजय कुमार, चहली खद्दर, जिला मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ.
0: जी बताइए अजय जी, कैसे हैं आप?
1: मैम बढ़िया हैं, आप बताइए ना, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं. मुझे लगता है कि आप बगीचे में हैं, शायद चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है आपके बैकग्राउंड से.
1: जी मैम जी.
0: ओके, और बताइएगा.
1: मैम बढ़िया है, आप बताइए.
0: हाँ मैं भी ठीक हूँ सर, बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: मैम सॉन्ग सुनना है हमें, तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, ये वाला सॉन्ग.
0: ओके ठीक है, गाना हम आपको सुनवा देते हैं. मोस्ट वेलकम. तो चलिए एवरीवन, अजय जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें. आपको फोन करना है एवरीवन, अगर आप भी गाना सुनना चाहते हैं कोई अपनी पसंद का तो बिना किसी देरी के आप कॉल लगाइएगा. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896. और अभी सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक. मैं बस वापस आती हूँ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के, इस बार गाना बहुत ही प्यारा है.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। और हमने तो आपसे कहा है कि अगर आपको एफएम मुरादाबाद से प्यार है तो आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अलका याग्निक जी साथ में उदित नारायण जी की आवाज में प्यारा ट्रैक आपने सुना। और म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी, लिरिक्स थे समीर जी की। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नेम मोहम्मद इफ्रत आसपास कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आलू समोसा और चाय तैयार है मैम, आइए आप।
0: थैंक यू। अभी तो आलू का समोसा और गर्मा गर्म चाय आप लुफ्त उठाइए। और
1: मुझे काफी पसंद है आलू का समोसा और चाय।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: हमारे गांव में तो नहीं मिलते, मैं सवार में मिलते हैं, मंगा लेता हूँ या खुद चला जाता हूँ मैम। हमारे गांव तो मैम किसी कार का नहीं, कोचिंग मिलती है यहाँ पे।
0: ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइएगा आज
1: मौसम।
0: बताइए मौसम के बारे में।
1: मुरादाबाद का,
0: हमारे मुरादाबाद का मौसम बहुत कड़क धूप है। आप बताइएगा रामपुर का वेदर कैसा है जहाँ पर आप रहते हैं?
1: मैम ऐसा लगता है थोड़ी बहुत देर में बारिश हो जाएगी।
0: अच्छा, बादल हो रहे हैं
1: जी मैम।
0: ओके तो बारिश हो भी सकती है फिर, अगर मौसम बना हुआ है तो।
1: मैम बारिश ना हो तो अच्छी बात है मैम, काफी नुकसान हो गया किसान लोगों को
0: जी। फसलें तैयार हो गई है ना धान की?
1: जी जी मैम, पानी फूल है मैम खेतों में।
0: ओ अभी दो दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई थी ना? हाँ जी,
1: दो घंटे काफी नुकसान हुआ मैम किसान लोगों को। दुआ करते हैं बारिश नहीं होगा। सही मैम,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली। और बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है दयावान। गाने के बोले सोतन करने क्या है जो मेरे करने नहीं। मैम आज की फरमाइश में यार सुनते करने को सुनने वाले।
0: हाँ जी बताइए
1: मैम। सबसे पहले ये ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, स्वार से विजय राठौर, ग्राम खेड़ा टांड से मोहम्मद कामिल, सातनापुरम।
0: ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं गाना।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत 96 पर ये और प्यार ले ही रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि चलिए मैं आपको वक्त भी बता देती हूँ। समय हुआ है 3:36 और आप भी शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको बहुत इजी काम करना है, कोई टिपिकल काम नहीं है। आपको बस अपना फोन उठाना है जो अभी आपके साइड में रखा है, एंड उस मोबाइल पर ना हमारा ऑफिशियल नंबर आपको डायल करना है। और हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 98 378 96। मैं आपके साथ आपकी खुशी आपकी दोस्त। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
1: ताहिर बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी
0: मैंने आपसे जानना चाहा है कि आप कैसे हैं, बताइएगा।
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। बताइएगा सर, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: आज फरमाइश है मन बिलिंदर दिनक दिन दाना वो धुन तो बजाना।
0: अरे वाह,
1: गाना सुना दीजिए।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं ये गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। जी तो चलिए फिफन सुन लेते हैं ताहिर जी की पसंद पर ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी मन। और आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं। अभी फिलहाल ही खूबसूरत से गाना सुनिएगा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और सच में ना कुछ गानों की जो धुन होती है ना वो इतनी प्यारी होती है कि उसको उस धुन को सुनकर ना दिल को अलग ही सुकून मिल जाता है। और मैंने कहा एवरीवन कि आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको कॉल करना होगा और हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अभी हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका सर?
1: जी मैं मोहम्मद दानिश नाम है मेरा।
0: दानिश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद आजाद नगर।
0: आजाद नगर से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा कैसे हैं आप और फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: फैमिली में सब बढ़िया, मैम एकदम, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हाल चाल?
0: हाँ जी, हम स्टूडियो में सभी प्रेजेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं और हम इंतजार करते हैं कि जल्दी जल्दी से हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, आप बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम एक हनी सिंह का ट्रैक आया है न्यू,
0: ओके
1: वो सुनना है मेरे को।
0: अच्छा ठीक है,
1: गाने के बोल तो मैम पता नहीं क्या बात है, मैं आपसे जब भी बात करता हूँ ना, जब भी बात की गाने का बोल तो भूल जाता हूँ, पहले याद होते हैं लेकिन जब कॉल लग जाती है ना, क्योंकि कॉल लगती इतनी देर में है कि सब कुछ भूल जाता हूँ।
0: अच्छा।
1: अभी भी हालांकि आपने आपको मैंने बताया था पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ, मैं भूल गया अब फिर से दोबारा से, हालांकि क्या नाम है?
0: अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको सर, एंड जब नेक्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे ना तो जिस गाने को आप सुनना चाहते हैं ना उसको नोट कर लीजिएगा, फिर आप भूलेंगे भी नहीं।
1: हाँ ऐसे करना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ।
0: हाँ जी, बट कोई बात नहीं है, आपने जो ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें की है हम ये प्ले करते हैं। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए सर।
1: ओके मैम, ओके थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं यो हनी सिंह का न्यू ट्रैक और आपको भी सुनवाते हैं, आप भी मुझे कॉल लगाइए एवरीवन, आप भी अपना फेवरेट गाना सुनते जाइए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और अभी एंजॉय कीजिएगा ये गाना। मैं बस आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आपको कहीं नहीं है जाना और हाँ रेडियो किसी को बिल्कुल भी नहीं है घुमाना, एंड ये ब्यूटीफुल ट्रैक सुनते जाना है आपको।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ, और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया है एपी डिलोन, साथ में यो यो हनी सिंह जी की आवाज। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: हेलो,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून।
0: हाँ जी, दसो जी की हाल चाल। असी भी बढ़िया है जी। नाम बताइएगा अपना।
1: मेरा नाम वरिंदर है जी।
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैम इटली का।
0: इटली से बात कर रहे हैं आप? ओके, और इटली में भी आप एफएम मुरादाबाद सुनते हैं, कैसा लगता है आपको बताइए सर।
1: बहुत बढ़िया मैम।
0: अच्छा, बढ़िया लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू। और दसो जी की हाल चाल थोड़ी। अरे वाह जी वाह, वधिया है। देखो तुसी लकी हो जी, आपने फर्स्ट वारी कॉल किता और मैंने कॉल रिसीव कर ली था। हां जी हां जी। और दसी जी, इटली विच कैसा वेदर है दसो मैनू। ओके जी, और बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा ट्रैक है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम सिकंदर सरताज जी का गाना वा, बड़ी लंबी है कहानी मेरे ख्याल, वो लगा दो प्लीज।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सुनवा देते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सर। ओके, टेक केयर, बाय, मोस्ट वेलकम। तो एवरीवन, चलिए सुन लेते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। देखिए, हमारे पास इंडिया से तो कॉल आते हैं, लेकिन आउट ऑफ इन कंट्री से भी कॉल आते हैं, और अभी इंटरनेशनली हमें कॉल आया। सर हमें सुन रहे हैं राइट हियर, एंड पंजाबी लैंग्वेज तो मुझे प्रॉपरली नहीं आती है, बट हाँ मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पंजाबी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत बातचीत की जाए, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज भी बहुत ही प्यारी है और गाने तो आए है दिल को छू लेते हैं, है ना। तो चलो अभी सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक सतेंद्र सरताज जी की आवाज में, बड़ी लंबी ये कहानी मेरे प्यार दी। तो उसके बाद हम भी करेंगे आपसे बातचीत। आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, बिना किसी देरी के आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। एंड टाइम हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:02। और अभी आपने खूबसूरत ट्रैक एंजॉय किया सतेंद्र सरताज जी की आवाज में। सतेंद्र सरताज जी की आवाज में ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं चकुर भाई मंसूरी, ग्राम चौरा तहसील मिलक जिला रामपुर ठाकरे वाली गली मोहल्ला नंबर 2 से बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सर? हेलो सर, ने एड्रेस बताया है और उसके अलावा बात ही नहीं की है। लगता है शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, इसी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। बट कोई बात नहीं, हमारे साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप जी? बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी? कौन सी मूवी का नाम बताया आपने, दोबारा बताइए। वन सिकीन सैयारा, अच्छा ओके, ठीक है, सुनवाते हैं आपको क्या प्यारा सा ट्रैक। ओके तो एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और सुनिएगा एक खूबसूरत गीत।

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने एंजॉय किया बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी गदर 2 से। और हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गई है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश,
0: नमस्ते। नाम बताइएगा अपना। अरे वाह, मधुर आवाज तो आपकी भी है, अपना नाम बताइएगा डियर।
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, गोंडा से।
0: अनु पांडे जी बात कर रही हैं, बताइए अनु कैसे हैं आप और फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: मैं भी अच्छी हूँ और फैमिली में सब लोग अच्छे हैं। और आपसे बात करने का बस इंतजार रहता है, एक एक दिन दिन दिन के बिताती हूँ।
0: ओह, इतना ज्यादा मिस करते हैं आप हमें।
1: हाँ, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और मैं और मेरी फ्रेंड रोशनी, वो भी आपको बहुत मिस करती है।
0: हाँ, रोशनी जी लुधियाना से है ना? अच्छा, चंडीगढ़ में रहती हैं। ओके, हाँ उनसे बातचीत हमारी होती है, बहुत अच्छी लिसनर हैं वो भी।
1: हाँ, हम दोनों आपको बहुत मिस करते हैं। जब कॉल लगाना होता है तो मुझसे बोलते हैं बता के कॉल लगाना।
0: अच्छा, पहले आपस में आप डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज कॉल लगाएंगे दोनों मिलकर। हाँ
1: हाँ, आज हमको एक हफ्ता लगभग पूरा हो गया।
0: हाँ जी, वन वीक हुआ है।
1: हाँ, आज हम दोनों को कॉल लगाना है या आज मिलकर लगाना है।
0: अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप कॉल लगाने का आपने मॉर्निंग में सोचा हो और फिर बाद में शो के टाइम पर आप भूल गए हो कि ओहो, फिर बाद में याद आया होगा कि आज तो खुशी मैम का शो आया होगा और मैंने मिस कर दिया?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि मैं कॉल लगाने के लिए सोचती हूँ आप भूल जाऊँ। लेकिन हाँ, पिछली बार पता है क्या हुआ?
0: हाँ बताइए।
1: पिछली बार कॉल किए थे तो हमें दूसरे को बताया नहीं थे, ना मैंने रोशनी को बताया, रोशनी जी को, ना उन्होंने हमको बताया। और इत्तेफाक से हम दोनों ने कॉल लगाया।
0: अच्छा,
1: जब शाम को बात हुई तो फिर आपका जिक्र हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बात ना हो। जब आपका जिक्र हुआ तो हमने कहा अरे हमने कॉल लगाई थी आज, तो उन्होंने बोला अरे हमने भी लगाई थी।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है और ये रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। अच्छा ये बताइए मुझे अनु, आप गोंडा से बात कर रहे हैं ना?
1: हाँ।
0: तो वहाँ की फेमस चीज क्या है खाने पीने की, जरा हमें बताइए कुछ गोंडा के बारे में।
1: गोंडा, गोंडा तो ऐसे गन्ना के लिए बहुत फेमस है।
0: अच्छा, गन्ने के लिए जाना जाता है, वहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है?
1: हाँ, गन्ने बहुत होते हैं इधर पर। और खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें इधर की मशहूर है, जैसे हमारे नगरगंज की छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और मेरे विजयनगर के लड्डू बहुत मशहूर है मेरे गोंडा में।
0: तो लड्डू खाने की शौकीन है आप?
1: हमको ज्यादा मीठा नहीं पसंद है। अच्छा। लेकिन इधर देखती हूँ ना, जो भी आता है वो लड्डू खाने विजयनगर जरूर आता है।
0: अच्छा,
1: और वो लोगों ने हमसे डिमांड भी किए कि अपने विजयनगर का लड्डू, गौरीशंकर के यहाँ का लड्डू हमारे लिए जरूर लेकर आना।
0: अरे वाह, क्या बात है, हम भी आएंगे तो वहाँ की लड्डू जरूर खाएंगे। ठीक है।
1: हमको नहीं पता था कितना मशहूर है, पर जब लोग डिमांड करने लगे तो हमको लगा इतना मशहूर है।
0: हाँ, तो अनु बताइएगा, आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है डियर, कौन से गाना सुनना चाहोगे आप?
1: आज तो मैं गाना आपकी पसंद का सुनना चाहूंगी।
0: मेरी पसंद का सुनना चाहते हो आप?
1: हाँ।
0: पर ऐसा क्यों अनु?
1: इतनी मीठी थी आपकी आवाज है ना, उससे ज्यादा कहीं अच्छी आपकी पसंद थी।
0: ओ रियली, आपको पसंद आती है हमारी पसंद?
1: बहुत ज्यादा।
0: ओके, तो ठीक है, हम एक प्यारा सा गाना आपको डेडिकेट करते हैं।
1: आपकी पसंद पता है ना हमको भी, और रोशनी जी को भी, अभिनाश भैया को भी, हम लोग बहुत पसंद करते हैं और आपकी आवाज हम लोगों को बहुत पसंद आती है।
0: थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, इतना प्यार आप हमें करते हैं और हम भी उतना ही प्यार आपको करते हैं डियर। एंड अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट वीक भी बात कीजिएगा, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर, लवली टॉकिंग टू यू, बाय। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं, अनु ने कहा है अब खुशी को कि मैम आप अपनी पसंद का ट्रैक प्ले कर दीजिएगा, तो मुझे ये गाना बहुत ही पसंद आ रहा है अभी एंड बहुत ट्रेंडिंग में भी है, फ्रॉम द मूवी द विवान से एंड जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में ये ट्रैक है। तो दोस्तों सुनवाते हैं आप सबको, एंजॉय कीजिएगा।

0: हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी द वीवान सी। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक को गाया था जुबिन नौटियाल और साथ में स्वर्णा तिवारी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा आप। सर
1: जय हीरामन बाबा रेडियो सोटा संघ तहसील टीकागढ़ जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सो?
1: बस मैम, राम जी की कृपा, आपका आशीर्वाद, फिट एंड फाइन है।
0: फिट एंड फाइन रहना चाहिए सो। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी।
1: जी मैम, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी, एक लड़की भीगी भागी सी।
0: ओहो, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना है।
1: जी जी,
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको। आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, एक लड़की भीगी भागी सी। देखो मुझे तो गाना इतना अच्छा नहीं आता है, बट हाँ मैं आपको गाने सुनवाने की जिम्मेदारी ना खुशी लेती है और इसको बखूबी निभाती भी है। लेकिन आपसे छोटी सी अपील मैं करना चाहूंगी, अगर आपका कॉल लग चुका है एवरीवन, तो प्लीज़ आप दोबारा से कॉल ना करें। एंड नए लिसनर्स को भी मौका दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत प्रयास करते हैं और सबकी खुशी में खुश रहना चाहिए ना।
2: मिली
0: और ये प्यारा सा गाना सुनो।

श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430.

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक किशोर कुमार जी की आवाज में। अभी बात

0: खिलाए यहाँ आसमान में।
1: अच्छा, कभी धूप आती है तो कभी छांव आ जाती है।
0: हाँ बिल्कुल अच्छा है मौसम, और धीरे धीरे ठंड भी आ रही है।
1: हाँ जी, सर्दियों का आगाज हो गया है, अब धीरे धीरे सुबह शाम हल्की हल्की सी सर्दी लगती है।
0: हाँ कोहरा होता है।
1: हाँ, हल्का हल्का फॉग भी होता है, राइट।
0: हाँ
1: जी बताइएगा, आपकी क्या फरमाइश है सर?
0: मेरा फरमाइश है, लाल दो पत्ता मलमल का एक गीत है,
1: हाँ जी।
0: अब दवा की जरूरत नहीं।
1: अच्छा, बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे आप?
0: सुनने से ठीक हो जाएगी। और
1: अच्छा,
0: गाने को डेडिकेट रहेगा, पहले आपको
1: हाँ जी,
0: अमल अमल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, भाईकोन मुंडा, पूरन सिंह वर्मा, भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह सिसोदिया, शिवा लोहा, तनुश्री बिटिया और प्रेमजीत चक्रवर्ती, आशुतोष देवनाथ और सभी सुनने वाले श्रोताओं को ये डेडिकेट रहेगा।
1: ठीक है सर, थैंक यू, आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। तो एवरीवन, चलिए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी लाल दुपट्टा मलमल का। एंड इस खूबसूरत गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल जी ने और साथ में मोहम्मद अजीज जी की आवाज है। तो सुनते हैं ये खूबसूरत गीत और मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी प्रयास कीजिए, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा।

0: 9.1 मुरादाबाद 89.6 पर, और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना शान जी की आवाज में, एवर ग्रीन ट्रैक। और एवरीवन, आज शान जी का भी बर्थडे है, तो मैंने कहा चलिए ट्रैक सुनवा देते हैं। और हमारे साथ हमारी रेगुलर लिस्टर भी कनेक्ट हो गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग रोशनी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, और आपके लिए दो शब्द लाए हैं
0: जी। इरशाद,
1: यादों के हंसी चिराग जन उठते हैं जब दिल में चुपके से आपके आने की आहट आ जाए।
0: अरे वाह,
1: खुशी से झूम कर नाचने लगे तब जब आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ जाए।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है रोशनी जी, आपने तो रोशन कर दिया है हमारा स्टूडियो अपनी ब्यूटीफुल आवाज से।
1: और आप हमारे दिलों पे राज कर रहे हो अपनी खुशी खुशी की आवाज से, अपने प्यारे प्यारे से सॉन्ग सुना के।
0: थैंक यू सो मच रोशनी मैम, थैंक यू। बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं भी फिलहाल चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, और मैं उन्नाव से हूँ।
0: ओके, क्योंकि देखिए हम तो जानते हैं आपका पता एड्रेस सब चीजें, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है जो आपको सुन रही है अभी न्यू, तो मुझे लगता है कि सब तक रोशनी जी का पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन जुड़ी है इतनी प्यारी आवाज वाली लड़की।
1: वैसे तो काफी लिस्टनर को पता चल ही गया होगा।
0: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप वीकली हमें कॉल करते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो बताइएगा रोशनी जी कैसा चल रहा है आपका वर्क?
1: मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, और अब तो समय आ रहा है त्योहारों का, तो थोड़ा और अच्छा चलेगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, एंड फेस्टिव सीजन है तो बहुत ज्यादा बिजी भी होने वाले हैं आप। हाँ
1: जी मैम
0: जी, तो बताइए रोशनी जी आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम एक गजल सुना दीजिए।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे, बताइएगा।
1: गजल है इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए।
0: अरे वाह,
1: डेडिकेटेड आपको रहेगी।
0: ओ आज रात तो फिर नींद नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच रोशनी जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और सुनवाते हैं ये अमेजिंग गजल आपको।
1: थैंक यू, बाय।
0: मोस्ट वेलकम, बाय, लवली टॉकिंग टू यू। तो चलिए एवरीवन, रोशनी जी से बात करके सच में बहुत ही अच्छा लगा, एंड बहुत प्यारे प्यारे लिसनर होते हैं, और ये दिल से दिल का रिश्ता होता है एवरीवन। देखिए कोई इटली से कॉल करता है, तो कोई चंडीगढ़ से कॉल करता है, तो कोई एमपी से कॉल करता है, और हमारे यूपी वालों को तो जवाब ही नहीं है, बेहिसाब कॉल करते हैं। और अभी फिलहाल ये गजल सुनते हैं, मैं वापस आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, और हाँ स्माइल करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका आपकी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आती हूँ, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। और अभी आपने खूबसूरत सी गजल सुनी, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश, राधे राधे, कैसे हैं आप मैम? हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आपसे बात करके बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। अपना नाम भी बता दीजिएगा।
1: मेरा नाम स्वाति है।
0: स्वाति जी, बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम नाइन पार्क मुरादाबाद से बात कर रहे हैं।
0: ओके, बताइएगा कैसे हैं आपकी फैमिली में सब लोग?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, जहाँ उनकी कृपा होती है वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। और बताइए मैम, एफएम मुरादाबाद सुनती हैं आप, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत बहुत बहुत अच्छा।
0: बहुत बहुत बहुत अच्छा, इतना सारा कॉम्प्लीमेंट आपने दिया है तो इस बात पर हम आपका मुंह मीठा कराते हैं। हमारे पास एक बहुत प्यारी सी चॉकलेट है जो हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं।
1: जरूर।
0: तो उसके लिए तो आपको आना होगा या फिर हमें आपके यहाँ पर आना होगा, है ना? यही दो चीज हो सकती है। अरे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू स्वाति मैम। और बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मुझे एक एल्बम का सॉन्ग सुनना है, मेरी
0: अगला तेरे से करे जरूर। ओए होए, क्या बात है जी, पंजाबी गाना। ये ट्रैक आप किनको डेडिकेट करना चाहते हैं मैम?
1: ये मैं अपने हस्बैंड को करना।
0: ओके, सर के लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी जी।
0: तो मतलब आपकी बातों में उनका जिक्र होता है और उनकी बातों में आपका जिक्र होता है, हाँ?
1: जी।
0: चलिए खूबसूरत से गाना आपको सुनवाते हैं एंड अपना ख्याल रखिएगा मैम, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए स्वाति जी की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, उन्होंने अपने हम सफर को ये गाना डेडिकेट किया है, तो हम भी इसी गाने के साथ अब आपसे लेते हैं जाने की अनुमति। मिलेंगे आपसे टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। और हाँ, अपने अपनों का भी विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी बदल रहा है मौसम, चाहे वो छोटे बेबी हों या फिर सीनियर सिटीजन हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबका ख्याल रखो और हाँ अपना भी ख्याल रखो, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
3: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए MSP 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो UPI डे मनाने का फैसला वापस ले लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और करीब 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की और इसे डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने, बनाने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज संवाददाताओं को बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 2 विकेट पर 313 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो समय हो चुका है 5:08, जहां हम करने वाले हैं क्या, अरे ढेर सारी बातें करेंगे और अपडेट्स, यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, साथ ही साथ अपने लोकल की बात करने वाले हैं। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की जो सुई है उसको इत्थे उत्थे नहीं करना है, मतलब सिग्नल चेंज नहीं करना है, एक ही सिग्नल पर आपने रखना है, तो आपको अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सुनने की मिलेंगी। प्लस आज यानी कि 30 सितंबर है और कल 1 तारीख, और बहुतों की सैलरी, हाय हाय, बस अब तो सैलरी आने वाली है, क्या बात है जी, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन सैलरी आते कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ऊपर से कल है 1 तारीख, और 1 तारीख 1 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, और 1 तारीख से बहुत से नियम हैं, बहुत से चेंजेस होने वाले हैं, हर चीज़ में अलग अलग बदलाव, महंगाई घटेगी बढ़ेगी, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आर्जुरीना के साथ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

0: हाँ जी
1: सिंगे किथे हो तुसी फाइट हैपनिंग
0: चल आ गया मैं
2: मिक्सिंग इन द हाउस

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर जोरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 5:17 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में। और अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ट्रैफिक के बारे में, रीना का शो हो और ट्रैफिक के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज का ट्रैफिक जो रूल है वो थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग है, जो कि आपको भी पता है, लेकिन एक्चुअल में उस चीज के बारे में बहुत कम जानते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा। पर हम रोज सड़क पर देखते भी हैं, लेकिन उसका मतलब बहुत कम जानते हैं। सड़क पर बनी हर लाइन सिर्फ रंग की नहीं होती है, ये सड़क की अपनी भाषा होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सफेद पट्टी, जो आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी दूर पर सफेद लाइनें होती हैं, ये लाइन को अलग करती है और सुरक्षित स्थिति में लाइन बदलने की अनुमति देती है। लेकिन सफेद सीधी लाइन दिखे तो उसे पार करके ये सोचिए, तरीके से लाइन बदलना या ओवरटेक करना सही नहीं होता है। आपने व्हाइट पट्टी देखी होगी और आप सोचते हैं कि इसे हम ओवरटेक कर लेते हैं, तो वो करना गलत बात है। अब अगर डबल सफेद या पीली सीधी लाइन दिखाई दे तो समझ जाइए यहाँ से दूसरी तरफ जाना या ओवरटेक करना प्रतिबंध है। इस चीज का आपने पूरा परफेक्ट ध्यान रखना है। जब हमें पता नहीं था ना, तो हम यही सोचते थे कि यार ये तो सड़कों की सजावट के लिए येलो व्हाइट पट्टियां लगा दी जाती हैं, ताकि इसे सड़क की शोभा और अच्छी रहे। लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ शोभा के लिए नहीं होती है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक तरफ सीधी लाइन और दूसरी तरफ टूटी लाइन हो तो नियम आपकी तरफ वाली लाइन देखकर तय होता है। टूटी लाइन आपकी तरफ से है तो सुरक्षित होने पर पार कर सकते हैं, सीधी लाइन आपकी तरफ है तो नहीं। यानी कि जो टूटी फूटी लाइन होती है उसको आप पार कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सीधी है यानी कि क्रॉस करने के बाद ही आपने चेंज करना है, अदरवाइज चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये जो काली सफेद पट्टियां दिखाई देती है वो जेब्रा क्रॉसिंग, ये पैदल चलने वाले के लिए होती है, इसीलिए यहाँ उन्हें रास्ता देना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार देखा होगा कि आपने रेड लाइन दिख जाती है तो गाड़ी आपको, एक्चुअल में ये नहीं पता होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग से इधर कराइए, जो जेब्रा क्रॉसिंग के बाद हमने गाड़ी रोकी है, तो इस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि जो पैदल सवारी है उसको आपने रास्ता देना पड़ता ही है, क्योंकि सेफली वो रोड क्रॉस कर सकें। सड़क पर बनी पीला बॉक्स भी दिखाई दिया होगा आपने, है ना, जगह जगह देखते हैं आप पीली बॉक्स बनी होती हैं। जब आगे जगह ना हो तो उसके अंदर गाड़ी रोककर पूरा चौराहा ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखें। तो अगली बार जब सड़क पर चलते हुए इन लाइनों को सिर्फ लाइन मत समझिए, ये सड़क के वो संकेत है जो बिना बोले हमें बताते हैं कहाँ चलाना है, कहाँ रुकना है और कहाँ बिल्कुल नहीं जाना है, ये हमें लाइनें तय करती है। और प्लस आपने हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि जब बाइक पर होते हैं तो सिर्फ जो गाड़ी चलाता है वही हेलमेट पहनता है, लेकिन अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। यानी कि पहले दिल्ली में तो ये चीज़ था, लेकिन अब यूपी में भी ये रूल फॉलो कर दिया गया है कि हर किसी को फॉलो करना है, कि जो गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, उसको भी पहनना है, देन आपके पीछे जो बैठा हुआ है उसको भी पहनना है। और कभी भी दो पहिए व्हीकल पर तीन व्यक्ति बैठे ना, क्योंकि आपको ओवरटेक करने में, बैक करने में, मोड़ने में दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो हमेशा दो ही बैठे, तीन बैठने की गलती ना करें। और हेलमेट की बात करूं तो आगे वाले के साथ साथ पीछे वालों को भी हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि चोट सिर्फ आगे वालों को नहीं लगती, पीछे वालों को भी लगती है, तो इस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। और फिलहाल एक मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के बाद, क्योंकि जब रीना बोलती है ना भैया, सच बताओ बहुत बोलती है लड़की। अब मैं इसको चुप कराती हूँ, फिलहाल आपको गाना सुनवाते हुए एक मेरे पास प्यारे मैसेज भी आ गए हैं, उनको भी शामिल करूँगी, लेकिन थोड़ा सा पहले गाना सुन लो यार।

हां जी डांस फ्लोर, आई नो मुझे पता है कि आप सब ठुमके लगा रहे हैं, साथ ही साथ आप ऑन द वे है तो हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहन लीजिएगा जनाब, क्योंकि मैं आपको याद दिला रही हूँ इसीलिए क्योंकि आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और ऐसा कैसा ना हो कि हेलमेट और सीट बेल्ट के बारे में आपको ना बताए, इम्पॉसिबल। और समय की बात करूँ तो 5:28 हो चुके हैं। और बात करते हैं 1 अक्टूबर से बहुत सी चीजों में चेंज आने वाले हैं, बदलाव सीधा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की, टीवी, फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे चीजों में जो इस्तेमाल घर पर किया जाता है, और ये क्यों महंगा हो रहा है, यानी कि कॉपर, स्टील और इनपुट बॉक्स बढ़ने की वजह से इनके जो भाव में बढ़ोतरी होने वाली है, यानी कि 3-8% की बढ़ोतरी आपको मिल सकती है। अगर वही बात करूँ, देखिए अब त्योहारों की खरीदारी यानी कि दिवाली के मौके पर हम सामान भी खरीदते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे कि टीवी, फ्रीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी चीजें खरीदने के लिए, तो आपके पॉकेट पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव की बात सामने आ रही है। कुछ मामलों में सब्सिडी पाने के लिए आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक जांच जरूरी हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की, अगर आप सोच रहे हैं तो इन चीजों का भी ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि TDS से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। प्रॉपर्टी को लेन देन, कागजी कार्रवाई और टैक्स से जुड़े नियमों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर मैं बात करूं बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट से नए दिशा निर्देश लागू हो सकते हैं, यानी कि UPI और ATM से जुड़े नियमों में बदलाव का असर हमारे रोज के लेन देन पर, इसका असर भारी पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से जुड़े इन बदलावों को हल्के में मत लीजिए। जेब, खरीदारी, गैस और बैंकिंग, इन सब पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 तारीख से कल 1 अक्टूबर है और चेंज होने वाले भैया। और साथ ही साथ देखिए सैलरी की हर किसी को इंतजार होती है, फिलहाल अगर आपको इंतजार है, अगर आपको अभी नहीं मिली है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी कैटेगरी में आते हैं। हम दोनों का जो प्रॉब्लम है ना, हम सभी के जो प्रॉब्लम है साथ में, दुख दर्द है ना वो साथ में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, आप मेरे साथ गल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आपको आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, सेम पटरी पर है, तो इसीलिए आप बताइए किस किस को इंतज़ार है कि भैया 1 तारीख है कल और सैलरी आने वाली है, जल्दी मैसेज करो भैया। नंबर है 9832378।

जिससे मैं करती हूँ प्यार।

0: अब तो आपको मिलना ही पड़ेगा, लेकिन किससे मिलना पड़ेगा वो मैं आपको। अगर भैया अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये बातें सिर्फ आपके लिए है। ट्रेन के सफर करने के दीवाने हैं तो ये नियम आपके लिए, क्योंकि देखिए दिवाली के टाइम, छठ पूजा के टाइम, यानी कि फेस्टिवल के टाइम जो ट्रेनों की भीड़ होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जो नियम है वो सख्त कर दिए गए हैं। यानी कि पहली बात तो ये है कि आप टिकट लेकर नहीं जाते हैं तो आपके पॉकेट पर जबरदस्त भारी भरकम यानी कि बजट पड़ने वाला है, जो खर्चा होएगा, जहां 100-200 में काम चल जाता वहीं 3-4 हजार आपको देने पड़ जाएंगे। रेलवे की तरफ से टिकट की खास जांच की जाएगी, यानी इस दौरान ट्रेन में टिकट चेक करने वाले कर्मचारी ज़्यादा सख्ताई जांच कर सकते हैं। अगर आपके पास यानी कि टिकट है, रेलवे पास है, किसी खास सुविधा वाला टिकट है, तो उसके साथ साथ आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए, यानी कि अपनी असली पहचान, ओरिजिनल आईडी अपने साथ ज़रूर रखें। आधार कार्ड, पहचान पत्र अपने साथ, मुझे लगता है कि जब भी आप कहीं जाए तो ये दो चीज़ें आपके साथ हमेशा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर रखने चाहिए, अपनी पहचान, आधार कार्ड ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि अब आधार कार्ड के बिना आपकी कोई पहचान नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये जब जहीं भी कहीं भी आप जाए तो ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेकर जाए। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन में सफ़र करें तभी लेकर जाए, आप जहाँ भी जा रहे हैं लेकर जाइए। क्या पता कब किस सिचुएशन में आप फंस सकते हैं और कब टाइम, कब आपका वो काम आ सकता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। अगर बात करूं वही टिकट पर, कोई लोग यानी कि सफ़र कर रहे हैं एक के साथ, बोलते हैं ना कि मेरे दोस्त के पास टिकट है, उससे चेक करवा लो, उससे चेक करवा लो, यानी कि टीटी को ही हम चकमा देते हैं, उसी को हम पागल बनाते हैं। लेकिन ये नहीं पता बेटा वो बहुत स्टडी करके वहाँ पे चढ़े होते हैं और वो हमारे कब आपके पॉकेट से पत्ते निकल जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए उनके साथ गेम खेलने से बेटर है कि आप टिकट अपना लेकर चढ़े, अपना आधार कार्ड अपने साथ रखें, ई पास या पीटीओ से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी असली पहचान पत्र अपने साथ रखना चाहिए। तो बात बहुत सीधी है, ट्रेन का टिकट है तो टिकट के साथ अपनी पहचान का असली कागज भी अपने साथ रखना होगा, ठीक है जी। ओरिजिनल आईडी अपने साथ रखिए। सिंपल फंडा ये है कि आपके पास टिकट है या नहीं है, लेकिन आधार कार्ड, ओरिजिनल आईडी आपके साथ होनी चाहिए। फिलहाल मेरे पास कुछ मैसेज है और हम हर बार यही बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है बार बार। इसलिए होता है कि हम टिकट लेकर नहीं चढ़ते हैं, ओरिजिनल आईडी नहीं रखते हैं। तो एक तरह से आपको जहाँ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि आप जितना सीख सकते हैं उतना आपके लिए कम। फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग रीना जी, आप जब भी इवनिंग मस्ती शो लेकर आती है शाम को, तो शाम का माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। आपके शो में हर बात नया सुनने, हर चीज़ नया सुनने को मिलती है, नए अपडेट सुनने को मिलते हैं, नए गाने अलग अलग तरीके से सुनने को मिलते हैं, और आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ें और साथ ही साथ आप श्रोताओं की जो फरमाइश है वो एकदम समझ जाती है, और गाने भी आपके बढ़ चढ़ कर रहते हैं। आपके इवनिंग मस्ती शो सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि पूरे दिन की थकान शाम को सच बताऊं खत्म हो जाती है, रिलैक्स फील करता है इंसान। और आप मैसेज भी बड़े खूबसूरती के साथ पढ़ती हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड आप आज का शो सुनने के लिए इंतजार, अब तो इंतजार खत्म हो गई सर, क्योंकि मैं कनेक्ट हो गई। अगले मैसेज की बात करूँ तो, गुड इवनिंग रीना जी, क्या हाल है आपके, उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी होंगी। हाँ जी, आज तो आपने शो की शुरुआत ही जो गानों से की है ना, क्या ही बात है, क्या बात है। पंजाबी गाने तो उसी अच्छे लगते हैं जी। चलिए कभी कभी हम प्ले कर दिया करेंगे। हेलो हरियाणा वालों, कैसे हो, गुड इवनिंग। हम तो बहुत बढ़िया हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। हम हैं पतले दुबले अच्छे खासे मस्त है जी। आप बताइए विक्की सागर जी कि आप कैसे हैं।
1: वो झुकने लगा
0: और रोड पर जो पट्टियों की लाइन आपने जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी दी है थैंक यू सो मच जी विक्की सागर जी ओके चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं उसके बाद में कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ मूवी से गाना सुनते हैं क्योंकि दिवाली का जो फेस्टिवल है पास में ही आने वाले हैं बहुत ही करीब है फिलहाल यानी कि एक महीना है अभी और किसी के जिंदगी में नए नए प्यारे प्यारे किसी प्यारी की आपकी जिंदगी में शुरुआत होगी तो ये गाना उनके लिए है तो क्योंकि आप हमेशा जब लाइफ में नया पर्सन आता है तो हमेशा यही बोला जाता है कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे तूने आकर उनको

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गुड वाली इवनिंग है यार जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। आई होप कि आज का मैच आप इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आज अगर मैं बात करूं भारत वर्सेज यानी कि स्विट्जरलैंड के साथ मैं वेस्ट इंडीज के साथ यानी कि भारत वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच हो रहा है जिसमें पहली यानी कि बैटिंग वेस्ट इंडीज ने की है और उन्होंने 7 विकेट में यानी कि 394 रन बना लिए हैं उन्होंने। ₹394 रन बना लिए भैया और अब देखना ये है कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम का पलड़ा आज भारी हो सकता है क्योंकि पहले ओडीआई मैच में तो हमारी टीम इंडिया ने अलग ही भौकाल मचा दिया था लेकिन इस सेकंड मैच में देखना है कि कौन सी टीम धमाल मचाती है क्योंकि भैया रन इतने बना चुकी हैं यानी कि 394 तो अब देखना ये है कि किस टीम का पलड़ा भारी होता है। और इसी के साथ अगला गाना भी बहुत ही शानदार है और हम आपसे ढेर सारी बातें करते रहेंगे। फिलहाल आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहूंगी कि जब पहली सैलरी आती है आपको तो आप सबसे पहले क्या करते हैं क्योंकि देखिए 31 तारीख खत्म होने के बाद 5 तारीख तक हर किसी की ऑलमोस्ट सैलरी आ जाती है तो आप सबसे पहले क्या डिसीजन लेते हैं जब आपकी सैलरी आती है तो जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ जी। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है।

0: को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को भी मंजूरी दी। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। आतंकी समूह के अन्य 3 सदस्यों जुनैद भट्ट को 2024 में, सुलेमान को 2025 में और यासिर को इस साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने 104 रन बनाए, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स टीम कंपाउंड ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

गढ़वाल इवनिंग है अर्जेरीना के साथ दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। 6:09 हो चुके हैं श्रोताओं और मुरादाबाद का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज, यानी कि अब मौसम करवट ले चुकी है, यानी कि सुबह धूप के साथ शाम होते होते जो टेम्परेचर है यानी कि 23-22 तक टेम्परेचर आ जाता है सुबह तक, क्योंकि सुबह का आज नज़ारा आप देखेंगे तो सुबह हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई। तो ऐसे में अपना ध्यान रखना है क्योंकि आता जाता मौसम बीमार करके ही सर जाता है। फिलहाल अगर मैं बात करूं मूवी की तो देखिए मूवी देखने के दीवाने हर कोई होते हैं, यानी कि द वन मूवी की बात करूं और हनुमान अंश मूवी की बात करूं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के टक्कर पर है। और अब वही तीसरी मूवी जो कि 3 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों में, यानी कि रिलीज होने से पहले ही 20 करोड़ के टिकट बुक हो चुके हैं। मतलब सोचिए अभी ये मूवी रिलीज नहीं हुई है लेकिन अभी से इतने टिकट्स है बुक हो चुके हैं, यानी कि 20 करोड़ के जो टिकट है वो बुक हो गए हैं। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 3 अक्टूबर की, जिसमें अजय देवगन को आप देखेंगे इस मूवी में। और इस मूवी का नाम है दृश्यम 3 मूवी रिलीज होने वाली है। अगर इसका पार्ट 1-2 आपने देखा है तभी थर्ड आपको दृश्यम 3 पार्ट समझ में आने वाला है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखे तभी आपको ये समझ सकेंगे अच्छे से। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर अभी तक आपने चालान नहीं भरा है, अगर आपका चालान कटा हुआ है तो उसका असर किस पर पड़ने वाला है किस पर नहीं पड़ने वाला है वो मैं बात करूंगी इसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

नेहा कक्कर की आवाज में बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओं, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजरीना, और आप सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती शो। और समय की बात करूँ तो 6:18 हो चुके हैं, और देखिए दिमाग का खेल इसको बोलते हैं, है ना। जब आपको पता है कि इंसान नहीं समझ पा रहा है, नहीं मान पा रहा है, तो वहाँ पर दिमाग से खेला जाता है, और जब आप दिमाग से खेलते हो तभी आपको अपने काम में आपको सक्सेस मिलता है। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि दिमाग से खेलने वाली बात क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए इंसान अंधेरे में तो रह नहीं सकता है। अब लाइट चली जाती है, रात को दिख नहीं पाता है आपको, मान लीजिए कि जाना हो कहीं और पैर कहीं और जाता है, तो अब इंसान रात को रहेगा तो रहेगा कैसे, और ऊपर से गर्मियों में, अभी तो फिलहाल देखिए ठंड की शुरुआत हो जाएगी, तो बिना पंखे के, बिना एसी के, बिना कूलर के रह ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर अब दिमाग से गेम खेला गया है कि जो भी चालान है आपके, अगर अभी तक आपने नहीं भरा है अपना चालान, तो वो इसका जो इंक्लूड है यानी कि बिजली बिल में कर दिया जाएगा, क्योंकि मंथली बिजली बिल भरना होता है, नहीं भरते तो यानी कि 2 महीने के बाद भर ही दिया जाता है ऑलमोस्ट। तो अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है कि जो ट्रैफिक चालान है, अगर आपका चालान कटता है और चालान नहीं भरते हैं तो वो बिजली बिल के साथ आपको भरना होगा, अदरवाइज बिजली कनेक्शन आपका काट दिया जाएगा। इससे देश में आपको कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा, यानी कि देखिए बिजली कट जाती है तो कुछ ना कुछ रास्ता तो हम खोजते ही है ना, ढूंढते ही है ना कि कुछ मिल जाए, कुछ भी हो लेकिन बिजली आ जाए घर में। तो अब आपने देखिए जो भी आपका चालान कटा है भर दीजिए, आज नहीं कल आपको भरना ही है, तो इंतज़ार किस चीज़ का करना है। अब ये जो रूल है उसको भी आप भरेंगे ही, फॉलो ही करेंगे, इसलिए पहले ही अपना सतर्क हो जाइए भैया, जो भी चालान कटता है उसको भरिए। और फिलहाल मुझे लगता है कि चालान कटवाना ही क्यों है, हर चीज़ का नियम पालन करिए ना, आप भी सेफ आप हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, ओवरटेक करेंगे तो चालान तो कॉमन बातें कटेगा ही। इसलिए हमेशा कहते हैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करनी, आपने जो भी काम कर रहे हैं सोच समझ कर करिए, ताकि आपको आगे जाकर कोई अपर उंगली ही ना उठाए। बात सिंपल सा फंडा ये है। तो बिजली के साथ यानी कि जो घर का बिजली है उसके साथ तो ट्रैफिक जो चालान है, जो आपका चालान काटा है, वो जुड़ेगा ही नहीं। वेरी सिंपल, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और आप भी हैप्पी, घर भी हैप्पी। तो करिए इस काम को, फॉलो करिए, जो चीज़ नियम है जो चालू किया गया उसको फॉलो करने में कुछ नहीं जाता है। फिलहाल हम क्रिस 3 से आपको गाना सुनवाते हैं बहुत ही शानदार, उसके बाद मैं आप सभी के लिए कड़क सवाल लेकर आने वाली हूँ, और कुछ मैसेज हैं उनको भी लगता है मुझे शामिल कर लेना चाहिए। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी, हेलो प्यारी प्यारी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो जय श्री राम, रीना जी क्या हाल है आपके, बहुत अच्छे जी। बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं हमारे साथ फिलहाल, सो स्टे ट्यून एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

जीन पाके ब्राउन रे बन लाके गली तेरी केड़ी मारे ऊपर चला के।

0: आरती जी। चलिए अब इसी बीच में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल। और आज का जो कड़क सवाल जो होने वाला है ना भैया, बहुत ही फैंटास्टिक वाला होने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं। और मुरादाबाद के चौराहे पर आप देखेंगे तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा भी हुआ आता है, साफ साफ लिखा हुआ होता है। तो आज मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, आप ऑन द वे हैं या फिर उसी जगह खड़े हैं जहां पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है मुरादाबाद के बारे में। तो आज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आपको पता है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप जल्दी मैसेज करके बता सकते हैं। वेल, अगर आपको नहीं पता है तो कभी आप चौराहे से निकले तो आप देख सकते हैं, दिल्ली रोड की तरफ से आ जाएंगे ना तो वो साफ साफ लिखा हुआ मोटे मोटे अक्षरों में दिखता है। तो आखिरकार क्या दिखता है और क्या लिखा रहता है, साफ बताऊं तो आज का हमारा कड़क साफ समूथ ये है कि आपको फुल फॉर्म बताना है MDA का। जी, बस इतना सिंपल सा काम है आपके लिए, MDA का फुल फॉर्म बताना है आपको। हमारा नंबर है 9837896896 पर मैसेज करिए और आपने बताना है आज MDA का फुल फॉर्म। अब देखते ये हैं भैया, सबसे पहले हमारे पास किनका राइट आंसर आता है, बाबा, क्योंकि हम मुरादाबाद में रहते हैं और MDA का फुल फॉर्म नहीं पता हो तो गलत बात है जी, जरा सर गलत बात है। सोचिए और बताइए, फिलहाल और भी ढेर सारी बातें हैं मेरे पास, वो भी हम बात करेंगे आप सभी के साथ, लेकिन यहाँ पर लेती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक। वंस अगेन आज का कड़क सवाल ये है कि आपको MDA का फुल फॉर्म बताना है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

मैं बताती हूँ जी, इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? सोचिए कि अगर आप अपने फेस बॉडी का केयर नहीं करते हैं तो कैसे आप खूबसूरत हो सकते हैं? खूबसूरत तो वो होता है ना जो अपनी बॉडी की केयर करता है, अपने फेस का ध्यान रखता है, खाने का ध्यान रखता है, जंक फूड नहीं खाता है, घर का खाना खाता है, हेल्दी खाना खाता है, फ्रूट्स अपने डाइट में शामिल करता है, जूस अपने डाइट में शामिल करता है, तो वो खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ये शाम बड़ी खूबसूरत है और आपके साथ आपकी अपनी आरजू रीना है, और समय की बात करूँ तो 6:39 हो चुकी हैं और आज हम बात करने वाले हैं। फिलहाल बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऑन द वे हैं, ट्रैफिक में हैं, तो गांगन की तरफ से अगर आप जा रहे हैं, दिल्ली रोड की तरफ से, गांगन की तरफ से, तो आपको वहां पर भरपूर मात्रा में भर भरकर जाम मिलने वाला है। तो फिलहाल अगर आप जा रहे हैं तो एक बार सर्च लोकेशन जरूर करें, अदरवाइज भैया आप बोलेंगे कि यार धत तेरी की, ऑफिस से निकला हूं और ऊपर से इतनी ट्रैफिक जाम, मतलब आधा मूड तो आपको वहीं खराब हो जाएगा। इसीलिए मूड खराब नहीं करना है, बस रेडियो की जो वॉल्यूम है वो बढ़ानी है और मुझे ट्यूनिंग करना है और सुनते रहना है, क्योंकि आपकी शाम और शानदार हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं, आज का जो डे है बहुत ही स्पेशल डे है, इसके ऊपर बात करनी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है।

आज मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांजिशन डे, ट्रांसलेशन डे, यानी कि अब ये क्या है मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में। मान लीजिए हमें किसी दूसरे देश की भाषा समझ नहीं आती, लेकिन वहां की कोई जरूरी जानकारी हमें जाननी है, ऐसे में अनुवाद करने वाला इंसान उस बात को हमारी भाषा में समझाता है, और जो बात दूसरी भाषा में कही गई उसे हमारी समझ वाली भाषा में समझाता है। क्योंकि देखिए, जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं और उधर की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, लेकिन कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाता है जो आपको आपकी अपनी भाषा में उस चीज़ को कन्वर्ट करता है, समझाता है, ताकि आप आसानी से समझ जाते हैं। इस काम को सम्मान देने और ये बताने के लिए कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, हर साल यानी कि 30 सितंबर को इंटरनेशनल यानी कि अनुवाद दिवस मनाया जाता है। हिंदी में बोलूँ तो अनुवाद दिवस। कोई भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भाषाएं और इंसानियत की भाषा एक जैसी होती है। तो आज का डे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, और एक दूसरे की हेल्प करिए। जब किसी को भाषा समझ नहीं आती तो समझाने की आप कोशिश करिए। और गांगन की तरफ से आप जा रहे हैं तो आपको भरपूर मात्रा में ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि हमारे एक आरजे है रात के, जो दिल की बातें दिल तक करते हैं, उनका कॉल आया था अभी और उन्होंने बताया, तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करें। और आज का कड़क क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है, MDA का फुल फॉर्म बताना है। अगर आप गांगन की तरफ से आप जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए दिख जाएंगे भैया। दिल्ली रोड की तरफ से आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको मोटे मोटे अक्षरों में दिखता है MDA का फुल फॉर्म। तो आपने फिलहाल अभी मैसेज करके बताना है कि MDA का फुल फॉर्म क्या होता है। आज का कड़क सवाल यही आप सभी के लिए, सोचिए और मैसेज करिए। और फिलहाल एक गाने में आपके सभी के लिए प्ले करती हूँ, बहुत ही शानदार वाला जो मेरी प्लेलिस्ट में है, तो मैंने सोचा कि प्ले कर देती हूँ। ओके, बाय द वे, आप मैं कहती हूँ जी, आप कहीं भी जाए लेकिन सवाल का जवाब जरूर देकर जाए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:50 हो चुके हैं मेरी रेडियो की घड़ी में। बाकी आप बता सकते हैं कि आपकी घड़ी में समय बता सकते हैं कितना समय हुआ है? ये तो नहीं कि 51 हुआ है, मेरे इधर 50 हुआ है। जरा देख लीजिए, एक बार सर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है। इवनिंग मस्ती सो मी। और आज का कड़क सवाल भैया मैंने आप सभी से बहुत ही आसान वाला पूछा है, लेकिन पता नहीं कि आप किधर कंफ्यूज रहते हैं। अरे बाबा, लेकिन सच बताओ, कोई कोई ना अपनी आदत से मजबूर होता है। अब आदत से मजबूर क्यों होता है, मैं ये किस लिए बोल रही हूँ कि फोन ना चलाए तो उनका मन ही नहीं लगता है, बॉडी में सनसनाहट, वाइब्रेशन, सब कुछ शुरू हो जाता है अगर उनके हाथ में फोन ना हो तो। गाड़ी चलाते चलाते भैया टाइपिंग कर लेते हैं, ये तो जरा सर गलत बात है। बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं करना है आपने, कोई फोन नहीं देखना है, नोटिफिकेशन आए तो उसको बंद कर दो। जब तक आप गाड़ी चला रहे हो बंद करो यार, थोड़ा सा रिलैक्स मिलो, एंजॉय करते करते ड्राइविंग करो। फोन को बोलो टाटा बाय बाय, या रेडियो बोलो ओपन कर लेते भैया और रेडियो सुनते, मजा आएगा आपको। खैर, आज का मैंने आप सभी से कड़क सवाल भी पूछा है, बहुत ही शानदार वाला। तो आज आपने मैसेज करना था हमें कि अहो, MDA का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? तो इसके लिए हमारे साथ एक लकी कॉलर को मैं पकड़ के ले आई हूँ, तो उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। हेलो,
1: हेलो।
0: जी नमस्कार,
1: हाँ, नमस्कार
0: कैसे?
1: नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: मैं तो 79 साल की उम्र में आपका प्रोग्राम सुनते रहते, कभी कभी लगता है कभी नहीं लगता। आपका पूरा MBA का फुल फॉर्म पूछा आपने तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, मैंने बता दिया आपको।
0: अरे तो आप बताइए ना।
1: मेरे पास मैसेज मेरे पास
0: कोई बात नहीं सर, आप बताइए, ऑन एयर सब आपको सुन रहे हैं, आप MDA का फुल फॉर्म बताइए।
1: एरिया
0: अथॉरिटी, ओके एरिया, ओके जी, थैंक यू सो मच।
1: सही है, सही
0: नहीं, एकदम ट्रेन की पटरी सीधी है सर।
1: है। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो मच सर कि आपने कॉल किया। कोई बात नहीं सर, मैंने आपका नंबर पहचान लिया है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि राइट आंसर है। ठीक है, जी, चलिए अब हम आपको धन्यवाद बोलना चाहते। बाय सर, थैंक यू। चलिए, इतना ही आशीर्वाद मिलना चाहिए, जीते रहो और जीते रहेंगे हम जब तक है सांस, इस सांसों को थाम के रखेंगे। फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ रहे हैं।

0: देखिए जी, मोहब्बत में कभी भी बेताब नहीं होना है। अगर आप बेताब हो गए तो दिल के चूर चूर हो जाएंगे, जैसे सीसा टूट जाता है ना, उसको जोड़ने में वक्त लगता है। इसीलिए ज्यादा बेतावला नहीं होना है आपने, उतावले पर नहीं आना है आपने। बस अटैचमेंट जो होता है ना, जिसको बोलते हैं अटैच हो जाना, तो उसको थोड़ा सा कम करना है आपने। क्योंकि जब अटैचमेंट हो जाता है ना, तो इंसान रह नहीं पाता एक दूसरे के बिना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको भी पता है। चलो फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मेरे पास आता है वॉइस मैसेज। मधुर आवाज इनकी सुनते हैं। फिलहाल मधुर आवाज बोलने के चक्कर में मेरी आवाज ही डाउन होने वाली थी। चलिए इनकी आवाज।
1: आज का कड़क सवाल ये है कि आप
2: MDA का मतलब है मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी।
0: लेकिन सर आपने अपना नाम नहीं बताया, ये तो जरा सर गलत बात है, एकदम गलत बात है। आपको अपना नाम भी बताना चाहिए था। और इनके लास्ट नंबर है भैया 5583, ये समझ गए होंगे, इनकी आवाज इन तक पहुंच गई है। और अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, और इनका भैया राइट आंसर आता है। हिंदी में बोलती हैं ये, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण। ओके। विक्की सागर जी का कहना है कि विकास तरक्की। ओके। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ विपुल जी कनेक्ट होते हैं राइट आंसर के साथ। और अगले मैसेज की बात करूं तो रूपाली जी कनेक्ट होती है राइट आंसर के साथ। और ये हमारे साथ शिवम कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि अभी मैं ऑन द वे हूँ, और जो आपने बोला है मोटी मोटी अक्षरों में लिखा हुआ, तो मैं वही हूँ, और जैसे आपने बोला मेरा ध्यान वही गया। अरे क्या बात है, ये होती है दिल का कनेक्शन दिल तक, जैसी बोलो तीर चला दो। चलिए फिलहाल हम यहाँ लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। और आप सभी ने राइट आंसर दिया है, तहे दिल से आप सभी के लिए थैंक यू सो मच कि आप सभी समय निकाल कर, टाइम निकाल कर रेडियो सुनते हैं, मैसेज करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि रेडियो आपके बिना अधूरा है और हमारे बिना अधूरा है, तो दोनों मिल जाते हैं तो एकदम भौकाल मचा देते हैं। इसी भौकाल के साथ बाय-बाय टाटा टेक केयर, एक बहुत ही शानदार गाना मैं प्ले करूंगी आप सभी के लिए, सो इस गाने को सुनिए। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, बाय।
3: अपने घर ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1779 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो UPI डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
7: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और

0: और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
1: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
0: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
1: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
0: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
1: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
0: अब बारी है मेरठ की मशहूर गज्जक की। गज्जक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
1: बहुत लोग रेवड़ी और गज्जक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है जबकि गज्जक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
0: यह सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
1: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
0: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
1: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
0: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंसी की ओर जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
1: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
0: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
1: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
1: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
0: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
5: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
5: अच्छा?
7: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की स्वीकृत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्नदाता की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण। कहा, सरकार ने दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को किया मजबूत। और राज्यसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने भरा पर्चा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुसुम के लिए एमएसपी में सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए एमएसपी 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
1: कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं।
0: केंद्रीय कैबिनेट के रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी के फैसले पर जौनपुर के किसान राजेश ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा।
2: लगभग सभी प्रकार की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि से किसानों के जीवन स्तर और कृषि का जो विकास होगा उससे भारत का गांव, गरीब और किसान लाभान्वित हो। मैं मोदी सरकार और उनके समस्त मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूँ।
0: मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का ट्रांसमिशन संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और लाभकारी मूल्य मिलेगा। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में प्रमुख दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद के लिए 5,547 करोड़ 99 लाख रुपए को मंजूरी दी है। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,992 करोड़ 57 लाख रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें 3,937 करोड़ 70 लाख रुपए मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन अरहर और 54 करोड़ 87 लाख रुपए मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग शामिल है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 509 दिव्यांगजन को 664 सहायक उपकरण वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 17 लाख से अधिक दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को मजबूत किया है।
4: 17 लाख से अधिक जो दिव्यांगजन है उनकी डिजिटल पहचान को मजबूत करने का कार्य किया है और इन्हें उनका कार्ड भी उपलब्ध करवाया है। हमारा प्रयास है कि 2026-27 को इस जो वर्ष है, इस वर्ष में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांगजनों को पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम के लिए शिविर लग सके।
0: प्रदेश के 9 केंद्रों पर आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में वर्षा के कारण बदलाव किया गया है। पहली अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब 8 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार जिन नौ केंद्रों पर परीक्षा की तारीख बदली गई है उनमें 12वीं वाहिनी पीएससी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली, 9वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर, 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ, 47वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी पीएससी आजमगढ़ और 39वीं वाहिनी पीएससी मिर्जापुर शामिल है। पहली अक्टूबर के स्थान पर 8 अक्टूबर को परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने आज लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
6: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के हर युवा को शिक्षा का समान अवसर देना है।
7: राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को शिक्षा के समान अवसर मिले। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए।
6: सीतापुर के ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति व्यवहारिक, कौशल आधारित और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने वाली है।
8: इस नई शिक्षा नीति से कौशल विकास के कार्यक्रमों में तकनीक का प्रयोग और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया।
6: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। दीपक श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सीतापुर।
0: बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा, बाराबंकी में घाघरा और बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद राहत आयुक्त डॉ ऋषिकेश भास्कर यशोद ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 बाढ़ चौकियां और 16 राहत शिविर स्थापित किए हैं। वहीं अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
9: जहाँ पर ऐसा था कि नदी और बंधे के बीच में लोग बसे हुए हैं, वो बंधे पर ले जाया गया है। बाढ़ शरणार्थ स्थल जो है ले जाया गया, वहाँ उनकी सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही है। लगातार हम लोग वॉच कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई शिकायत अभी नहीं आई है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की स्वीकृत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्नदाता की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण। कहा, सरकार ने दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को किया मजबूत। और राज्यसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने भरा पर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
11: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
12: लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
13: क्या बात है।
12: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंगल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
13: जी जी प्लीज।
12: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
13: ब्यूटीफुल।
12: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
13: Alright.
12: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
13: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है।
12: जब बेबी डिलीवर होता है एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है हेल्दी है तो क्या करते हैं फैमिलीज,

0: ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: हम
1: जी.
0: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
1: ओके।
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, तो
1: जी जी।
0: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ कुछ जगह अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स में
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता,
1: पता
0: है,
1: होता
0: क्या
1: है।
0: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है, वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ,
0: उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना, बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है, तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में

0: ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है,
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात कर रहे हैं, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी, मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप एक क्या संदेश जाते जाते।
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी।
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
1: जी जी।
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है।
1: हाँ जी हाँ।
0: ठीक है। या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ई वॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को और मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने फैसले को स्थगित किया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
4: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
3: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए एमएसपी 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं के लिए 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली ITMS को अपनी मंजूरी दे दी है। ITMS का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को वास्तविक यातायात स्थितियों के मुताबिक सक्षम बनाकर मौजूदा उपलब्ध सड़कों का बेहतर उपयोग करना है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नीति अनुसंधान और शासन केंद्र द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ईवॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना सिर्फ परिवहन में बदलाव नहीं है, बल्कि इससे ऊर्जा विनिर्माण और शहरी नियोजन में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और पीएम ई ड्राइव के सहयोग से भारत एक मजबूत और स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र को तैयार कर रहा है। श्री संधू ने कहा कि स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, भरोसेमंद चार्जिंग सुविधाओं और आसान लास्ट माइल कनेक्टिविटी से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बेहतर होगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा, यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान पेरू की संसद का दौरा किया। दौरे में श्री गुप्ता ने पेरू के सीनेटर विक्टर सेफरिनो फ्लोरेस रुइज के साथ चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने सीनेटर फ्लोरेस रुइज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और नेतृत्व पर आधारित पुस्तक द पावर विदिन भी भेंट की। इस संवाद ने भारत और पेरू के बीच आपसी समझ और सहभागिता को मजबूत करने में संसदीय और संस्थागत आदान प्रदान के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। इस दौरे का केंद्र संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन से संबंधित विषय रहे। ये संवाद दोनों विधायिकाओं के बीच व्यापक स्तर पर संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान का हिस्सा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भाजपा को जानो के अंतर्गत आज श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी जनता विमुक्ति पेरेमुना JVP के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से बातचीत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ शासन और जनसेवा से जुड़े अपने विचार साझा किए। इस दौरान दिल्ली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कार्य पद्धतियों और 10 प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका में इसी तरह की पहल और शासन से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रीलंका संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था से भी जुड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित विकास भवन 2 में AI प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेंटर को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को AI और उभरती हुई नई तकनीक की प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी अधिकारियों को अपने रोजमर्रा के काम में AI को अच्छी तरह समझने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। साथ ही गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के जरूरी मानकों को बनाए रखना भी उन्हें सुनिश्चित करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में सफाई मित्रों, स्वच्छाग्रहियों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर केंद्र का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण दिल्ली सरकार का संकल्प है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सफाई मित्र अपने परिश्रम और सेवा भाव से हर दिन दिल्ली को और स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। उनकी कर्म निष्ठा ही स्वच्छ दिल्ली की शक्ति है।
7: जितनी आपकी जिम्मेवारी है उतनी ही दिल्ली के हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है, हर एक अधिकारी की जिम्मेवारी है कि हम सब की जिम्मेदारी है और मिल करके दिल्ली को सबसे साफ, सबसे सुंदर शहर बनाना यही हमारा ध्येय है।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज मालवीय नगर में गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में 20 फायर रिस्पांस मोटरबाइक और 26 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का ये संकल्प है कि राजधानी के हर नागरिक को आपात स्थिति में तेज, प्रभावी और पेशेवर अग्निशमन और बचाव सेवा उपलब्ध हो।
8: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय और दिल्ली की बढ़ती आबादी के साथ फायर सुरक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और तेज प्रतिक्रिया क्षमता से लैस करना आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इसी दिशा में दिल्ली फायर सर्विस की क्षमताओं को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य दिल्लीवासियों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाना है। उन्होंने बताया कि फायर सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास इसी व्यापक संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ तेज प्रतिक्रिया क्षमता, रणनीतिक तैनाती और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से दिल्ली की आपातकालीन सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गीतांजलि फायर स्टेशन के संचालन के साथ दिल्ली फायर सर्विस के कार्यरत फायर स्टेशनों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। यहां 16 अग्निशमन कर्मियों के साथ एक छोटा फायर टेंडर, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल और आवश्यक अग्निशमन और बचाव उपकरण उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
3: भारतीय रेल द्वारा जल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और जल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ जल की गुणवत्ता के अंतिम स्तर पर जांच तक सीमित न रहकर यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख महिला महाविद्यालयों के प्राचार्य, कुलपति, दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य महाविद्यालयों के कैंपस और उसके आसपास छात्रों की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में भारतीय रक्षा संपदा सेवा आईडीईएस के 2025 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने प्रोबेशनरी अधिकारियों से कहा कि वे रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देते हुए ईमानदारी, दृढ़ता और जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशभर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनके हितों की रक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि देशभर के लाखों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और लगभग 20 वर्ष

0: वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद दिया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कर रहे थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अंग्रेजी में आकस्मिक समाचार संपादक और वाचक के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं newsonair.gov.in से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में एक बैठक में आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लक्षित रूप से कम करने के लिए संबंधित एनसीआर राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जा रही तैयारियों, कार्यान्वयन और अनुपालन उपायों की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ई वॉल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
5: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है, प्रोग्राम आपका फेवरेट है। आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ एक बार फिर से एक बहुत ही कमाल की सुपर डुपर अमेजिंग टैलेंटेड लेडी मौजूद हैं। एंड मैं डॉक्टर इनको बाद में बोलूंगा, पहले टैलेंटेड बोलूंगा क्योंकि बहुत कमाल का काम कर रही हूं। सिर्फ अपनी हॉस्पिटैलिटी ये हॉस्पिटल में नहीं, इंस्टाग्राम पे भी देती है बहुत अच्छे तरीके से। जब फर्स्ट आई थी तो मेरे को लगा नहीं था कि इतनी मल्टी टैलेंटेड मैम है, मतलब वो तो है ऑफ कोर्स, लेकिन इतनी सुपर वाली होंगी ये नहीं पता था। चलो मैम का तारुफ तो मैंने करा दिया है, लेकिन अभी उनके स्टाइल में जरा उनका हालचाल तो जान ले भाई, क्योंकि सब कुछ मैं बोलूंगा तो वो क्या बोलेंगे। हेलो मैम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वार्म वेलकम है आपका।
6: हेलो,
5: जोरदार तालियां प्लीज मैम, टेल मी कैसे हालचाल?
6: मैं बढ़िया हूँ। और आज हम कहाँ हैं? हम हैं 89.6 FM पे, और ये है दूसरी बार हम आए हैं। और क्या करने आए हैं बताइए आनंद जी, हम क्या करने
5: आज मैम के साथ में बहुत सारी बातें करूंगा। देखो यार, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं है, बट होने वाली है वेरी वेरी सून, तो मैंने सोचा मैम को बुला के पहले थोड़ी सी ना ट्रेनिंग ले लेता हूँ मैं।
6: आज हम आपको ही, आपका प्री वेडिंग होता है ना, उसी तरह प्री नर्सिंग शूट करने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि बच्चा होने का प्रोसीजर क्या है,
5: गॉड
6: कैसे कराया जाएगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, किस किस केस में क्या कराया जाएगा, भाई आपके सारे डाउट्स क्लियर कर।
5: मुझे मारो, ये सीरियस है भाई। वेल, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, और इसी जोक सपाट और अच्छी बातें होंगी। देखो, काम के साथ साथ ना थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली बातें होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो है, यहाँ पे हम आपको सुनाई दे रहे हैं, और शायद आप हमें मन की आंखों से देख भी रहे हो, क्यों मैम? और मजे की बात पता क्या है, डॉक्टर आशिका मैम ना सिर्फ जानकारी अच्छी नहीं देती, बोलती भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप सुनोगे तो आपको लगेगा वो दूसरी अनाउंसर है मेरे साथ बैठी हुई है। लास्ट टाइम वो बहुत अच्छा बोल के गई थी आपको, मैं वो क्लिप जरूर दिखाऊंगा, मेरे फोन में आज भी सेफ है। अच्छा मैम, अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ वर्किंग है एंड आपका नाम वगैरह थोड़ा बता दूं।
6: जी, आई एम डॉक्टर आशिका गुप्ता, मैं पास आउट हूँ एएमयू की, प्रोडक्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड पीजी फ्रॉम देयर, एंड अभी मैं जो प्रेजेंटली वर्किंग हूँ एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद, जो कार्ट रोड पे है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट।
5: दैट्स वेरी नाइस। एक खास बात ये थी यार, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर आशिका मैम का नाम पहले आ जाता है। ऐसा क्या बोला था हम दोनों ने लास्ट टाइम जो लोग इतना याद रखते हैं?
6: यार पता नहीं, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये डॉक्टर।
5: कंफ्यूज तो नहीं हुए हैं भाई, वो सीधा सीधा आपका नाम बोलते हैं, और अभी और कोई आशिका मेरे साथ में आई नहीं है यहाँ पे, ये भी सच है। मतलब शायद हमने कुछ तो अच्छा बोला होगा, शायद
6: अच्छी बात है, इट इज गुड फॉर अस ना, कोई बात नहीं,
5: ये अच्छी बात
6: करेंगे। मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है कि बार बार साथ आने का।
5: मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम दोबारा आए तो शायद इस बार और ज्यादा लोग याद करें, कुछ ऐसा अच्छा करते हैं, राइट? ओके, सो आज मैम हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं सिजेरियन के बारे में, बहुत सारी बातें मुझे जाननी है और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो आज ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने वाली हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्या आजकल सिजेरियन जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्यों, उसका रीजन क्या है मैम, क्या लगता है?
6: एक्चुअली यस, सिजेरियन का रेट तो बढ़ ही गया है ना। अब रीजन में तो देखिए दोनों बहुत सारे रीजन है, बट मेजरली जो रीजन है ना, एक तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे, ठीक है,
5: सही बात है,
6: खान पान में बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें थी, अब हमने आर्टिफिशियल चीजें ये सब इन्वॉल्व कर ली हैं। प्लस हम जब पेशेंट को आजकल एडवाइस करते हैं तो वो पूछते हैं कि मैम एक्सरसाइजेस बताइए कि किससे नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन ये पुरानी लेडीज का रूटीन था, कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ रहा था, उनका जो काम करने का तरीका था वो इसी तरह का था कि पेल्विक फ्लोर खुलता था,
5: ठीक है।
6: प्लस थोड़ी पुराने जमाने की लेडीज रफ एंड टफ हुआ करती थी, अभी हमारी जनरेशन थोड़ी छुई मुई है,
5: और हमारी वाली क्या होगा पता नहीं।
6: हाँ जी, एग्जैक्टली, कोई तीसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा अब डिलीवरी का, नॉर्मल सिजेरियन
5: एआई आ गया है ना,
6: ऑप्शन डिलीवरी
5: ऑप्शन आ रहा है अभी, लाइन लाइन में है,
6: तो इट इज ऑल दैट, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही आप मान लीजिए।
5: ओके ओके,
6: तो प्लस लास्ट टाइम पहले लोगों के पास सिजेरियन के इतने ऑप्शन नहीं रहते थे, ऑप्शन ही नहीं है, आपको कराना ही नॉर्मल डिलीवरी है, घर पे देके या जैसे भी कराना है वो हो जाती थी, है ना। दूसरी चीज, आप अपनी दादी नानी को कभी टटोलना तो बताएंगी वो आपको अपनी हिस्ट्री की, बेटा मेरे ना 10 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, अभी 8 मेरे पास थे, ठीक है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं है, 2 चले गए, 8 है
5: मेरे पास।
6: बट आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, दे वॉन्ट 2 हेल्दी चिल्ड्रन। तो ये एक गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि यार बाय दिस वे या दैट वे वी हैव टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी, क्योंकि हमारे पे बेबी के रिगार्डिंग हमारे से कोई भी मतलब कोताही बर्दाश्त ही नहीं है, तो फिर हमें भी एक प्रेशर रहता है, उस अंडर प्रेशर में हमें 100% रिजल्ट देना है, तो उस अंडर प्रेशर में भी थोड़े से सिजेरियन का रेट इंक्रीज हो जाता है।
5: ऑल राइट, सो आई होप गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया होगा मैम ने। अच्छा एक और चीज है मैम, अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आज भी कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई क्या, तरीके की सुनने को मिलती है हमें चीजें, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस खुद भी पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन,
6: इट इज अ प्रेशर है ना, मतलब आजकल प्रेशर हो गया है, और ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके फायदे और नुकसान दोनों है। तो आप किसी की नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी देख ली हमने कि यार उसने तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, बट आई वुड से कि देखो हर बॉडी अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है, हर किसी की इंडिकेशन अलग है, तो इट इज नॉट कम्पेरेबल कि किसी की हो गई है तो आप दूसरी लेडीज को भी प्रेशराइज करना शुरू कर दें। अब एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, है ना, आपको भी पता है, आई हैव ट्विंस, ठीक है, दोनों बच्चे मैंने ही जन्मे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, सिर्फ 1 मिनट का फर्क है, बट दोनों की प्रेफरेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है, किसी को पसंद है किसी को नमकीन पसंद है, तो जब एक माँ के 2 जन्मे बच्चे एक से नहीं हो सकते तो 2 लेडीज की प्रेगनेंसी एक से कैसे हो
5: सकते हैं? एग्जैक्टली,
6: सो इट इज ऑल इंडिकेटेड, हर किसी का अलग अलग इंडिकेशन होता है, और नेचुरल डिलीवरी तो ऑब्वियसली सेफ डिलीवरी है, जो नॉर्मल डिलीवरी है तो हम उसे एनकरेज करते हैं, बट स्ट्रिक्टली ये कहना कि यार नहीं यार नॉर्मली कराना है ये एम नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए एक हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा।
5: ऑलराइट, अच्छा मैम उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ तो उसके पीछे रीजन ये भी है कि पहले का खान पान जैसे आपने अभी इंक्लूड भी किया कि बहुत डिफरेंट था, आजकल का खान पान बहुत अलग है, है ना। आजकल मैं आपकी वीडियो में भी देखता हूँ कि आज पपीता खाने का मन है तो क्या खाना चाहिए नहीं चाहिए, आज टिक्की खाने का मन है खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए,
6: ये अब हमें बताना पड़ रहा है आनंद जी, ये सब चीजें तो मतलब बताने की थी ही नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, हम लोग सनातन धर्म है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ, तो ये सब ये हमारे
5: मुझे इसलिए भी हंसी आ रही मैम सॉरी सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप बताइए, अब ये चीज और रहेगी थी लोगों को बतानी।
6: मेरी पिज्जा की वीडियो है, हाँ, 1.3 मिलियन,
5: वही सबसे ज्यादा वायरल हुई
6: है ना। हाँ। अब उसमें कुछ बताने की बात तो थी नहीं कि आप पिज्जा ना खाएं, बट लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि पिज्जा खाना है कि नहीं खाना है। लोग ये शेयर कर रहे हैं क्यों, क्योंकि लोग खा रहे हैं। तो हस्बैंड्स आर शेयरिंग टू देयर वाइफ, यार एक गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है नहीं खाना है, या फिर इसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो उन्होंने बताए। तो आप ये देखो, ये चीजें इस लेवल पे बातें करनी पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली ये तो माँ को पता होनी चाहिए, है ना। तो फिर सारा अब प्रेशर लास्ट में कि नॉर्मल, जब स्टार्टिंग से ही प्रोसेस हुआ तो हमने बेड रेस्ट किया, हमने प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से कंसीव करी, अब लास्ट पे बर्डन माँ पे डाल के इट इज नॉट वेरी, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सेफ माँ सेफ मदर, बस दैट शुड बी द गोल।
5: बहुत बढ़िया मैम, मुझे ऐसा लगता है ना इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, आपने कहा अभी कि बहुत सारे लोगों को ये चीज बतानी पड़ रही है हमें, है ना, स्पेशली लेडी को, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इतना सुपर फास्ट है, लड़कियों के पास टाइम नहीं है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं मोस्टली, है ना, तो उनको शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट आप लोग जो उनको कहीं ना कहीं एक राइट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई ये चीज अगर आप ले रहे हो तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक सही इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर हो रही है। और प्लस सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है कि वो अच्छी चीजें भी दिखा रहा है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे देख के कुछ भी अलूल झुलूल बातें करने लगते हैं नॉर्मल थोड़े से व्यूज के लिए, बट उससे किसी की बॉडी पे किसी की लाइफ में बहुत फर्क पड़ सकता है।
6: एक्चुअली एक्टिव भी डॉक्टर्स को इसीलिए होना पड़ा क्योंकि वो जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना
5: 100%
6: इंस्टाग्राम पे, तो वी हैव टू काउंटरैक्ट दैट। मतलब बिना डिग्री के कुछ भी, वहाँ डिग्री तो चाहिए नहीं, तो एवरीबॉडी इज टेलिंग देयर वेज, तो वी आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू कि भैया ये दिस इज द राइट।
5: एग्जैक्टली, और मुझे लगता है कि बहुत ही सही है मैम, और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे अच्छे लोग ये चीज इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मिथ दूर होंगे, और सिर्फ लेडी के क्यों, जेंट्स के भी बहुत जरूरी है मैम, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम तो ऐसा है भाई, हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मैम इसी बीच एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे, कई पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार डॉक्टर ने सिजेरियन क्यों बोल दिया, क्या उन्हें जल्दी थी या क्या था, मतलब रीजन आ जाता है ऐसे थॉट्स, हस्बैंड भी बीवी भी सबके मन में आता है।
6: ये बात सही है कि लोग बोलते हैं यार उसे जल्दी थी इसलिए सिजेरियन करके निपटा दिया।
5: हाँ एग्जैक्टली,
6: बट मैं आपको बताऊं जब हम गायनेकोलॉजिस्ट बने थे वी हैव बीन पास आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना, तो हम जब हुए थे हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है ना, हमें बता दिया जाता है कि भैया अब तुम्हारे जीवन में कोई जल्दी काम बचा नहीं है। अभी मैं आपसे बैठी हूँ, अभी 5 मिनट बाद मेरे अटेंडेंट का फोन आ सकता है कि मैम एक पेशेंट लेबर में आई है, तो आई हैव टू रन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अब हमारे लाइफ में हमारे लिए टाइम बचा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नर्सिंग होम नीचे हो ऊपर डॉक्टर्स रहते हैं, तो उन्हें क्या जल्दी है आप मुझे ये बताइए, उनको तो इट इज अ फुल टाइम जॉब ना, पूरे दिन का जॉब। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी थी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम मदर और बेबी को सेफ डिलीवर कराना चाहते हैं, तो बहुत सारे कभी कभी लेबर प्रोग्रेस करते करते बच्चे में डिस्ट्रेस हो जाता है तो सिजेरियन लेना पड़ता है, कभी कभी बेबी की पोजीशन खराब हो जाती है तो सिजेरियन लेना पड़ता है, प्लेसेंटा को कोई फैक्टर होता है जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीटा है प्रीविया है तो हमें सिजेरियन के लिए लेना पड़ता है। तो जल्दी नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा सा हमारा आपसी आप समझिए तालमेल की कमी है। अगर आप 9 महीने किसी के वो पेशेंट हैं और आपको उन्होंने डील किया है तो आपका उनसे कनेक्शन हो जाता है, तो कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं करेगा कि अनइथिकली जाके आपको भैया डायरेक्ट सिजेरियन के लिए बोल दिया, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि जल्दी की वजह से हम करते हैं, इट इज ओनली टू डिलीवर अ सेफ मदर एंड अ सेफ।
5: वेरी नाइस, तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये डेफिनेटली ऐसी चलती रहेगी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी डॉक्टर राशिका जी हमारे बीच में है तो ऑफकोर्स काम की बातें होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट भी आती भी होनी चाहिए ना। मैम देखिए अपने हॉस्पिटल से निकल के मेरे रेडियो हॉस्पिटल पहुंची है जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करती है, जरा जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ऐसा मेरे मन में भी होता है कि डॉक्टर गाना सुनते होंगे, तो किस तरह का म्यूजिक अभी हमारे लिसनर्स को आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे, वो वही गाना प्ले करेंगे अभी हम, आपका फेवरेट कोई अच्छा सा गाना बता सकते हो। अभी आपको पता है इंस्टाग्राम पे 80 वाला ट्रेंड कम बैक कर रहा है।
6: हाँ 80s वाला कर रहा है, मैं भी बनाने वाली हूँ, रिसेंटली बनाने वाली।
5: मैंने वही भी देखा आपका, मैं सब कुछ तो आ गया यार, मैम का भी नहीं आया
6: आएगा, बट देन अभी आप गाना बजाओ कोई
5: कोई मदर से रिलेटेड हो। ओके, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सुना है आपने गाना?
6: नहीं यार, ये मदर से रिलेटेड है, डिलीवरी ऊपर मैं नीचे। अरे
5: सॉरी यार, अभी ना एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा है।
6: अरे वो वाला बजाते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है,
5: कौन सा?
6: हनुमान जी वाला,
5: पार्वती ट्रेंड है। हाँ बहुत ट्रेंड में है अभी वो हनुमान अंश का ना। गाइज देखो, हम भले ही रेडियो वाले हैं लेकिन हर गाने की इन्फॉर्मेशन हमें जरूरी नहीं होती। आपने गुनगुना दिया, मुझे पता है आपको याद आ गया होगा क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं, हम भी सुन के आते हैं मैम। बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छा गाना है। इसके बाद वापस आते हैं मैं और राशिका जी, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सब कहते। सच में ये गाना सुन के मुझे बहुत आनंद आया। मैम से पूछते हैं मैम को कैसा लगा। मैम आपको कैसा लगा?
1: बहुत मन पवित्र हो गया।
0: अरे वाह, इससे पहले मैम हमारा मन भी पवित्र था। आई डोंट नो मैम, मैम ने ऐसे बोला ना मन। एनीवेज गाइस, बैक टू पॉइंट, मस्ती मजाक चलती रहती है। लेकिन मैम आप ऐसे पहले डॉक्टर हो जिनके साथ हम इतनी मतलब इतने खुल के हम लोग बात कर पाते हैं, तो इतना फ्रेंडली माहौल आप कर देते हो, इसके पीछे रीजन क्या है? आप पहले से इतने फ्रेंडली हो क्या?
1: यार डॉक्टर से फ्रेंडली नहीं होगे तो कैसे बनेगा? बट देन मुझे ऐसा लगता था जब भी वो सीरियल देखा था संजीवनी।
0: हाँ संजीवनी, एग्जैक्टली
1: देखा था ना, तो वो कब से प्रतिमा बनी।

0: हुई थी दिमाग में कि बनना है तो ऐसे ही बनना है कि दो लोगों को खुशी दे सको, दो लोगों से बात कर सको, आप किसी की लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सको, तब तो बनो,
1: कंट्रीब्यूट दे सको।
0: माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा ऐसा करना कि छाप छोड़ के जाना, ठीक है। तो शायद एम वहीं से, अपब्रिंगिंग वैसी ही है कि मुझसे कोई मिले तो कम से कम कुछ पॉजिटिव वाइब्स जरूर रहनी चाहिए। मुझे पेशेंट्स को भी, कभी पेशेंट कोई लूज हो जाता है बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी या किसी तरह भी, तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दुख होता है। इट इज ओनली कि वो मुझसे मिलने आया और मैं नहीं मिल पाया,
1: वो बात में रिग्रेट सा फील होता है।
0: एग्जैक्टली,
1: समझ सकता हूँ मैम एक्चुअली, बट मुझे भी ये लगता है कि आप जब अपने मन से कोई चीज करते हो ना तो वो 100% उसमें रिजल्ट भी अच्छा होता है। देखो काम की बातें भी हो रही है और मैम से थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है और आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन। बढ़िया इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे मैम।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है आपका। और अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है मैम, अगर एक बार सिजेरियन हो गया है तो क्या अगली बार भी सिजेरियन ही होगा, जैसे कि लोगों के
1: मृत्यु? यस बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा इंस्टाग्राम इसी मैसेजेस से भरा रहता है कि मैम सिजेरियन को इतना साल हो गया, क्या अब मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, क्या सिजेरियन कराना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अगर आपके दो ऑपरेशन हो चुके हैं या दो से ज्यादा हो चुके हैं तो ये तो एक टोटल इंडिकेशन है, इट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि दो सिजेरियन के ऊपर अगर हो चुके हैं तो तीसरा बेबी सिजेरियन से ही होगा।
0: ओके।
1: और यदि एक सिजेरियन हुआ है तो बहुत सारी फिजिबिलिटी डिसाइड करती है, जैसे कि आपका पिछला सिजेरियन से कितना टाइम है, मिनिमम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए दो बेबी प्लानिंग, ठीक है? आपके टांकों की मोटाई कैसी है, यानी कि जो आपके सूचर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड पे हम लोग ट्रैक करते हैं वो कैसे हैं, प्लस आपका अभी जो बेबी है उसका वेट कैसा है, पेल्विक कंडीशंस कैसी हैं, पेल्विस मतलब यानी कि हड्डी का रास्ता कैसा है, ठीक है? वो सब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी। कोई कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है जो कि डिले करेगा आपका लेबर? ये सब फैक्टर्स ध्यान रख के, प्लस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जहां हम सिजेरियन प्रीवियस सिजेरियन वाले को ट्रायल दे रहे हैं वहां पे सारी कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि उसकी फैसिलिटी नॉर्मल डिलीवरी की भी होनी चाहिए प्लस इमीडिएटली शिफ्टिंग टू सिजेरियन सेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी कहानी सुनाती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई जिनका लगभग 1.5 साल का पुराना सेक्शन था, अभी ट्विन डिलीवरी थी, रास्ता इतना डायलेटेड था कि अब नॉर्मल डिलीवरी कराना मेरी मजबूरी थी क्योंकि पूरा रास्ता खुल चुका था, लेबर में ऑलरेडी पेशेंट थी, तो मैंने डिलीवर कराया और ट्विन तो पहला बेबी तो डिलीवर हो गया नॉर्मली, बट यस आई न्यू कि दिस इज अ हाई रिस्क केस, तो मैंने उनको ओटी में शिफ्ट कर दिया, अपने एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया, हमारे पीडियाट्रिशियन इन्फॉर्म। पहला बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद सडनली गश ऑफ ब्लड गया, यानी कि जो पुराना स्कार था वो रप्चर हो चुका था। That ways I took a decision immediately, क्योंकि हम ओटी में थे, अपने एनेस्थेटिस्ट को कॉल दिया, तुरंत पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया और तुरंत बेबी डिलीवर करा दिया, पीडियाट्रिशियन थे तो बेबी रिससिटेट हुआ, कुछ नहीं हुआ, मदर ऑल्सो से बेबी ऑल्सो से। तो इसीलिए एक प्रॉपर सेटअप पे, ये नहीं कि यहाँ से सुन लिया कि भैया सिजेरियन की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आप एक उस किसी के पास भी जाके, बट यस अगर एक सेटअप वेल इक्विप्ड है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इक्विप्ड है तो थिंग्स आर पॉसिबल और बीच में गैप ठीक है।
0: ओके। सो आई होप लेडीज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो हमारे आसपास के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रहती हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर जिनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक अच्छी जानकारी है, बिकॉज उनको भी नहीं पता होता है, कई बार हमारी घर की बुजुर्ग का ये रूल है उन्होंने वही फॉलो कर लिया। तो आई होप गाइज आपको चीज समझ में आई हो। और डॉक्टर राशिका जी हमारे साथ मौजूद है, एंड मैम कौन से हॉस्पिटल में आप वर्किंग है एक बार प्लीज बता दें।
1: मैं हूँ एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: ओके। और मैम वैसे आपकी टाइमिंग क्या रहती है वहाँ पे मिलने की?
1: मैं 10 to 4 रहती हूँ, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट की पर्सनली सेइंग कोई टाइमिंग नहीं होती, ये ओपीडी टाइमिंग है,
0: मतलब आपको कभी भी जाना हो सकता है।
1: यस आई एम अ 24 hours अवेलेबल सर्वेंट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, क्योंकि
0: मतलब जैसे आपको कॉल आएगा, सपोज अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको अगर अनफॉर्चुनेटली कॉल आ गया
1: तो हम कल करेंगे, बाय आनंद,
0: बाय, ये बीच में हम खत्म कर देंगे। तो गाइस मैं जल्दी पूछ लेता
1: हूँ, पेशेंट्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट।
0: वाओ, ये मतलब आपके लिए है, ये आपकी प्रायोरिटी है ना, इसीलिए आपको इतना ज्यादा प्यार है। वो कहते हैं ना, जिस काम के लिए आपके अंदर से डेडिकेशन आए फिर आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत अच्छी चीज है अगर आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट आप उनको देती हो, काम को देती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे एक क्वेश्चन और है आपसे, जिसे कई बार क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में उसका रिकवरी में कितना फर्क होता है, मतलब यू नो
1: सिजेरियन सेक्शन एक मेजर सर्जरी है ना, वो इंस्टा पे रील्स देखिए ना, 7 लेयर कटते हैं, एग्जैक्टली 7 लेयर कटते हैं,
0: ठीक है,
1: है ना, तो रिकवरी में समय तो लगेगा, है ना। नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हम ज्यादा से ज्यादा एक एपिसियोटमी देते हैं जो एक हल्का सा कट होता है नीचे, ठीक है, तो रिकवरी ऑब्वियसली सी सेक्शन की लेट होती है और नॉर्मल डिलीवरी की हम नेक्स्ट डे ही चला के पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं विद इन 48 आवर्स, बट सी सेक्शन में हम 3rd day या 4th day मोस्टली डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट भी थोड़ा डरा रहता है क्योंकि स्ट्रिचेस आए हैं और मेजर सर्जरी है, तो रिकवरी में तो समय है, मतलब समय डिफरेंस है।
0: ओके, ठीक है मैम। अच्छा मैम, सिजेरियन का जो सीन होता है वो क्या कभी रिस्की भी हो सकता है? ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, यार नहीं हम नहीं कराएंगे, इसमें कोई रिस्क तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा?
1: सिजेरियन इज अ मेजर सर्जरी, ठीक है, रिस्क होता है, बिल्कुल होता है, 100% ट्रेन्ड हैंड्स में भी रिस्क होता है,
0: ठीक है,
1: बिकॉज इट इज सर्जरी, बट रिस्क तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ नाम से नॉर्मल है, बट पीपीएच आपकी एपिजियोटमी दी है उसमें इन्फेक्शन, तो ऐसे रिस्क तो नॉर्मल डिलीवरी में भी होते हैं, फीटल डिस्ट्रेस, बेबी को रिस्क, तो वो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो देयर आर रिस्क इन बोथ ऑफ देम।
0: ओके। और जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार सिजेरियन तो कितना आसान डिलीवरी है।
1: सिजेरियन आसान बिल्कुल नहीं है, किसने कहा सिजेरियन आसान है? लोगों को लगता है कि लेडीज बचने के लिए सिजेरियन करा लेते हैं, दर्द नहीं झेलने हैं, बट हु सेड आप एक बार सिजेरियन, और मोस्टली ये सब जो होता है ये उन लोगों को लगता है जिसने ये सब नहीं झेला है, मतलब मैं किसी को काउंटरेक्ट नहीं कर रही, बट मेल्स को ऐसा लगता है बिकॉज दे हैव नेवर गॉन थ्रू दैट पेन, कभी उन्होंने मेंसेस का पेन नहीं झेला, हर मंथ मेंसेस आना, इट्स नॉट नॉर्मल, वी आर ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट, बेबी को रखना 9 मंथ की जर्नी, इट्स नॉट इजी। तो कैसे आप सिजेरियन को इजी कह रहे हैं? इट्स नॉट एट ऑल इजी, इट्स जस्ट अ ऑप्शन, मतलब 9 महीने उसने कितना सेक्रीफाइस किया आप सोच भी नहीं सकते, वो लेट भी नहीं पा रही है, वो खा भी नहीं पा रही है, उसको उल्टियां हो रही है, तो एक डिलीवरी का प्रोसेस अगर उन्होंने स्लो डाउन कर लिया तो आप उसे कह रहे हैं कि बहुत आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान बच्चा पैदा करना ही नहीं है आज की डेट में, बच्चा कंसीव करना भी आसान।
0: मैम हर चीज में बहुत एफर्ट्स लगती है, ये तो बात है, और कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है। और दोस्तों हमारा भी मेन मोटिव यही है कि एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे साथ डॉक्टर राशिका मैम मौजूद हैं, और आज सिजेरियन पे बहुत सारी बात हो रही है एंड बहुत जरूरी है। मैम आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे कंपैरिजन भी हैं और जो बहुत बहुत बहुत आसानी से लोग उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग चैलेंज देते हैं, कुछ लोग कुछ भी अड़गम सड़गम दिखाते हैं, लोग ठाक के यूज करने लग जाते हैं।
1: मेरी फ्रेंड की नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरी भी होनी चाहिए मैम, आपने ही कराई थी और आपको ही करानी है, यार ये कैसा चैलेंज है आप मुझे ये बताओ? चैलेंज ये होना चाहिए कि मैम बेबी और मदर मुझे सेफ चाहिए, आपके हैंड में आपने 9 महीने देखा है।
0: एग्जैक्टली
1: कॉम्पिटिशन तो यार कहीं नहीं है और कोई रेस नहीं लग रही, सबको अपना बच्चा इंडिविजुअल होता है, सबको अपना बच्चा हेल्दी चाहिए, सो इट इज ओनली कि भैया कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन से काम खराब ही होता है, जहां आप बच्चे कंपेयर करना शुरू करते हो वहां भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, मेरा बच्चा अलग है, मेरे बच्चे में अलग क्वालिटीज है, सो एवरीबडी प्रेगनेंसी इज अ डिफरेंट, सबके इंडिकेशन अलग होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी इज नेचुरल प्रोसेस, हम चाहते हैं नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन ये कि उसका ऐसे हुआ था तो मेरा भी ऐसे होगा, प्लीज ये सब नहीं करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहें, उससे कॉन्टेक्ट करें, जैसा भी है उसी से मतलब बात करें, एंड शी विल डिसाइड द बेस्ट फॉर यू।
0: ऑलराइट, बहुत ही अच्छे से मैम आपने सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस पे अवेयरनेस।
1: एग्जैक्टली,
0: क्योंकि सोशल मीडिया पे दिन भर में 100 तरह की रील्स आती है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ही हो सकता है, उसके अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए उसने कुछ डाल दिया हो, तो सही, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक वो कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी खतरे की निशान,
1: यार उसने डिलीवरी नहीं करानी, उसने बस रील्स के व्यूज लेके मजे लेने,
0: वही बात
1: हमें डिलीवरी करानी है।
0: अच्छा आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं मैम, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, इस तरह के लोग ने सोशल मीडिया पे देख के ये कर लिया, वो फिर आपने उसको समझाया, अरे बाप ऐसे कैसे किया?
1: ऑब्वियसली यार मेरी अपनी ही रील देख के आते हैं कि मैम उसकी आपने नेल लाइकर पे नॉर्मल डिलीवरी कराई थी, ठीक है मैंने अभी कराई है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं था, तो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी बिकॉज उसको पैनक्रियाटाइटिस थी उस पेशेंट को, उसके लिए सिजेरियन करना वॉज लाइफ थ्रेटनिंग, तो उसके लेकिन रिस्क मैंने उसको एक्सप्लेन किए, मदर का रिस्क ज्यादा था, तो वो सिचुएशन नहीं सुनते थे अपन पुराने जमाने में कि हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को,
0: हाँ टीवी से देखा है बहुत बड़ी,
1: तो कुछ उतनी खतरनाक तो नहीं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि अगर हम सिजेरियन करते तो बेबी के लिए बहुत रिस्क होता, तो हमने एक रिस्क लिया, उसके अटेंडेंट्स को एक्सप्लेन किया कि बेबी को भी डिस्ट्रेस हो सकता है, बेबी को नर्सरी की जरूरत पड़ सकती है, इवन बेबी की मोर्टेलिटी भी हो सकती है, बट वो रिस्क उसने एक्सेप्ट किए, एंड ऊपर वाले का करम था कि कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज फाइन, मदर वॉज फाइन, बेबी वॉज फाइन, बट उसने इतना रिस्क लिया, और उस वक्त हमारे लिए मदर ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए नेल लाइकर नो लाइकर पे भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी कराई, बट अब कोई दूसरा पेशेंट एकदम वही रील देख के मेरे पास आ जाए कि मैम वो तो नेल लाइकर पे, इट इज नॉट पॉसिबल ना,
0: एब्सोल्युटली
1: आई वॉज द वन हु डिलीवर्ड नॉर्मली, बट उस पेशेंट के लिए आई विल नॉट, कि अगर मदर हमें बेबी का रिस्क ले लिया कुछ हो जाता भगवान ना करता फिर हम ही लोग उसके लिए आंसरेबल होते ना, बट वो सिचुएशन अलग थी, तो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट।
0: गाइज मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर हम इन्हें अवॉइड करते हैं, और यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में, तो आप लोग प्लीज इसे सुनिए, और आपको कैसा लगे अपने फीडबैक डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे एंड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैम से हम और बातें करें तो आप वो भी हमें बता सकती है मैसेज करके, हम भी एक शाउट आउट आपको जरूर देते हैं, बिग शाउट आउट आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, और ये हर कोई नहीं करता है मैम, बट एक्चुअली इस टाइम ऐसा हो गया लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं आ पा रहे लोग नहीं मिल पा रहे, तो एटलीस्ट वो रील देखते उन्हें ये तो पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, हम भी आपको बेस्ट विशेस देंगे, और ये बंद मत करिएगा अभी तो हमारा टाइम है, तो जब तक तो शायद बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी है ना, सो बहुत अच्छी बात है मैम, वंस अगेन लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा
1: आई फील वेरी नाइस, मतलब हमें मिल नहीं पाता है, बट मेरा मन अंदर से करता है कि हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज करें, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, लेडीज नहीं पूछ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, बट आपका का रेडियो घर घर में जा रहा है.
0: Exactly.
1: करना कुछ नहीं है, एक बटन दबाना है
0: बस.
1: तो आज की शायद मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन उनको अप, मतलब अपराइज करेंगी, कुछ ऐसी अंदर से बातें होंगी जो उन्हें नहीं समझ में आ रही होंगी.
0: Sure.
1: यार ये मेरे साथ ही होता है क्या? तो मैं ये कहानी बता रही हूँ, ये हर घर की कहानी है क्योंकि ये मेरे चैम्बर में रोज. तो आई वॉन्ट टू टेल देम कि यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर, एवरीबडी इज देयर. तो हम एक दूसरे का सहारा बने तो ज्यादा बेहतर है.
0: Exactly.
1: मैंने बहुत सुन लिया औरत औरत की दुश्मन होती है, बट मैं यहाँ दुश्मन नहीं बनना चाहती, मैं सबकी दोस्त बनना चाहती
0: हूँ. वेरी नाइस सीनेटर, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी है स्मिथ को दूर करना भी.
1: Exactly.
0: लास्ट में आपने बहुत मुद्दे की बात बोल दी है. एंड गाइज फाइनली अब हम लेंगे आपसे इजाजत. मैम को किसी दिन बुलाएंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे. डोंट वरी, मुझे पता है आप लोग मैम को बहुत अच्छे से जान चुके हो. उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी दिन अलग से पॉडकास्ट करते हैं. मतलब कैसा आपका जर्नी रहा, ये अपना जो भी आपने किया अभी तक, उस पर हम बात करेंगे. उस पर वेरी नाइस, उस पर हम ये आपका फिर कोई मतलब मैम गायनोकोलॉजिस्ट बन के
1: नहीं,
0: राशि का बन के आएंगे. सिर्फ अपनी आपने कैसे किया है अपनी लाइफ को, ये
1: मैं गायनोकोलॉजिस्ट छोड़ के आती हूँ, वैसे भी उधर छोड़ के आती
0: हूँ. बहुत अच्छी
1: बात है,
0: तो बहुत अच्छी बात है. सो क्योंकि वहाँ पर हम जाते हैं तो मैम के पास इतना टाइम नहीं होता है, बिकॉज शी इज वेरी बिजी है, और वो होना भी चाहिए भाई, अपने काम पे ही फोकस होना चाहिए. सो बट मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन, और हम जल्दी मिलते हैं वेरी सून, कुछ नया करते हैं. एंड गाइज आप कहीं मत जाइए, एक अच्छा सा गाना छोड़ के जा रहे हैं, मैंने और मैम ने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है, तो ये गाना आपके लिए लगा के जा रहे हैं. और बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं. मेरे से अगर कुछ पूछना है आपको, आप आना चाहते हो स्टूडियो, तो मोस्ट वेलकम है. ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, मेरी आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से. और बाकी मैम एक बार आप इंस्टा हैंडल बता दूं.
1: मेरे नाम से डॉक्टर
0: राशिका गुप्ता. मैं इनका एक रील शेयर करता हूँ पिज्जे वाला, बहुत हमने उसको आज हाईलाइट कर दिया है, तो आप वो क्लिक करोगे तो मैम के अकाउंट पे पहुंच जाओगे. बाकी के लिए प्लीज ऐसे ही कीप लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो. मैम मेरे साथ बोलो, रेडियो बजाते रहिए,
1: रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहो,
1: गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो.
0: क्या बात है, इन्होंने 3 बार बोल दिया. चलो फिर मिलते हैं, बाय गाइस,
1: बाय,
0: थैंक यू.

0: 7807-0552।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और आज मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाँ, हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार का विस्तार भी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है? मेरी प्यारी दोस्त आरजे ईशी। हेलो ईशी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो।
1: आपकी अपनी आरजे ईशी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्वांचल की उस धरती पे जहाँ मिठास सिर्फ चीनी में नहीं परंपरा में घुली है। जी हाँ, आज की कहानी अंबेडकर नगर।
0: यहाँ की गलियों में सुबह की शुरुआत होती है बालूशाही और देसी घी की खुशबू से, और शाम ढलती है चाट की चटपटी महक, और मेलों में खजला वे लाल गन्ने की गोटी की मिठास लोगों को जोड़ती है।
1: बालूशाही का नाम लेते ही मन में एक तस्वीर आती है, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम चाशनी में डूबी हुई।
0: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास के इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादुशाह या बदुशाह से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोयन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
1: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
0: घोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
1: विवाह, तिलक, दीपावली, होली हर शुभ अवसर की शान।
0: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपदवासी चाट का भी बहुत लुत्फ उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अंबेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन हैं, और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है, और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिए में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही, बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेकर के आई है, ये एक जनपद एक व्यंजन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अंबेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने

0: जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
1: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए, यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए आनंद नगर चौराहा किसने चाट भंडार।
2: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
3: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
4: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकते हैं आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
5: अम्बेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
4: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
5: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण, दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
4: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
5: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोलकर, मरोड़कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
4: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
5: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
4: लाल गन्ने की गोटी ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़ा गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
5: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
4: अब बात करते हैं रोजगार।
5: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष रोजगार, 55 से अधिक विमम निर्माण इकाई, 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
4: ये सब सुनकर लगता है कि अम्बेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
5: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, दूरसंचार की सोच और लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC योजना, सरकार का उद्देश्य साफ है, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
4: लेकिन RJ सरकार सिर्फ योजना बनाती है, ये जमीन पर भी मदद पहुंचा रही है।
5: अरे अब तो सरकार सीधा कारीगरों और छोटे उद्योगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोचिए, जो हलवाई कभी सिर्फ मेले तक सीमित था, आज उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
4: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
5: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं, खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्यम को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान।
4: यानी अब चाट के ठेले से लेके मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
5: सही कहा आपने RJ जी, सरकार की कोशिश है कि अम्बेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान ना रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
4: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
5: बिल्कुल, आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
4: यानी सरकार स्वाद को बना रही है, ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
5: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता की असंगति स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
4: तो श्रोताओं, अंबेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
5: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहाँ परंपरा भी है,
1: प्रगति भी है
0: और हर थाली में आत्मनिर्भरता की मिठास भी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी। आज हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के खाने पीने की चीजों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और मेरे साथ थी आरजे शिका। और तो शिका, आप चले?
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आप रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल? तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3।

0: किलोमीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
2: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
2: ये 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
3: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
5: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
6: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
7: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
5: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
8: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
1: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
9: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
1: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
10: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपये पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
12: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
13: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्कार मुरादाबाद, कैसे हैं आप? और पूरी मस्ती चल रही है? नहीं, क्योंकि वेडनेसडे में होता तो है यार काम, जैसे ही ऑफिस से निकले और फंस गए अगर जाम में तो फिर मन नहीं करता कि भैया जल्दी जल्दी क्या करना है। सारा जो भी प्रोग्राम होता है ना, सब आगे पीछे सेट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अब वक्त है उन बातों का जो सीधे दिल तक जाएं और चेहरे पे मुस्कान लेके आए। तो आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, और हाँ, जहां बातें होंगी दिल वाली, हंसी ही होगी खुलकर। और आज की शाम में मिलेगा थोड़ा सा मोटिवेशनल, कहते हैं ना, टॉक भी है आज तो अगर दिन भर की थकान लेकर बैठे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लीजिए, क्योंकि थक कर बैठना कोई हार नहीं, बस हार मान लेना हार नहीं। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, कोशिश करने वालों की हमेशा बहार है। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपको भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो आप क्या करना चाहेंगे ज़रूर हमें बताएं, 9837896896। और हाँ, कॉल करके थोड़ी सी दिल की बातें हो सकती हैं। हाँ, जाम में फंस जाते हैं, चाहे स्टेशन रोड पर हो या फिर गागन के तिराहे के पास, ब्रेक तो भाई साहब लगते ही हैं वहां पे। तो कोई बात नहीं, आप करें कॉल, खूब करेंगे दिल की बातें, और तब तक एक प्यारा सा गाना आपके लिए, फिर करेंगे खूब सारी बातें। तो 9837896896 पर साहब आ जाएं और करेंगे खूब सारी दिल की बातें।

0: हाँ जी साहब, एक बार फिर से स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ हो रही हैं दिल से दिल की बातें। और आज इन दिल की बातों में चल भी रहा है मैच। हाँ जी बिल्कुल सही, जो भी हमारे क्रिकेटर्स कहते हैं ना, जो भी हमारे क्रिकेट लवर्स हैं, वो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच एंजॉय कर रहे होंगे। इस समय वेस्ट इंडीज़ ने 405 का टारगेट दिया और इंडिया इस समय 308 पे है, अपने एक विकेट के नुकसान पे। हाँ जी साहब, आज तो मैच जो है ये वाला भी जीत के रहना है और फिर बल्ले बल्ले। तो चलिए अपने पहले कॉलर से बात करते हैं और वो क्या कह रहे हैं उनसे भी सुनते हैं उनके दिल की बातें। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका?
1: जी नईम मलिक बात कर रहा हूँ सर, कश्मीर से, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से।
0: क्या बात है नईम जी, इस समय कश्मीर के क्या हालचाल हैं, कैसा मौसम है?
1: अच्छा मौसम है, गर्मी का मौसम है, लेकिन शाम और सुबह के वक्त हल्की ठंड भी होती है यहाँ पर, और दिन में अच्छी खासी धूप भी होती है।
0: क्या बात है, वो हल्की हल्की सी जो ठंड होती है, तब आप जब निकलते होंगे सुबह सुबह कभी मॉर्निंग वॉक पे, तो कैसा मतलब एकदम हवा का झोंका तेज सा आता है या हल्का हल्का सा चल रहा होता है?
1: हल्का हल्का से चलता है, नीचे जब सरसों घास होते हैं उसमें चलना बहुत अच्छा होता है।
0: अच्छा नईम जी, एक बात बताइए हमें, कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है कभी मोटरसाइकिल आप चलाते हैं मोटरसाइकिल?
1: जी जी चलाता हूँ।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप

0: थोड़ा सा रास्ता भटक गया और आपसे आगे जो कोई गाड़ी चल रही थी, आपने सोचा चलो इसको फॉलो करते हैं जहाँ तक ही जाएगी, शायद क्या पता कहीं पक्की सड़क पे निकाल दे और आप पहुंच गए कहीं दूसरी जगह। ऐसा हुआ आपके साथ कभी?
1: ऐसा नहीं हुआ था, जानबूझ कर एक बार मैंने किया था।
0: आपने जान मतलब आपने किया जानबूझ के?
1: मैंने ही किया जानबूझ के, बचपन थे, छोटा ही था जब मैं मोटरसाइकिल, मुझे पता था ये रास्ता कहाँ जा रहा था, तो हमसे सो गाड़ी आ रही थी, पैसेंजर गाड़ी थी, मैंने उसको रोका था। तो मैंने उसको बोला कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, उसने बोला कि तुझे कहाँ जाना है, मैंने कहा कि मैंने वहां जाना है, कहा कि ये रास्ता है और आगे थोड़ा बहुत लेफ्ट मुड़ना और मुझे पता है। कभी इंसान जानबूझ शरारत करते हैं, और जब यहाँ बर्फ गिरते थे तो बचपन में हम बड़े अक्सर कश्मीर की, जो आपको पता है कश्मीर में कैसा लैंड होता है, अक्सर हम पहाड़ी पे जाते थे छोटे छोटे बच्चे, और जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं हम एक दूसरे बच्चे को पकड़ते हैं और ट्रेन की जैसे डिब्बे होते हैं ऐसे ही बनाते हैं और फिर धीरे से चलते हैं। वो जो सबसे पहला बच्चा होता है ना, जो ड्राइवर होता है
0: हाँ, जो
1: हमारा,
0: सबसे आगे चल रहा होता है।
1: उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि पीछे सारे बच्चे उसी पर चढ़ते थे।
0: हाँ, वही एक विश्वास करके चलते रहते हैं, वो बेचारे को रास्ता बनाना पड़ता है खुद ही कि कहाँ से निकले और कहाँ से जाए।
1: फिर जब हम घर आते थे कपड़े गीले होते हैं तो माँ बाप और घर वाले बहुत ज्यादा डांटते हैं, और डांट करने के बाद हमें फिर वही जाते हैं।
0: चलिए, ये अभी मैंने ना इस ब्रेक से पहले, मतलब ये तो आज आपकी एक दिल की बात निकल के आई कि हाँ जी, आपने भी ये शैतानी तो करी है बचपन में, और रास्ता पूछना, तो कहते हैं ना कि कभी कभी आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि आपको रास्ता पता नहीं होता या ध्यान नहीं रहता है, और फिर आप आगे वाले के सहारे पे हो जाते हैं कि यार ये जहाँ तक जा रहा है कम से कम कहीं ना कहीं सही रास्ते पे तो लेके जाएगा ही।
1: नहीं, एक बार हुआ था ये, पर मैं बाहर था, मीटिंग के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, ये पिछले साल की बात है, और हमारा जो मीटिंग चल रही थी वहाँ न्यू चंडीगढ़ में, तो रात के समय जब हमने खाना खाया उसके बाद मैंने एक दोस्त को कहा चलो हम थोड़ी बाहर जाएंगे, और बातों बातों में हम कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे चले गए होटल से, 1.5 किलोमीटर। फिर क्या हुआ था, एक बंदा मुझे मिल गया, मुझे अभी भी याद थी, 11:35 वाकई था, एक बंदा मिल गया रोड पर, हमने कहा हमें उस होटल पर जाना है, और बंदे बहुत अच्छे थे, उसने कहा चलो मैं आपको वहां तक छोड़ूंगा, और उसने 1.5 किलोमीटर हमारे साथ सफर किया और वहां छोड़ दिया हम लोगों
0: क्या
1: को।
0: बात है, क्या बात है, ऐसे बंदे जो है ना कभी कहीं ना कहीं से आपकी मदद करने आ ही जाते हैं। मतलब मैंने देखा है ये सब चीजें होती हैं आपके साथ, अगर कहीं आप फंस जाएं तो कोई ना एक किरण जो है आपके आसपास आ ही जाती है।
1: देखते हैं हम दूसरे, क्योंकि इस वक्त मैं रेडियो पर ऑन एयर बात कर रहा हूँ, हम सोशल मीडिया के जरिए सुनते हैं कि दूसरे कंट्री के बारे में, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत अधिक इंसानियत बाकी है, जितनी चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे हम किसी भी जगह पे जाए इंसानियत बाकी है, क्योंकि जहाँ हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं जैसे बाहर के कंट्री में होते हैं, वहाँ हम देखते हैं, हम एक ही प्लेट में खाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, ये हमें संकेत भी मिलते हैं, हमने ये सीखा है महात्मा गांधी जी से, या हमें सीखा है चंद्रशेखर आजाद जी से, या हमें भगत सिंह से सीखने को मिला है, या हमारे पैगंबर से सीखने को मिला है, या हमें APJ अब्दुल कलाम से सीखने को मिला है, या हमारे बुजुर्ग से सीखने को मिलता है।
0: बहुत सही, बहुत सही, और आजकल मोदी जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, जो भी मिनिस्टर आते हैं, वो लोगों के लिए अच्छी ही सोचता है।
0: बिल्कुल सही बात कही। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: बस एक मूवी आई थी लैला मजनू, मशहूर फिल्म थी ऋषि कपूर की, और इस मूवी का एक नगमा है, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा।
0: क्या बात है, जरूर जरूर। तो ये लैला मजनू वाला जो सीन है, आपको कभी किसी ने कहा है अरे भाई मजनू कहाँ घूम रहे हो?
1: बहुत बार सुनने को पड़ता है, और बहुत बार मुझे
0: ये वर्ड
1: बहुत
0: जो
1: बार
0: है ना,
1: सुन,
0: ये जो मजनू वाला वर्ड है, इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आपके लिए तो बोल ही दिया था, मतलब आपके मतलब इन सेंस
1: अभी भी बोल रही है मेरी बीबी, अभी भी बोल रही है, अरे मजनू साहब क्रिकेट खेलने जाना है।
0: सही है साहब, सही है साहब। जब अगर बीवी ही ये बात बोल दे मजनू, तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो उसे पता ही है। हाँ जी, अब तो बीवी ने भी कह दिया मजनू, तो मैं तो
1: वो
0: मजनू
1: तो
0: बन
1: मुंह
0: के
1: से कहते
0: घूमूंगा।
1: हैं, लेकिन मैं तो, वो तो मुंह से कहते हैं, मैं तो हाथ से कहता हूँ, अरे लैला जी मेरे हाथ में कुछ है, आप रिश्वत कबूल कीजिए।
0: बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही हंसते रहें, मस्त रहें, और ये जो लैला मजनू वाली आपकी जोड़ी है ना, ये भी खूब कहते हैं ना मस्ती भरी रहे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ।
1: एक बात पर मैं कुछ दोस्तों का नाम लेना
0: हाँ
1: चाहता हूँ,
0: हाँ
1: एक
0: क्यों
1: बात
0: नहीं,
1: मैं
0: क्यों नहीं,
1: आपसे
0: क्यों
1: भी
0: नहीं,
1: चाहता,
0: दोस्तों का नाम तो लेना ही
1: क्योंकि
0: है। हाँ
1: मैं अपने शौक के साथ आपके साथ बात करता हूँ, क्योंकि आपका जो बोलने का अंदाज है ना बहुत मीठा है और बहुत प्यारा है, और जी करता हूँ मैं कब आपसे मिल जाऊंगा।
0: जरूर जरूर मिलेंगे आप, हम जरूर मिलेंगे साहब।
1: और कुछ दोस्त है, ये मर्द प्रदेश से गजल लोधी जी है, और सहारनपुर यूपी से खुर्शीद आलम साहब है, और बिश्नोई डिस्ट्रिक्ट यूपी से सलमान अख्तर भाई है, और मैं इसको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। अगर ये प्रोग्राम सकल सुन रहे तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। और जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मुकेश कश्यप और मिलजुल कर सभी दोस्त हमारे साथ इस गीत को इंजॉय करेंगे।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर नईम साहब, और बहुत अच्छा लगा कश्मीर की आपने थोड़ी थोड़ी ठंडक हमारे स्टूडियो में भी दे दी है।
1: जी जी सर।
0: तो ये थे हमारे साथ नईम साहब कश्मीर से, और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया लगता है आपसे शो के दौरान खूब सारी बातें हो जाती हैं। साहब यही तो बात है, जो एक दूसरे की दिल की बातें हैं ना वो थोड़ी हल्की भी हो जाती हैं। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो चलिए नईम साहब की ख्वाहिश करते हैं पूरी, अगर आपकी भी कोई ऐसी दिल की बात है, हाँ जी हाँ होगी, कोई ना कोई तो होगी, जो टच स्क्रीन है ना साहब गाड़ी में उसका भी यूज़ कर लेते हैं, उस पर भी नंबर डायल कर लेते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट हो जाती है कॉल, तो करेंगे खूब सारी बातें। और 9837896896 FM मुरादाबाद पे आपका अपना है साहब, तुम मुरादाबादी हो के तो बनती है कॉल।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगी आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और हाँ जी साहब, इस समय तो गाने सुनने के बाद थोड़ा सा डांस करने का ये मन करता है, थोड़ा सा कहता है कि भाई गाना मेरी पसंद का है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं दूसरे लिसनर पे और बात करते हैं उनसे कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिल की बात है। जितनी ज़्यादा सुनेंगे ना, टाइम भी उतनी जल्दी ही निकल जाता है। 9:27 हो रहे हैं। हाँ हाँ, आप अपनी घड़ी में चेक कर लीजिए, कुछ तो आगे बढ़ा के रखते हैं कि भाई साहब जल्दी से पहुंच जाया करूँगा ऑफिस, थोड़ा सा टाइम आगे रहेगा। ऐसा करते हैं ना आप? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। चलिए करते हैं बात। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: सही है सर, बढ़िया है।
0: क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं, हमारे सभी श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम शमसर इस्लाम, ग्राम खेड़ा कांडा, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बात कर रहे हैं सर।
0: और इस समय कैसा हो रहा है वहाँ का मौसम?
1: मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हल्की हल्की शबनम की फुहार चल रही है।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: रात में निकल रहे हैं तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या करते हैं आप शमशुल साहब?
1: फिलहाल सर घर पे है, अभी अभी कोई खास काम नहीं है।
0: अभी कोई खास काम नहीं है तो कोई ऐसा काम जो शायरी या कुछ ऐसा गाना जो आप हमें सुनाना चाहें जो दिल से निकला हुआ हो इस समय?
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे।
0: जरूर जरूर सुनाइए सुनाइए साहब।
1: सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको।
0: क्या बात है, क्या बात है। ये तो मुझे लगता है आपने इंस्टेंट बनाई है, बहुत ही अच्छी दिल से एकदम निकली हुई बातें हैं जो आपने एकदम शायरी में परो दी है। तो शमशुल साहब कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए शमशुल जी, अगर अभी हम पूछ रहे थे अभी इससे पहले अपने सेशन में कि अगर आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मतलब कोई एक नया मौका मिले इस समय तो आप क्या करना चाहेंगे? मतलब कोई नई जॉब करना चाहेंगे, कोई नया बिजनेस करना चाहेंगे, या यूट्यूबर बनना चाहेंगे, या कोई ऐसा कोर्स जो आपका बहुत मन करता है इस समय कि भैया चलो एक बार ये कोर्स भी करके देखना है मुझे?
1: बिजनेस करना चाहेंगे सर।
0: आप बिजनेस करना चाहेंगे तो ज़रूर है, कभी कभी जैसी मौका मिले और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर हमें बताइएगा क्या बिजनेस किया है आपने और कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे।
1: मैं सोच रहा हूँ सर मुरादाबाद में जो है ना कोई हॉस्पिटल पड़ जाए, मुरादाबाद में जो है कोई अच्छी रेंट पे जगह मिल जाए, तलाश चल रही है, और MBBS डॉक्टर के साथ में मिलके जो है काम करने का इरादा।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जरूर आपका ये जो मौका है जरूर मिलेगा, बहुत जल्दी ही मिलेगा आपको मौका। तो कोई गाना बताइए आप जो शायरी आप सुनना चाहते हैं।
1: गाना सुनना है समझकर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है।
0: क्या बात है साहब, गाना तो बहुत ही लाजवाब ढूंढ के रखा है आपने। किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: सुनेंगे सुनने वालों के साथ तो सुनेंगे।
0: चलिए चलिए, जो भी सुन रहे हैं उन्हीं सभी को डेडिकेट करते हैं आप, हैं? चलिए शमशुल साहब बहुत ही बहुत धन्यवाद, जुड़े आपने और इतनी अच्छी बात बेहतरीन दिल से निकाल के करी। तो ये थे हमारे शमशुल साहब जो कह रहे थे कि भैया अगर उन्हें कुछ मौका मिलेगा अभी तो वो एक नया बिजनेस करना चाहेंगे, कोई एक जगह ढूंढ रहे हैं डॉक्टर के साथ कुछ काम करना चाहेंगे। तो ज़रूर ज़रूर आपकी भी एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर जल्द ही मिलेगी। तो एक शायरी इसी के बाद बात के ऊपर एक याद आई है, चलिए आपको सुनाते हैं। कुछ रिश्ते आवाज़ से नहीं खामोशी से समझे जाते हैं, कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब पाए जाते हैं। हाँ जी साहब, मुस्कुराने की वजह हजारों हो सकती हैं लेकिन किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाना अपने आप में खूबसूरत एहसास है। तो अगर आपके बगल वाला गुस्से में बैठा है ना, कह रहा नहीं जी मेरी पसंद की जगह आप चल नहीं रहे हो और इतनी देर से मुझे ट्रैफिक में फंसा रखा है, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए साहब, उससे कहिए जी जल्दी पहुँचेंगे और मनपसंद खाना भी खाएंगे। तो चलिए ये उनकी फरमाइश पूरी करते हैं, और आपकी भी कोई फरमाइश या दिल से कोई बात निकली हुई है तो ज़रूर मैसेज करें या फिर कॉल करके बताएं 9837896896 पर।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
4: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद, उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन RJ अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM RJ अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

हाँ जी, कभी साड़ी गली भूल के भी आया करो जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: तो सर कह रहे थे कि कोई तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो होती है ना नई अपॉर्चुनिटी हमेशा बड़ी अनाउंसमेंट करके नहीं आती, कभी भी एक छोटे से फ़ोन कॉल से शुरू हो जाती है, या कभी कोई नया कॉन्टैक्ट बन जाता है, या कभी कभी कोई छोटा सा कोर्स जो आपने करा होता है ना कि चलो पार्ट टाइम कोर्स है कर लेते हैं, क्रैश कोर्स है, वो भी एक नई अपॉर्चुनिटी देता है, या फिर कभी कोई आइडिया। जी हाँ, तो चलिए एक बार कोशिश करते, मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ ना आजकल एक छोटी छोटी शायरी से, तो वैसे ही एक कोशिश आप लोगों के साथ एक बार दोबारा। रास्ते मुश्किल हो तो क्या हुआ, रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, कदम रोकना ज़रूरी तो नहीं, आज छोटा सपना है तो क्या हुआ, कल बड़ा हो सकता है, ये भी मुमकिन है कहीं। हाँ जी, तो ये आप सभी के लिए, करते हैं अपने नए कॉलर से बात, वो कहना चाह रहे हैं कि हमें बहुत देर से ले रखा अपने लाइन पे, तो उन्होंने कहा नहीं साहब करेंगे आपसे भी सारी दिल की गुफ्तगू। हेलो नमस्कार, कैसे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार अखिल भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, ये तीनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको।
1: लंबी है मंजिल है पास है किनारा, लंबी है मंजिल पास किनारा, दोस्त की नहीं आया SMS हमारा, भूल गए नंबर नाम हमारा, दूसरों कोई मिल गया आपको प्यारा।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, आपने तो शायरी से ही एकदम चालू कर दिया मामला। तो क्या हो रहा है इस समय? तो
1: जिला रामपुर तेजस्वी मिलता कहाँ से, रिहान भाई बोल रहा हूँ।
0: रिहान जी, कैसा है इस समय रामपुर का हालचाल, रामपुर का मौसम?
1: बहुत बढ़िया है, रात को 12 बजे मौसम चेंज होता था, ठंडा मौसम रहता था, दिन में गर्मी।
0: तो इसका मतलब आप रात में 12 बजे के बाद ही नींद आती होगी आपको।
1: हाँ 12 बजे के तब 12 बजे तक तो अपना मोबाइल चलता ही है।
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो इस समय जो है कौन से ही आप कहते हैं, कोई कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं, या कौन सा गाना आप
1: पहले
0: अपने?
1: तो अखिल भाई बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, मगर थोड़ी 10-5 मिनट और बात कर ले। मगर अखिल भाई ये बताइए, दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो पैसा है क्या सबको, दुनिया में पैसा का इज्जत है, आप तो बता सकते हैं तो बताइए आप।
0: ये तो आपने आज, मतलब हम क्वेश्चन पूछते हैं आपने हमसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया रिहान भाई। दोनों ही
1: बिल्कुल
0: चीज़ों की बहुत ज़रूरत है दुनिया में, मगर इज्जत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसके बाद पैसे को रखते हैं, मगर सबकी अपनी अपनी सोच है कि वो कैसे क्या करना चाह रहे हैं, मगर है दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी।
1: अखिल भाई, अब आइए उरस पर मुलाकात होती है जरूर, 10 तारीख को उरस चालू है, 5 तारीख को।
0: ज़रूर ज़रूर ज़रूर मुलाकात होगी। और कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जब भी बहुत दिनों बाद या बहुत ही देर बाद जब मुलाकात होती है तो उसका मुलाकात का मज़ा ही कुछ और होता है।
1: मगर अखिल भाई फोन पर हम तुमकी कितनी बार बात हो गई, मतलब आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाई।
0: आमने सामने ही मुलाकात होगी साहब, बहुत जल्दी होगी, आप आए कभी मुरादाबाद तो ज़रूर हमें बताएं और स्टूडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे।
1: क्यों, मैं तो दो तीन तीन वीडियो रोज डाले हूँ, प्ले स्टोर पर ऑडिशन इंस्टाग्राम पर रोज वीडियो डाल रही है अपनी, कैसी बात कर रहे हैं अखिल भाई।
0: क्या बात है, आपका किस नाम से है आपका इंस्टाग्राम पेज?
1: हाँ रिहान अली जी,
0: रिहान अली, ठीक है साहब, ज़रूर आपके रिहान अली साहब, आपके हम पोस्ट देखते हैं और उस पर लाइक भी बनाते हैं।
1: हाँ इस पे ही है, फिर इस पे ही है जिस पे आपकी आईडी बनोगी, इस नंबर की इंस्टाग्राम पे, इस पे नाम देखो आ रही होगा, रिहान रिहान नाम से देख लेना आप।
0: चलिए ज़रूर ज़रूर देखेंगे। एक आपसे, आपकी इन बातों पे एक कुछ याद आ रहा है, शायरी सुनाएं अगर आप कहें तो।
1: बिल्कुल अखिल भाई जरूर सुनाइए आप।
0: उम्मीदों का दिया जलाए रखना, मुश्किलों में भी मुस्कुराए रखना, ज़िंदगी मौका ज़रूर देगी तुम्हें, बस खुद पर विश्वास बनाए रखना।
1: बिल्कुल अखिल भाई आप पे बिल्कुल बिल्कुल पक्का विश्वास है।
0: बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया रिहान साहब। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: गाना सुनना है, मस्ती मस्ती और जाने मन और सुनो दीवानी।
0: क्या बात है, गोविंदा जी का जो है ना हर कोई दीवाना है साहब।
1: बिल्कुल यार, बाकी में यार गाना भी सुनते सुनते हैं, मतलब ये गाना बहुत दिनों में सुना नहीं है, मतलब आज अखिल भाई को सुनाऊंगा खुद भी सुनूंगा।
0: कोई ऐसा सीन आपको कभी, कोई गोविंदा की कोई ऐसी मूवी का कोई सीन अभी आपको जब भी एकदम याद आता है और आप मुस्कुरा जाते हैं?
1: हाँ बिल्कुल अखिल भाई, बहुत दिनों में गोविंदा की फिल्म तो देखी है, मतलब बहुत दिनों में कभी देख लेता हूँ, अगर मोबाइल चालू हो रहता तो कभी कभी शौक होता तो देख लेता हूँ ये पिक्चर।
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही, गोविंदा साहब की तो मतलब कहते हैं ना अंदाज और जो कला है वो बिल्कुल ही निराली है साहब। कोई सा भी गाना दे दो और जो डांस मूवमेंट वो अपने चालू करते हैं वो तो एकदम कहते हैं कयामत ढा देते हैं।
1: हाँ अखिल भाई, जैसे हम जैसा डांस होता है, कहीं शादी बुक होती है, और मैंने कई दफे गया हूँ, दो दो तीन दिन बारात में गया हूँ, हमारे यहाँ शादी शादी हुई थी गाँव में, तो ये गाना चला था, मस्ती वस्ती वाला, मन के बजा दो, एसी भी चला दो भाई गाड़ी में।
0: बहुत बढ़िया। कभी पता है एक बार ऐसा हुआ कि एक गाना गाने के डांस स्टेप अच्छे से याद कर रखे थे, और गाना मतलब डीजे वाले ने उस गाने को छोड़ के सारे दुनिया के गाने बजा दिए, बस वही गाना नहीं बजाया कि खुल के डांस करके दुनिया को भी दिखा दें कि भाई साहब हमें डांस आता है। हुआ है कभी ऐसा?
1: वह सर अभी 2 दिन शादी से निपटे हैं ना हम,
0: हाँ
1: तो वही लड़के लड़के ना गए हम, 5-6 लड़के इकट्ठे हुए थे और डीजे बजाए और डांस करते रहे हम।
0: चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही डांस करते रहें, ऐसी मस्ती करते रहें रियान साहब, और खूब दिल खोल के हंसे।
1: जी, वैसे मैं तो आपको फिर क्या, मैं थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई हैं।
0: धन्यवाद धन्यवाद, समय का पता ही नहीं चलता। तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे रिहान जी, जो कह रहे था दिल की खोल के, उन्होंने दिल की बात बोली और बोले कि साहब जब भी मैं डांस करता हूँ मैं तो डीजे वाले के पीछे पड़ जाता हूँ कि भैया पहले मेरी पसंद का गाना बजाओ। हुआ होगा साहब, आपके साथ भी हुआ होगा, और कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि जो गाने पे आप डांस कर सकते हैं ना वो गाना ही नहीं बजा होगा। तो चलिए इस गाने को करते हैं प्ले और करते हैं थोड़ा सा आनंद। और हाँ, आपकी भी ऐसी कोई बात या ऐसा कोई किस्सा है जो दिल के बहुत करीब है तो 9837896896, 9837896। आज भाई साहब एक मिले थे हमें ऑटो वाले, ऑटो वाले भैया बोले कि मुरादाबाद में तो एफएम है ही नहीं। मैंने कहा नहीं जी, आप बिल्कुल गलत हैं, आपने ब्लूटूथ से इतना बढ़िया कनेक्ट करके जो गाने चला रहे हैं ना इस समय यूट्यूब से, इससे अच्छा तो है आप हमें अपना मोबाइल दीजिए। उनको मैं मोबाइल दिया, हमने उससे फटाफट एफएम मुरादाबाद ऐप डाउनलोड करके दी, और उन्होंने बहुत बढ़िया गाना चलाया। फिर नहीं चला तो एफएम मुरादाबाद रहा था, मगर उनके चेहरे पर जो हंसी आ गई ना वो बहुत मस्त वाली आई। तो साहब चाहे कैसे भी हालात हों, चेहरे पे हंसी हमेशा रहनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गाना जो रिहान साहब की फरमाइश का है, और आपकी भी कोई फरमाइश है तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर ज़रूर एफएम मुरादाबाद पे कॉल करें और प्ले करें।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो हाँ जी, थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं क्रिकेट का। वो तो आप देख ही रहे होंगे जहाँ गिल साहब ने मार दी है डबल सेंचुरी। अब सिर्फ 21 रन चाहिए 54 बॉल्स पे, तो भाई साहब बहुत ही नज़दीक है, बिल्कुल ही एकदम नज़दीकी मामला है। और शुभम गिल साहब और ऋतुराज गायकवाड़ जी ने बिल्कुल सही तरीके से कब्जा कर रखा है क्रीज पर। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी क्रिकेट अपडेट। थोड़ा सा अपडेट लेते हैं अपने साथ अपने लिसनर का भी, क्या कह रहे हैं और क्या बात करना चाहते हैं वो दिल की, सुनते हैं। हेलो दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: हेलो दिल से दिल तक, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? तो अंसारी जी, समय क्या हो रहा है वहाँ पे, मौसम कैसा है आपकी तरफ? मीडियम है, मीडियम। बिल्कुल सही कहा। तो अंसारी साहब एक बात बताइए, आपको ध्यान होगा अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सब क्या करना चाहेंगे, कोई बिजनेस करना चाहेंगे, जॉब करना चाहेंगे, या कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर बनना चाहेंगे, कुछ अपना इंस्टाग्राम और उस पर यूट्यूब पे रील डालना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? तो कोई बात नहीं, अब आपको हमने ये पूछ लिया तो आप बताइए, आप ऐसा अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्या करना चाहेंगे? जैसे कि कोई नया व्यापार करना चाहेंगे, कोई नई नौकरी करना चाहेंगे, या कोई मनपसंद की नौकरी होती है ना कि साहब मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ, या फिर कोई रील या यूट्यूब पे अपने आप को एकदम कहते हैं एकदम अपनी वीडियोस अपडेट करना चाहेंगे। तो आप भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहेंगे, मतलब यूट्यूबर बनना चाहेंगे एक तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई चीज़ एक हमारे सब श्रोता, इतने सब लाखों श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो कुछ तो एक बार बताइए कि कोई गाना है आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ शायरी। अरे क्यों नहीं, बहुत ही बढ़िया, पूरा एकदम आपने गला साफ कर लिया। पानी का गिलास अगर पास में रखा तो एक आध घूट ले लीजिए, पानी बहुत ज़रूरी है, सच में कह रहे हैं, हर एक डेढ़ घंटे में एक आध गिलास पीते रहना चाहिए। अब बात करिए तो आप बहुत बढ़िया बात कही आज आपने। तो चलिए गाना सुना दीजिए, मतलब
1: गाना सर। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी से किसी को प्यार होता है, जब किसी से किसी को प्यार होता है।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, आपने तो एकदम बहुत ही बढ़िया गाना गा दिया, इतने बढ़िया गले में।
1: पहली बार गुनगुनाया टूटी फूटी
0: आवाज़ है। अरे नहीं, टूटी फूटी नहीं है आवाज़, बिल्कुल बढ़िया है आपकी। और आपने बहुत, मतलब कहते हैं ना, दिल से जब आप कोई चीज़ गाते हैं या गुनगुनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल सामने वाले की दिल तक पहुंच ही जाती है। किसको डेडिकेट करना चाहेंगे इतना बढ़िया आपने जो गाना गुनगुनाया है? रूहानी एंड मुस्कान को। क्या बात है, क्या बात है, और बहुत ही बढ़िया। आपका फेवरेट गाना जो आप चाहते हैं कि प्ले हो इस समय, कोई ऐसा गाना जो फरमाइश आप लेके आए हैं?
1: फरमाइश है ये लड़की नहीं है बनारस का पान है।
0: क्या मतलब, आपने बनारस का पान खाया हुआ है लगता है?
1: सर बनारस की तो काफी चीजें मशहूर है, बनारसी पेड़ा भी मशहूर है, बनारसी सेब भी मशहूर है।
0: बिल्कुल सही कहा, बनारस तो अपने आप में ही सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि सबसे पहला शहर ही बनारस बना था इस जब उसमें बना था पृथ्वी पे। चलिए बहुत ही बढ़िया, और आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, और बहुत अच्छा लगा। जैसे कहते हैं ना, समय का पता ही नहीं चलता, 10:04 हो गए, हमारे शो का टाइम भी बिल्कुल एंडिंग पे आ गया, और आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला।
1: सर, शो का टाइम बढ़ा दिया तो बेहतर है सर।
0: अरे शो का टाइम भी
1: क्योंकि हम 2 घंटे
0: बढ़ाएंगे
1: आता
0: भाई।
1: था सर, रात सर आते थे तो हम मुरादाबाद 2 घंटे आता था तो और अच्छा लगता था। आपका आपके साथ में और ज्यादा मजा आता है तो बहुत लंबा छोटा समय लगता है कुल मिलाकर।
0: हाँ समय का पता नहीं लगता है, तो ज़रूर ज़रूर देखेंगे, और ज़रूर क्या पता ऊपर हमारे डायरेक्टर साहब सुन ले और कह दे हाँ जी चलो थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं।
1: हमारी आप बात उन तक पहुँच रहे हो तो उनकी बहुत मेहरबानी। सो कि अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो
0: ज़रूर
1: ताकि
0: ज़रूर
1: सर उसमें एक मौका, एक बात ये भी होगी नए श्रोताओं को भी मौका मिलेगा
0: हाँ, नए
1: व्यूअर्स के
0: श्रोताओं
1: लिए
0: को भी
1: भी।
0: मौका मिलेगा और सारे लिसनर्स भी बात कर सकेंगे। और चलिए धन्यवाद अंसारी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसी मुस्कुराते रहें और ऐसी जिंदा दिल रहें बिल्कुल।
1: ओके सर, थैंक यू।
0: तो श्रोताओं ये था हमारा अंसारी साहब का जवाब जो बिल्कुल दिल से निकला। कहते ना अपनी रफ्तार से चले जिंदगी, दूसरों से मुकाबला मत कर, जिस दिन खुद से जीत जाओगे उसी दिन दुनिया से शिकायत नहीं रहेगी। तो हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं एकदम ताजोतरार थे और अपनी सारी दिल की बात एक बारी कह डाली। अगर आपका कहते हैं ना दिन जो है बिल्कुल बन जाए और पता ही नहीं चले वक्त कैसे है, तो दिल की बातें एकदम खलास हो जाती हैं। मौका छोटा हो या बड़ा उसे पहचानिए, सपना छोटा हो या बड़ा उसे शुरू कीजिए, और ज़िंदगी कैसी भी हो साहब मुस्कुराना मत छोड़िए। तो चलिए इसी के साथ अब हम लेते हैं विदाई, और कल फिर मिलेंगे साहब 9 से 10 आपको ठीक इसी समय स्टूडियो में, और आप होंगे अपनी गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी जो होती है ना वो आपका सेकंड होम होती है, तो उसका भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है, और ऐसे ही मुस्कुराते रहना। तो चलिए साहब कल होगी फिर मुलाकात, खूब सारी होंगी दिल की बातें, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।

0: में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।